मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 अगस्त सन 2026 प्रातः के 5:56 और 45 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपके दोस्त तुलिका शर्मा। आप सभी को हमारा नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6 बजते हैं, समाचार अब दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीकों में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर बल दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सके। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री, वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। श्री शाह ने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
2: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज कर दिया है। एनटीए ने बताया कि यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। और खेलों में नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। पुरुष डबल्स की जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का मुकाबला चीन के तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई खेंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा।
1: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनते हैं ये देशगान।

समूह स्वर में भी आपने ये देश गान सुना। वंदना में आइए, अब आपको सुनवाते हैं। अश्विनी भिड़े देश पांडे का गाया ये भक्ति गीत।

0: लता मंगेशकर के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही आज की वंदना संपन्न होती है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर सत्या शुक्ला के विचार। वाचक हैं यतीन्द्र चतुर्वेदी।
1: सत्यनिष्ठा अर्थात सत्य में आस्था व विश्वास एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मानव की आत्मिक शक्ति को बलवती बनाती है। इन दोनों शब्दों का मणिकांचन संयोग अपनी अद्भुत आभा से अनुपम प्रकाश बिखेर देता है। सत्यनिष्ठा एक ऐसा प्रमुख सात्विक गुण है जो व्यक्ति के चारित्रिक उन्नयन में तो सहायक है ही, साथ ही आत्मा को परिपोषित करने वाला एक मनोवैज्ञानिक स्वरूप भी है। महात्मा गांधी ने स्वयं कहा था कि सत्य ही ईश्वर का दूसरा रूप है। यही सबक यदि मनुष्य सत्य का संबल लेकर जीवन पर्यंत आचरण करता है तो उसके व्यक्तित्व में तो निखार आता ही है, समाज में भी ऐसे व्यक्ति को आदर सम्मान प्राप्त होता है। सत्यनिष्ठा का ये विशिष्ट आत्मीय गुण प्रारंभिक अवस्था से ही व्यक्ति के परिवेश से ही निर्धारित होता है। ये सर्वविदित तथ्य है कि वर्तमान भौतिकवादी युग में स्वार्थपरता ने मानव को माया जाल में आबद्ध कर दिया है। परिणामस्वरूप वो अनेकानेक भ्रष्ट आचरण व अनैतिक कार्य करते समय अपनी आत्मा की आवाज़ को अनसुना कर जाता है, जबकि वो समझता है कि मेरा ऐसा कार्य व्यवहार किसी को कष्ट पहुंचाकर स्वयं लाभ प्राप्त करना है। सत्य से परे होने से उसका अंतर्मन अशांत होकर अवश्य ही उसे कचोटता रहता है। जिस प्रकार हीरे पर छाई हुई धूल उसकी चमक को विलुप्त कर देती है, लेकिन जैसे ही वो धूल उससे हट जाती है वैसे ही उसकी चमक यथावत हो जाती है। सत्यनिष्ठा अंतश्चेतना का मुखरित स्वरूप है। ये वो अमूल्य निधि है जो जीवन की सार्थकता को जीवन रखते हुए ईश्वर के सन्निकट पहुँचने में उच्चतम सोपान का कार्य करती है। अतः हम यदि सत्य भाषण सत्य विचारधारा में अपना अटूट विश्वास रखकर अपने जीवन की कार्यप्रणाली का निर्धारण करते हैं तो हम निश्चय ही अपरिमित शांति का अनुभव करते हुए उस परम सत्ता द्वारा प्रदत्त सुख चैन के अधिकारी बनकर आनंदित व उल्लसित जीवन यापन करते हुए अपने गंतव्य को प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। सत्यनिष्ठा वो अजस्त्र स्रोत है जो निर्झर की तरह मन मस्तिष्क के अनजाने स्थल से निश्रत होकर संपूर्ण व्यक्तित्व को ही पारदर्शी बनाकर अलौकिक आभा से अनुपूरित कर देता है। वो आदित्य के सदृश एक ज्योतिपुंज बनकर मानव को महामानव की श्रेणी में ले आता है। हमारी मायावी छवि का परिशोधन सत्यनिष्ठा की महौषधि से

0: ही संभव है। मानव प्राणी जब अहम ब्रह्मास्मि की संज्ञा को मुखर करने का सफल प्रयास करता है, यही पारदर्शी माणिक्य उसकी मनसा वाचा कर्मणा में निहित होकर आत्मिक आभा को विकीर्ण कर प्रखर प्रकाश पुंज का स्वरूप धारण कर लेता है। विश्व रंगमंच पर अनेक महापुरुष सत्यनिष्ठा की अनुकृति बनकर इतिहास की पटकथा में स्वर्णिम अक्षर प्राप्त कर हमारे राष्ट्रीय व वैश्विक स्वरूप ने आज भी जीवंत हैं। उनके आदर्श जीवन मूल्य अतीत से आज पर्यंत अनुकरणीय व प्रासंगिक बने हुए हैं। असत्य भाषण व्यक्ति की आत्मा को पतित कर देता है। हम परिस्थितिवश झूठ का सहारा लेकर अपनी बात को येन केन प्रकारेण सही सिद्ध करना चाहते हैं। सत्यवादी युधिष्ठिर भी कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय न चाहते हुए भी रंच मात्र सत्य से नावाडोल हो गए थे। परिणाम स्वरूप स्वर्गारोहण के समय उनके रथ के पहिए थोड़ा नीचे खिसक गए, जो सदैव जमीन से ऊपर रहा करते थे। फिर अहिर्निश असत्य कहने वाले व्यक्ति की क्या दशा होगी, विचारणीय प्रश्न है। अतः अपनी आत्मिक शक्ति एवं आवाज को ही सर्वोपरि बनाए रखने के लिए सत्य निष्ठा को पग पग पर एक मशाल की तरह प्रयोग करें, ताकि हम सभी एक सफल सार्थक जीवन आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें।
1: कार्यक्रम चिंतन में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सत्या शुक्ला के विचार। वाचक थे श्री राम यतीन्द्र चतुर्वेदी। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ का।

राजा जनक की यज्ञशाला जानकी के स्वयंवर के अनुरूप सजाई गई है। शुभ घड़ी जानकर राजा जनक ने सीता को यज्ञस्थल पर बुला भेजा।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज की जानकारी का विषय है पशुओं को दस्त से कैसे बचाएं। जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, बरसात के मौसम में पशुओं का अधिकतर पेट खराब हो जाता है, जिसे हम सामान्य भाषा में पेट चलना या दस्त लगना कहते हैं। पशु को दस्त होने पर पशु थोड़े थोड़े समय पर मल को त्यागते हैं, जो सामान्य गोबर की तुलना में काफ़ी पतला होता है। दस्त ज़्यादातर पाचन प्रणाली में कुछ न कुछ खराबी होने के कारण, चाहे वह जीवाणु, विषाणु, परजीवी रोगों के कारण हो या फिर अनुचित आहार के कारण। इस समय पशु को अधिकतर हरी घास अधिक मात्रा में खाने के लिए उपलब्ध होती है, जिसके कारण पशु को दस्त हो जाते हैं, जिसे हरेली लगना कहते हैं। यह रोग पशु को यकायक पशु आहार में परिवर्तन होने के कारण होता है, क्योंकि पशुओं को चारागाह में पर्याप्त मात्रा में हरी घास के रूप में चारा उपलब्ध रहता है। संतुलित आहार, सूखा चारा, भूसा आदि उपलब्ध नहीं हो पाता है। पशु को आहार सुपाच्य न मिलने के कारण गोबर करने में दर्द का अनुभव करते हैं और बेचैन हो जाते हैं। यदि पेट और अतड़ियों में सूजन हो जाती है तो पशु की भूख समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे पशु को बुखार रहने लगता है, जिससे पशु सुस्त हो जाते हैं। पशु को 3-4 दिन लगातार दस्त होने पर गोबर में आंव और रक्त भी आने लगता है। दस्तों में यदि रक्त अधिक समय तक आता रहता है, जिससे पशु कमजोर हो जाते हैं। पशु को अनिश्चित समय पर भूख लगती है, पशु को बार बार प्यास लगती है, पशु में रक्त की कमी हो जाती है। पशुओं को दस्त होने पर साफ सुथरी जगह पर रखना चाहिए तथा पशु को चारागाह में चरने से रोकना चाहिए, बांध कर चारा खिलाना चाहिए। पशुओं को सुबह सुबह चारागाह में चरने के लिए बिल्कुल न छोड़ें, क्योंकि चारागाह में घास के ऊपर झाग के रूप में जो बूंदें पाई जाती हैं, उसमें काफ़ी मात्रा में रोगजनक जीवाणु पाए जाते हैं, जो पशुओं में रोग फैलाते हैं। रोग से बचाव के लिए पशुओं को चारागाह में कम से कम जाने दें, रोग का टीका लगवाएं। रोग की अधिकता में दूध देने वाले पशुओं में दूध की मात्रा कम हो जाती है। जो पशु कार्य करने वाले होते हैं, उनकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। बरसात के मौसम में पशुशाला की स्वच्छता पर अधिक से अधिक ध्यान दें, क्योंकि अधिकतर रोग अस्वच्छता के कारण ही फैलते हैं। इसलिए गोबर और मूत्र को हमेशा शीघ्र ही हटाना चाहिए। मक्खी मच्छरों से बचाव के लिए समय समय पर गौशाला में कीटनाशक चूनों का छिड़काव करते रहना चाहिए। स्वच्छता पर बरसात के मौसम में विशेष ध्यान दें। बरसात के मौसम में पशुओं में कृमि प्रकोप बढ़ जाता है। आंतरिक परजीवियों से बचाव के लिए कृमिनाशक दवाएं समय समय पर देते रहना चाहिए। चारे में भूसा, पुआल संतुलित मात्रा में देना चाहिए। जो पशु को चारा दाना खिला रहे हैं, उसमें हल्का नमक और दस्त निरोधक चूर्ण अवश्य मिला दें, जिससे पशु की पाचन क्रिया सही रहे। पशु को हल्का और सुपाच्य आहार खिलाना चाहिए। बड़े पशु के लिए 2 गोली टेरामाइसिन और नेवलान दस्त अवरोधक चूर्ण 50 ग्राम मिलाकर देने से पशु को आराम मिलता है। अगर पशु छोटे हैं तो मात्रा आधी देनी चाहिए, जिससे पशु को आराम मिले। पशु यदि कार्य करने वाले हैं तो अधिक समय तक कार्य न लें। पशु को आराम देना चाहिए, जिससे पशु स्वस्थ भी रहेंगे और पशु में कोई भी दुर्घटना घटने की संभावना नहीं रहेगी।
0: कार्यक्रम कृषि चर्चा में अभी सोहन सिंह जानकारी दे रहे थे पशुओं को दस्त से कैसे बचाएं इस विषय पर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए सुनिए सूचना पर कार्यक्रम दर्पण।

0: बधाई हो दत्ता, बहुत बहुत बधाई हो, बिटिया जन्मी है, घर में लक्ष्मी आई है, बहुत बहुत बधाई हो।
1: बेटी को भी समझे बेटा समान, उड़ने को दे खुला आसमान, फिर देखें बेटियों की उड़ान, नाप लेंगी अपने नन्हे परों से पूरा आसमान।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: सड़क पर दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। जेब्रा क्रॉसिंग पर अपने वाहन की गति धीमी रखें। हमेशा सड़क के बाईं ओर चलें, क्योंकि दाहिनी ओर से वाहन ओवरटेक करते हैं। कभी भी वाहन के बाईं ओर से ओवरटेक ना करें। सड़क के किनारे लगे साइन बोर्ड्स के निर्देशों का पालन करें। बेवजह हॉर्न ना बजाएं और बड़े वाहनों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।
3: जिंदगी एक सफर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल आवश्यक है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर बल दिया, जिससे नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी बल दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। एनटीए ने कहा कि ये एक ऑनलाइन

प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थाई उत्तर में मौजूदा गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सोमालिया के पुटलैंड तट के पास समुद्री लुटेरों ने कैमरून के ध्वज वाले एक कार्गो शिप पर कब्जा कर लिया। लुटुफ नामक जहाज को सोमवार को कब्जे में ले लिया गया और नुगाल तट की ओर ले जाया गया। इस जहाज पर मोगादिशु में एक सैनिक प्रशिक्षण केंद्र के लिए तुर्की के हथियार, संचार और सैटेलाइट उपकरण लदे हुए थे। चालक दल में 6 भारतीय सदस्य सवार थे। हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टलफेन में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। 7:20 पर सुनिए गांधी चर्चा, प्रस्तुति तुलिका शर्मा की है। 7:30 फिल्म संगीत का कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे।

8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। ये दोनों ही समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। 8:30 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे गुलाम अली की गाई कुछ गजलें। 9 बजे सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम होगा गुड मॉर्निंग ग्वालियर। 9:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में तेजस भाटे का ध्रुपद धमार गायन सुनेंगे हम। 10 बजे जिले की चिट्ठी भोपाल से होगी और 10:05 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे। नाम होगा व्हाट्सएप फरमाइश। 11 बजे से सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

सायंकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे से। सभा के आरंभ में यह वाणी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होगा, जो आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होगा। 6 बजे से मध्य प्रदेश केंद्र से ही NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम सुना जा सकेगा, उमंग। हमारे केंद्र से 7:20 पर किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम चौपाल। इसमें चर्चा होगी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर, आतंकवाद से पीड़ितों की स्मृति और श्रद्धांजलि के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा डॉक्टर प्रवीण सिंह गुर्जर से सोहन सिंह की बातचीत किसान भाइयों को सुनवाई जाएगी, जिसका विषय होगा बरसात कालीन सब्जियों में लगने वाले प्रमुख कीट और बचाव। रात 8 बजे से लेकर सभा की समाप्ति तक कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। 7:10 हुए हैं। प्रादेशिक समाचार भोपाल से होंगे।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत आज सभी जिलों में आयोजित किए जाएंगे विशेष शिविर। मुख्यमंत्री टीकमगढ़ में सुनेंगे समस्याएं। भोपाल के ग्लोबल स्किल्स पार्क से भविष्य में प्रतिवर्ष 10,000 युवा होंगे प्रशिक्षित। मुख्यमंत्री ने कहा, AI के दौर में अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करना भी आवश्यक। केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। और प्रदेश में फिर स्ट्रांग मानसूनी सिस्टम सक्रिय। रीवा और सतना सहित कई जिलों में भारी बारिश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज टीकमगढ़ में जन विश्वास अभियान के तहत लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री यहाँ उद्योग संवाद समाधान ऑनलाइन CM मॉनिटरिंग के प्रकरणों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जिला विकास सलाहकार समिति बैठक में भी सहभागी होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री स्थानीय बुद्धिजीवियों के साथ संवाद भी करेंगे और पत्रकार वार्ता के माध्यम से पत्रकारों से रूबरू होंगे। सभी जिलों में भी मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान शिविर आयोजित किए जाएंगे। मंदसौर के गरोठ में आयोजित शिविर में आज अधिकारी गरोठ और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर जन समस्याओं और शिकायतों का निराकरण करेंगे। उधर सतना में जिला स्तर के विभाग प्रमुख अधिकारी एक बस में बैठकर कलेक्ट्रेट परिसर से सुबह 10 बजे मझगवां के लिए रवाना होंगे। इंदौर जिले में भी विधानसभा क्षेत्र सांवेर के लसुड़िया परमार स्थित पंचायत भवन में विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि उद्योग क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भोपाल के संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल पार्क में प्रतिवर्ष 10,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। वर्तमान में ये संस्थान प्रतिवर्ष 2,000 युवाओं को विभिन्न तरह के कौशल पाठ्यक्रमों द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान कर रहा है। वर्ष 2026 में 3,000 युवा प्रशिक्षित होंगे। ये संख्या निरंतर बढ़ेगी। मुख्यमंत्री गुरुवार को शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में अभिमुखीकरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में युवाओं के लिए अवसरों की कोई कमी नहीं है। वे युवाओं के लिए निरंतर अवसर बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर यादव ने कहा कि आज AI के दौर में हम तकनीक के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करना भी आवश्यक है।
1: आज वर्तमान के दौर में इतने तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही और उस टेक्नोलॉजी में आप भी दक्षता के साथ आते जा रहे हैं। आज AI का जमाना, हम सब उसकी तरफ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी जो परमात्मा ने दी हुई बौद्धिक क्षमता है उसका विकास भी जरूर करते रहे। अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी युक्तिबद्धता से हरेक जगह अपने आप को सिद्ध करें। हमारे अपनी काम की गरिमा और आपका हुनर और आपके मन की इच्छा शक्ति आपका मुकाम पर इंतजार कर रही है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों

0: और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। कोविड महामारी और पश्चिम एशिया संकट के अनुभवों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे तालमेल वाले सिस्टम सरकार के काम करने के तरीके का स्वाभाविक हिस्सा होने चाहिए। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असरदार इस्तेमाल के साथ साथ इंसानी दखल सुनिश्चित करने और क्षमताओं को इंसानी विशेषज्ञता के साथ जोड़ने पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। श्री शाह ने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने इस साल 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन तक कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात की इजाज़त दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने कल जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। ये फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आमतौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद यह निर्णय लिया गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के मामले की जांच पूरी कर ली गई है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुशील कुमार गुप्ता के नेतृत्व वाले जांच आयोग ने 600 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट तैयार कर उच्च न्यायालय में सीलबंद लिफाफे में जमा कर दी है। इस मामले में 25 अगस्त को सुनवाई संभावित है। आयोग ने जांच के दौरान इंदौर नगर निगम, इंदौर विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित विभागों से दस्तावेज जुटाए थे। प्रभावित क्षेत्र के लोगों से भी लिखित बयान आमंत्रित किए गए। अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका के साथ घटना के दौरान किए गए राहत और स्वास्थ्य संबंधी इंतजामों की भी पड़ताल की गई। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को एक और अवसर दिया है। प्रदेश के कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की खाली सीटों पर आज से 31 अगस्त तक अतिरिक्त कॉलेज लेवल काउंसिलिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें विद्यार्थियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। वहीं NCTE पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए द्वितीय अतिरिक्त चरण में 24 अगस्त तक पंजीयन और आवेदन किए जा सकेंगे। मेरिट सूची 27 अगस्त को जारी होगी और 29 अगस्त को सीट आवंटन किया जाएगा। आवंटित विद्यार्थियों को 29 अगस्त से 3 सितंबर तक निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर प्रवेश शुल्क जमा करना होगा। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। ट्रफ और डिप्रेशन के असर से पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश के कारण कई जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सतना के तराई क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के बाद चित्रकूट की गुप्त गोदावरी में पानी बढ़ गया है। पहाड़ का पानी गुफाओं के ऊपर से बहने लगा है। सुरक्षा को देखते हुए चित्रकूट नगर परिषद ने दोनों गुफाएं बंद कर पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए जिले में नर्सरी से 5वीं क्लास तक के सभी स्कूलों में आज अवकाश घोषित किया गया है। वहीं रीवा में 15 घंटे की लगातार बारिश के बाद शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बीहर नदी के तट से कुछ दूरी पर स्थित निचली बस्तियों में पानी भर गया है। वहीं डिंडौरी जिले में भी भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। अब रुक करते हैं खेल की खबर का। हॉकी में आज एम्स्टलफीन में FIH विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले कल पूल डी के अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारत दूसरे दौर में पहुंच गया है। दोनों टीमों ने मौके बनाए लेकिन गोल करने में दोनों ही टीमें नाकाम रहीं। पूरे मैच के दौरान भारत का डिफेंस मजबूत रहा। भारत ने विशेषकर तनावपूर्ण दूसरे हाफ के दौरान इंग्लैंड के कई पेनल्टी कॉर्नर रोके। इस ड्रॉ की मदद से सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय टीम पूल डी में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में लोक आस्था के प्रमुख केंद्र संत सिंगाजी धाम में संत शिरोमणि सिंगाजी महाराज का 467वां समाधि दिवस आज श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है, जहां दिनभर वार्षिक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मंदसौर और आगरमालवा में संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय समरसता संकल्प अभियान और कलश वंदन यात्रा का शुभारंभ किया गया। आगरमालवा में विश्व मच्छर दिवस के अवसर पर CMHO कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम की शपथ दिलाई गई। ग्वालियर में उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर परिसर में मूक

को बधिर दंपति द्वारा शुरू किए गए इशारा कैफे का उद्घाटन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति विवेक रूसिया द्वारा किया गया। धार में रबी वर्ष 2026-27 के लिए एग्रीस्टेक पंजीयन, पैक्स सदस्यता और अग्रिम उर्वरक उठाओ अभियान का जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम सरदारपुर विकासखंड के राजगढ़ में आयोजित किया गया। डिंडौरी में कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया की अध्यक्षता में मखाना विकास हेतु सेंट्रल सेक्टर स्कीम के भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत आज सभी जिलों में आयोजित किए जाएंगे विशेष शिविर। मुख्यमंत्री टीकमगढ़ में सुनेंगे समस्याएं। भोपाल के ग्लोबल स्किल पार्क में भविष्य में प्रतिवर्ष 10,000 युवा होंगे प्रशिक्षित। मुख्यमंत्री ने कहा, एआई के दौर में अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करना भी आवश्यक। केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। और प्रदेश में फिर स्ट्रांग मानसूनी सिस्टम सक्रिय। रीवा और सतना सहित कई जिलों में भारी बारिश। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: गांधी चर्चा में आज सुनते हैं 7 नवंबर 1929 को यंग इंडिया में प्रकाशित बापू के लेख के अंश, जिसका शीर्षक था नवयुवक क्या करें।
1: आज से कुछ दिन पहले मुझे आगरा युवक संघ की ओर से एक पत्र मिला था। उसमें कुछ बातें कही गई थीं। भविष्य में हमारी प्रमुख गतिविधि क्या रहेगी, इस संबंध में हमें कुछ मालूम नहीं है। हम अपनी बस्ती के किसानों और दूसरे पड़ोसियों से सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन इसका कोई व्यावहारिक तरीका हमें दिखाई नहीं देता। हमें आशा है कि इस समस्या को सुलझाने के लिए आप कोई व्यावहारिक उपाय बताने की कृपा करेंगे। गोरखपुर युवक संघ के मानपत्र में भी कुछ इसी तरह के भाव प्रकट किए गए थे और पूछा गया था कि युवकों के सामने रोजी रोटी की जो समस्या मुंह फैलाए खड़ी है, उसका सामना कैसे किया जाए। मेरे विचार में ये दोनों सवाल एक दूसरे से गुंथे हुए हैं और दोनों ही हल किए जा सकते हैं, बशर्ते कि नवयुवक शहरी जीवन की अपेक्षा देहाती जीवन को अपना ध्येय बना लेने के लिए राजी किए जा सकें। हम लोग ग्रामीण सभ्यता के वारिस हैं। मेरे विचार में हमारे देश की विशालता, जनसंख्या की बहुलता और उसकी भौगोलिक तथा प्राकृतिक स्थिति, आबोहवा आदि सब बातों ने उसे ग्रामीण सभ्यता के ही उपयुक्त बनाया है। ग्रामीण सभ्यता के जितने भी दोष हैं, वे सभी के जाने हुए हैं, तथापि उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो दूर न किया जा सके। ये तभी किया जा सकता है जब देश के नवयुवक ग्रामीणों का जीवन अपना लें, और अगर वे ऐसा करना चाहें तो उन्हें अपने जीवन को नए सांचे में ढालना पड़ेगा और अवकाश का प्रत्येक दिन अपने कॉलेजों और स्कूलों के आसपास बसे हुए गांवों में बिताना पड़ेगा। और जिन लोगों की पढ़ाई समाप्त हो चुकी है या जो कहीं कुछ भी पढ़ लिख नहीं रहे हैं, उन्हें गांवों में बस जाने का निश्चय कर लेना होगा। अखिल भारतीय चरखा संघ और उसकी तमाम शाखाएं तथा संस्थाएं जो उसकी देखरेख में काम कर रही हैं, विद्यार्थियों को सेवाक्षम बनाने में सहज योग दे रही हैं, जिससे लाभ उठाकर अगर विद्यार्थी चाहें तो ग्राम जीवन के अनुकूल सादगी से रहकर सम्माननीय जीवन बिता सकते हैं। अभी चरखा संघ में देश के कोई 1500 नौजवान काम कर रहे हैं, जिन्हें 15 रुपए से लेकर 150 रुपए तक की आय होती है, और आज भी चरखा संघ ऐसे अनगिनत विद्यार्थियों को काम दे सकता है जिनमें लगन, ईमानदारी और उद्योगशीलता है तथा जो हाथ का काम करने में शर्माते नहीं हैं। इसके अलावा अन्य राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाएं भी हैं जो नवयुवकों को इस तरह का अवसर देती हैं। अतएव मैं उन सभी उत्साही और सच्ची लगन वाले नवयुवकों को जो अपने वर्तमान वातावरण से और जीवन के दृष्टिकोण से असंतुष्ट हैं, सलाह देता हूं कि वे इन दो महान राष्ट्रीय संस्थाओं का अनुशीलन करें। ये संस्थाएं चुपचाप अत्यंत प्रभावशील और रचनात्मक काम कर रही हैं और नवयुवकों के लिए सेवा तथा सम्माननीय आजीविका कमा सकने का अवसर दे रही हैं। देश के नौजवान राष्ट्र निर्माण का कार्य करने वाली इन दोनों महान शक्तियों से लाभ उठाएं या ना उठाएं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे गांवों में अवश्य जाएं और अपने लिए सेवा, खोज एवं सच्चे ज्ञान का अनंत क्षेत्र प्राप्त कर लें। क्या ही अच्छा हो अगर अध्यापक गण अपने छात्रों, लड़कों तथा लड़कियों दोनों को अवकाश के दिनों में साहित्यिक अभ्यास का काम न देकर गांवों की शिक्षा प्रद यात्रा करने की सलाह दें। अवकाश का उपयोग मनोविनोद में ही किया जाना चाहिए, पुस्तकों को कंठस्थ करने में कदापि नहीं।
0: नवयुवक क्या करें, इसी शीर्षक से 7 नवंबर 1929 को यंग इंडिया में प्रकाशित बापू के लेख के अंश अभी आपने सुने। गांधी चर्चा का समापन अब करते हैं इस भक्ति गीत से।

अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा, प्रस्तुति तुलिका शर्मा की थी। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं अनवर और सुलक्षणा पंडित का गाया, गुलजार का लिखा और खय्याम का संगीतबद्ध किया ये गीत। फिल्म का नाम है थोड़ी सी बेवफाई।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आशा भोसले और दिलराज कौर को आइए सुनते हैं, फिल्म है सत्य पे सत्ता, गीत गुलशन बाबरा का, संगीत राहुल देव बर्मन का।

आशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम के स्वर में आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म अंधा कानून का ये गीत। आनंद बख्शी का लिखा गीत है ये और संगीतबद्ध किया है इसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ।
5: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
4: क्या, कैसे?
5: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
4: वाह। अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
5: mmsky.mp.gov.in पर। mmsky, सीखो भी कमाओ भी।
6: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
7: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
6: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
8: कार्यक्रम के अंत में आइए अब आपको सुनवाते हैं मन्ना डे और आशा भोसले के स्वर में फिल्म शायद का ये गीत। गीतकार विठल भाई पटेल और संगीतकार मानस मुखर्जी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। अमेरिका ने ईरानी सरकार के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टलवीन में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवसंरचना, संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया।
1: बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असरदार इस्तेमाल के साथ साथ इंसानी दखल सुनिश्चित करने और क्षमताओं को इंसानी विशेषज्ञता के साथ जोड़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी बात खत्म करते हुए जटिल चुनौतियों से निपटने और भारत के भविष्य को आकार देने के लिए बेहतर तालमेल, नई सोच और सामूहिक जिम्मेदारी की जरूरत को दोहराया। बैठक के दौरान सचिवों ने क्षेत्रवार प्राथमिकताओं, उभरती चुनौतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं पर अपने अनुभव साझा किए। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रिया के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पुणे में भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 17 से 21 अगस्त तक 5 दिवसीय ब्रिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT ट्रैक का आयोजन किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम है इनोवेट, कोऑपरेट और ट्रांसफॉर्म फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और सुरक्षित, समावेशी तथा मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन आज 21 अगस्त को 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स मीटिंग के साथ हो रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया

0: इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार पुणे से माधव जायभाई के साथ सुरेखा जोशी।
1: इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी और AI का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल 2 छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टिकरण के नाम पर वंदे मातरम को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सुविधाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। NTA ने बताया कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें JEE मेन, नीट या UGC नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: NTA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। NTA ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। NTA ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न ₹200 वापस किए जाते हैं। NTA ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शिमला में शुरू हो रहा है। सत्र 3 सितंबर तक चलेगा और इसमें कुल 10 बैठक होंगी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। मॉनसून सत्र के पहले कल शिमला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह कल शाम पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर बागडोगरा पहुंचे। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्ता और पर्यटन मंत्री शंकर घोष सहित अन्य लोगों ने श्री शाह का स्वागत किया। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमेरिका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कुरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। इससे हिजबुल्ला को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर विदेशी मुद्रा हासिल करने और प्रतिबंधों से बचने का जरिया मिलता था। इस नए वर्गीकरण का उद्देश्य यह बताना है कि हिजबुल्ला ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की ओर से काम करता है और कोई स्वतंत्र संगठन नहीं है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट।
4: हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले एमवी लुतुफ जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सिबू एक टैंकर का अपहरण शामिल है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे, जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, एक तुर्की नागरिक, एक जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। खबरों के अनुसार 8 समुद्री लुटेरे जहाज को पुंटलैंड के डंगोरोयो जिले में गरमाल के पास नुगाल तट की ओर ले गए। सोमालिया के अधिकारियों ने बताया कि समुद्री लुटेरों ने अभी 6 जहाजों पर कब्जा कर रखा है। इनमें इस हफ्ते कब्जा किए गए 2 जहाज भी शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: और अब खेल के मैदान की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह।
5: हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण मैच में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। कल पूल डी में अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारत दूसरे दौर में पहुंच गया। इस ड्रॉ की मदद से सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम पूल डी में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी का मुकाबला चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई केंग और वान चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शूशियान से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु, पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। और एथलेटिक्स में लुसाने डायमंड लीग में आज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे एक बार फिर आमने सामने होंगे। इस प्रतियोगिता के द्वारा नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में श्रीलंका के पथिरागे ने नीरज चोपड़ा को मजबूत चुनौती देते हुए स्वर्ण पदक जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक के साथ वापस आए थे।
1: धन्यवाद शक्ति इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। उधर केरलम के कई तटीय क्षेत्रों में आज समुद्र में ऊंची लहरों से समुद्र का जल स्तर बढ़ने की आशंका है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
6: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, नई होगी दिल्ली। दैनिक जागरण लिखता है, 40 लाख नए घर, 695 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क से बदलेगी राजधानी। दैनिक भास्कर ने छापा है, लुटियन छोड़ बाकी दिल्ली में होंगी गगनचुंबी इमारतें, डेटा सेंटर बनेंगे, वैश्विक शहर के रूप में विकसित होगी देश की राजधानी। झारखंड में झटका शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने छापा है, सरकार ने छात्र आंदोलन के बाद दिया था आदेश, झारखंड में परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हालिया टिप्पणी पर जनसत्ता ने कूटनीतिक संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पिछले कुछ सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में आमतौर पर शांति और स्थिरता देखी जा रही है, इसलिए संभव है कि पाकिस्तान की ओर से तमाम नकारात्मक कवायदों के बावजूद वहां के बारे में वैश्विक स्तर पर अलग राय बनी है, इसलिए गोर के बयान को भारत के प्रति अमरीकी नीति में बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमर उजाला ने रचनात्मकता से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, चीन में कल से रोबोट ओलंपिक, बीजिंग में पहुंची 16 देशों की 666 टीमें, मैदान में उतरेंगे 2056 ह्यूमनॉइड। पत्र की उपलब्धि शीर्षक से विश्व आर्थिक मंच की 2026 की रिपोर्ट भी ध्यान आकर्षित करती है, कैंसर के टीके से एआई तक, दुनिया बदलने वाली 10 नई तकनीकें, आने वाले सालों में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, साइबर सुरक्षा और एआई के क्षेत्र में पड़ सकता है इन तकनीकों का बड़ा असर। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वृद्धजनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए लोकसत्य ने बॉक्स में खबर प्रकाशित करते हुए लिखा है, ज्ञान अनुभव का उत्सव है वरिष्ठ नागरिक दिवस।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: गुलाम अली को आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: आइए सुनते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में दिल्ली देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण पाठ के बजाय केवल दो लोक गायन के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टीकरण के नाम पर वंदे मातरम को दो भागों में विभाजित कर दिया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज टीकमगढ़ में जनविश्वास अभियान के तहत लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री यहां उद्योग संवाद, समाधान ऑनलाइन, सीएम मॉनिटरिंग के प्रकरणों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि उद्योग क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भोपाल के संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल पार्क में प्रतिवर्ष 10,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। वर्तमान में ये संस्थान प्रतिवर्ष 2,000 युवाओं को विभिन्न तरह के कौशल पाठ्यक्रमों द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान कर रहा है। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। लगातार बारिश से रीवा, सतना, मैहर और पन्ना जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। यहां भारी बारिश के कारण जिले के नदी नाले उफान पर हैं। इन जिलों में आज पहली से पांचवीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। और हॉकी के महिला विश्व कप में भारत ने इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। आज भारत का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तुलिका का नमस्कार। श्रोता साथियों, आज कार्यक्रम की शुरुआत में ही हम थोड़ा सा खुद को टटोलते हैं। अभी पिछले दिनों मैं इंटरनेट पर कुछ कंटेंट देख रही थी, तो उसमें बार बार हिंदुस्तानियों के सिविक सेंस पर बात की जा रही थी, और हम हिंदुस्तानियों की भी कुछ कंटेंट्स और रील्स मेरे सामने आई, जिनमें वो खुद भी अपने ही आसपास के लोगों के सिविक सेंस पर प्रश्न उठा रहे थे। क्या है ये सिविक सेंस, ये क्यों ज़रूरी है और इसे कैसे डेवलप किया जा सकता है? कभी सोचा है आपने? हम एक दूसरे के सिविक सेंस पर उंगली तो उठा देते हैं, लेकिन क्या हम सिविक सेंस के जो मानदंड हैं उन पर खरे उतरते हैं? ये सब सवाल हमें बीच बीच में खुद से पूछते रहने चाहिए। दरअसल सिविक सेंस यानी नागरिक बोध एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक नागरिक के तौर पर एक ऐसा व्यवहार करने की जिम्मेदारी जिससे समाज, सार्वजनिक स्थानों और उन जगहों पर रहने वाले जो दूसरे लोग हैं उनका सम्मान बना रहे। यदि आसान शब्दों में हम इसे कहें तो ऐसे कहा जा सकता है कि आपकी सुविधा के साथ साथ सबकी सुविधा का ध्यान रखना सिविक सेंस है। समाज में रहते हुए हमें अक्सर दूसरों की वजह से जो परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, यदि हम उसी परेशानी का बायस दूसरे के लिए बन जाते हैं तो हम भी सिविक सेंसेस का पालन नहीं कर रहे। अब जैसे सड़क पर कूड़ा नहीं फेंकना, ये आपके सेंसिबल होने का एक मानदंड है। ट्रैफिक के नियमों का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना, और यदि किसी कतार में खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, तो लाइन में आगे जाकर के अपना काम किसी पहचान से या किसी और तरह से लड़ झगड़ कर अपना काम पहले करवा लेना, ये भी नॉनसेंस है। सिविक सेंस क्या है कि लाइन में लगकर आप अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए। यदि आप किसी भी स्थान पर हैं तो बुज़ुर्गों को, दिव्यांगों को, ज़रूरतमंदों को प्राथमिकता दीजिए। जो सार्वजनिक जगहें हैं जैसे शौचालय, पार्क, रेलवे स्टेशन, इन सब जगहों को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हर जगह कूड़ेदान की व्यवस्था की जाती है, ये सरकार द्वारा की जाती है, नगर निगमों द्वारा की जाती है, सफाई के संस्थान हैं जो उनके द्वारा की जाती है। हम ज़रा भी जहमत नहीं उठाते कि उन कूड़ेदानों तक हम पहुँच पाएँ। यदि ऐसा आपको करना है, कोई कचरा फेंकना है, तो हम सड़क पर ही फेंक देते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि आसपास आप ढूंढें कि कहीं कूड़ेदान है या नहीं, और यदि नहीं है तो आपका जो कचरा है वो इतना बड़ा कचरा भी नहीं होता। आपने केला खाया, उसका छिलका हो सकता है, छिलके में जब तक केला था तब तक तो वो छिलका भी आपके पास था ना, तो केला खा लेने के बाद वो छिलका भी आपके पास रह सकता है, जहाँ केला था वहीं आप उसे रख सकते हैं। चिप्स खाया, उसका पैकेट भी वहीं रह सकता है जहाँ पहले चिप्स था। अब सवाल ये उठता है कि सिविक सेंस ज़रूरी क्यों है? दरअसल सिविक सेंस न सिर्फ आपकी पहचान कराता है, बल्कि आप जिस जगह रहते हैं उस जगह की भी पहचान बनाता है। अब इंदौर शहर सबसे साफ शहर है, ये इंदौर के लोगों ने अपने शहर की पहचान तो बना ही ली है। सफाई, अनुशासन, ये सब तो इंदौर शहर ने दिखाया ही है और एक मिसाल कायम कर दी है। जब हम आपस में एक दूसरे का सम्मान करेंगे, अपने आसपास जो सुविधाएं हमें मौजूद हैं, अपने आसपास के माहौल का सम्मान करेंगे, तो ही ये सिविक सेंस हम में डेवलप हो पाएगा। ये किसी कानून के डर से नहीं होता, बल्कि अपने कर्तव्यों की समझ से पैदा होता है। यदि हम आपसे कहें कि सड़क पर यदि आप कचरा फेंकेंगे तो आपको जुर्माना लगेगा,
आपको मालूम है कि आप किसी न किसी तरह से जुर्माने से बच सकते हैं, छुप के फिर वो काम करने लगेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर, क्योंकि हमें अपने कर्तव्यों का भान नहीं है। हाँ, अधिकारों का ज्ञान ज़रूर है। दरअसल ये जो सिविक सेंस है ना, वो एक दिन में सिखाया नहीं जा सकता, ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। व्यवहार में हम लगातार जब अभ्यास करते हैं इसका, तो ये विकसित होता है। शुरुआत इसकी घर से ही होती है, स्कूल जाते हैं फिर वहाँ कुछ सीखते हैं, फिर हम समाज में रहते हैं वहाँ सीखते हैं। सीखने के जितने भी तरीके हैं, यदि हम उनसे सीखना बंद कर दें तो हम बेहद ख़राब नागरिक साबित होंगे। घर के बच्चों को सबसे पहले सिखाया जाना चाहिए कि किस तरह से सार्वजनिक व्यवहार उनका होना चाहिए। स्कूल में सिखाया जाना चाहिए कि किस तरह लाइब्रेरी की किताबें इस्तेमाल की जाती हैं, किस तरह कचरा नहीं फैलाया जाता है, किस तरह लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करना होता है। छोटी छोटी आदतों पर भी जोर ज़रूर दिया जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि हम शब्द इसलिए कह रही हूँ कि हम मतलब हम सब देखते हैं कि किसी ने भी सड़क पर थूक दिया। कभी हमें भी इमरजेंसी होती है तो हम भी सड़क पर थूक देते हैं। ये बहुत निंदनीय व्यवहार है। सड़क पर चलते समय लगातार हॉकिंग करना, हॉर्न बजाए जाना बिना किसी बात के, ये भी अशोभनीय व्यवहार है। किसी सार्वजनिक स्थान पर हम हैं और वहाँ लगातार शोर किए जा रहे हैं, जिससे आसपास वालों का कंसंट्रेशन खराब हो रहा है या उन्हें किसी तरह का व्यवधान पड़ रहा है, ये भी अशोभनीय व्यवहार है। आपके घर में कोई कार्यक्रम है, आप ज़ोर ज़ोर से स्पीकर पर गाने और म्यूज़िक बजा रहे हैं या किसी भी तरह का कुछ बाजा बजा रहे हैं, ये भी अशोभनीय व्यवहार है। यदि आपको गाने सुनने हैं तो आप उसका वॉल्यूम इतना रखिए कि आपके घर में ही सुनाई दे। घर के अड़ोस पड़ोस वालों को उस गाने के सुनने से तकलीफ हो सकती है या वो नहीं सुनना चाह रहे होंगे, आप उन्हें ज़बरदस्ती सुनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आपको खुद की जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। सफाई करना सरकार का काम है ये सोचकर हमारा शहर साफ नहीं होगा। चूंकि उस जगह पर हम भी रहते हैं, इसलिए सार्वजनिक स्थान सारे हमारे हैं, मेरे हैं, ये जिम्मेदारी वहन करनी होगी। और हाँ, इस जिम्मेदारी का एक सामूहिक भाव भी होना चाहिए। जो सकारात्मकता का जो दबाव होता है ना, सामाजिक दबाव होता है, यदि कोई जगह साफ है, बहुत साफ है, वहाँ आप जाते हैं तो वहाँ कचरा नहीं फेंकते, ये दबाव है, लेकिन गंदी जगह पर आप और गंदा कर देते हैं क्योंकि वहाँ आप किसी दबाव का अनुभव नहीं करते। तो इस तरह के दबावों को समझिए। सिविक सेंस हमारी जिम्मेदारी है, इसे महसूस कीजिए और अपने अंदर इसे डेवलप कीजिए।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।

0: 5% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
0: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: चलिए आगे बढ़ते हैं गुड मॉर्निंग ग्वालियर कार्यक्रम में। आपके साथ आगे बढ़ेंगे हम, मैं यानी तुलिका शर्मा आपकी दोस्त। श्रोता साथियों, कभी कभी आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो अपनी उपलब्धियों से इतने मुग्ध हो जाते हैं कि दूसरों को लगातार हानि पहुंचाते रहते हैं, मानसिक संतरास देते रहते हैं। अपनी उपलब्धियों को लगातार अपने ऊपर लादे रहते हैं, यदि ये कहें तो गलत नहीं होगा, और इस वजह से दूसरों की भावनाओं का अनादर करना शुरू कर देते हैं। दरअसल हम ही हम हैं, तुम क्या चीज़ हो, ऐसा समझने वाले बहुत से लोग आपको जीवन में मिलेंगे। हमें ये भी लगता है कि हम ऐसे नहीं बनेंगे, लेकिन जाने अनजाने हम भी कभी कभी वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम दूसरों को मानसिक कष्ट दे रहे हैं अपने अहंकार की वजह से। तो क्या करें कि हमें अपने बड़े होने का, कुछ विशिष्ट होने का अहंकार न पैदा हो। दरअसल इसके लिए एक बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस है, आप हमेशा खुद को चकित करते रहें, विस्मित करते रहें, तो निश्चित ही ये भाव कि हम बड़े हैं, महान हैं, हमने कुछ बड़ा कर लिया है, हम फन्ने खा हैं, ये जो भाव है आपके अंदर नहीं आएगा। अब विस्मित आपको कैसे करना है खुद को, ये सोचना है। कभी खुले आकाश को देर तक निहारिए, कितना बड़ा आकाश है, आपसे तो बड़ा है ना। बड़े विशाल पर्वत की तलहटी में खड़े होकर उसकी ऊंचाई को देखिए, आश्चर्य महसूस होगा। कोई ऐसी घटना, संगीत, कोई ऐसी पेंटिंग, ड्राइंग या किसी असाधारण खेल प्रदर्शन को देखिए और मेस्मराइज्ड हो जाइए, स्तब्ध हो जाइए। ऐसे वक्त में हम ये महसूस करते हैं कि ये अद्भुत पराक्रम या ये अद्भुत काम हम नहीं कर पाए, और खुद ही जो आप अपने आप को फन्ने खां महसूस कर रहे थे, वो आपके गुब्बारे की हवा उसी विस्मय से बाहर निकल जाएगी। इन पर बहुत शोध हुए हैं। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि ऐसे विस्मय के क्षणों में हमारा ध्यान थोड़ी देर के लिए अपने ऊपर से, अपने विचारों से हटकर उस अनुभव पर केंद्रित हो जाता है। हमें वो एक माइंडफुल एक्सपीरियंस प्रदान कराता है, हमें नई तरह की ऊर्जा देता है, और अपने से हटकर दूसरों से जुड़ने की भावना पैदा होती है। यही कारण है कि अब जो मेडिकल साइंस है वो भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए तत्पर हो रही है, और विशेष तौर पर बात जब मानसिक स्वास्थ्य की होती है तो इस तरह के मेस्मराइज्ड मोमेंट्स को कलेक्ट करने की कोशिश की जाती है। इसे खुशी बनाने वाले, खुशी बढ़ाने वाले लम्हों की तरह से देखा जा रहा है। जो ये मेस्मराइजिंग मोमेंट्स होते हैं ना, विस्मय के पल होते हैं, अपने आप को चकित कर देने वाले पल आप देते हैं खुद को, तो ये आपकी सोच का दायरा बढ़ाते हैं, तनाव तो कम करते ही हैं, मन को भी हल्का करते हैं, जीवन में नए नए दृष्टिकोण पैदा करते हैं। इसलिए ये छोटे छोटे अनुभव खुद को देते रहिए, और ये आपको एक बेहतर इंसान बनने के लिए तैयार करते रहेंगे।
3: जी।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: एक बार फिर हाजिर है तुलिका लेकर आपका अपना कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। श्रोता साथियों, अभी मैं सोच रही थी कि आपसे क्या बातें की जाएं, और मुझे ध्यान आया कि आजकल अकेलापन लोगों में बहुत बढ़ गया है, विशेष तौर पर जो लोग घरों में बैठकर काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं। घूमने फिरने का, मिलने जुलने का जो प्रचलन है वो ख़त्म होता जा रहा है। मिलने जुलने का जो प्रचलन है भी, जितना बना हुआ भी है, वो सिर्फ दिखावे भर का रह गया है। हम सिर्फ मिलने के लिए किसी के घर जाएं या नियमित रूप से मिलें, ये प्रचलन कम होते जा रहे हैं, इसलिए अकेलापन बढ़ता जा रहा है। अकेलापन पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, और इसके बारे में मैं सोच रही थी तो एक श्लोक याद आया जो गीता के 6 अध्याय में लिखा गया है। उसका अर्थ है कि एकांत को हमें इन्जॉय करना चाहिए। एकांत और अकेलेपन में अंतर बताया गया था उसमें। दरअसल एकांत जो है वो उस श्लोक के आधार पर आत्म साधना के लिए बेहद ज़रूरी है। एकांत में आप खुद से मिल पाते हैं। अकेलापन जब भी सताए तो आप खुद का साथ ढूंढिए। अपने साथ कभी बैठे हैं आप? ये भी एक बहुत बड़ा अभ्यास है, खुद के साथ बैठना, खुद की कमियां महसूस करना, खुद की स्ट्रेंथ महसूस करना, हमें क्या चाहिए अपनी ज़रूरतें महसूस करना। हम अक्सर दूसरों की ज़रूरतें महसूस कर लेते हैं और उनकी ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं, लेकिन अपने लिए समय नहीं होता। इसलिए यदि आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं तो मत जूझिए, खुद का साथ ढूंढिए और एकांत का जो साधना है वो करते रहिए।

अब घड़ी की बाहें यानी सुइयां भी इशारा कर रही हैं कि हमें जाना होगा। तो इजाज़त दीजिए अपनी दोस्त तुलिका को। नमस्कार।

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से अभी आप सुन रहे थे गुड मॉर्निंग ग्वालियर। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवा रहे हैं तेजस भाटे का ध्रुपद धमार गायन। आपके साथ पखावज प्रसंगत कर रहे हैं जयंत गायकवाड़। आइए सुनते हैं तेजस भाटे का राग भैरव में ध्रुपद धमार गायन।

0: थोड़ी ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी है।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है छतरपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुनील पांडे का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। छतरपुर जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति की भावना, उमंग और उत्साह के साथ मनाया गया। जिले भर में विभिन्न स्थानों पर आनबान और शान के साथ तिरंगा फहराया गया। जिला मुख्यालय पर मुख्य समारोह पुलिस लाइन परेड ग्राउंड छतरपुर में आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार थे। मुख्य अतिथि ने कलेक्टर मृणाल मीना और पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के साथ खुली जीप में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संदेश का प्रसारण किया गया। समारोह में श्री अहिरवार ने तीन लोकतंत्र सेनानियों और दो भूतपूर्व सैनिकों का शॉल श्री

0: फल और पुष्पमाला से सम्मान किया। इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। समारोह में स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं। छतरपुर जिले के केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत ग्राम सुखवाहा के मैनारी में विस्थापित परिवारों को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से जनविश्वास कार्यक्रम के तहत बीते 18 अगस्त को मैनारी में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे और विस्थापित परिवारों की समस्याओं और आवश्यकताओं को सुना गया। ग्रामीणों द्वारा विभिन्न शासकीय योजनाओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए गए, जिनमें से कई आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। पशुपालन विभाग द्वारा मुर्गी पालन के लिए 25 आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए। इसके साथ ही भैंस पालन के लिए 11, बकरी पालन के 2 और पशु शेड के निर्माण के लिए 2 आवेदन प्राप्त किए गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 36 व्यक्तियों का परीक्षण कर दवा वितरित की गई। इसके साथ ही आयुष विभाग द्वारा 42 व्यक्तियों को दवा प्रदान की गई। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 91 आवेदन में से 88 आवेदन पात्र पाए गए, जिन्हें स्वीकृत किया गया। वहीं बीपीएल सूची में नाम जोड़े जाने के लिए 14 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 10 व्यक्तियों का नाम जोड़े जाने की कार्रवाई की गई और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 16 आवेदन प्राप्त हुए, जिस पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। पीएम आवास के लिए 85 आवेदन प्राप्त हुए, जिस पर समस्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया। ग्रामवासियों से विस्थापन के संबंध में चर्चा के दौरान विस्थापितों द्वारा ग्राम साड़ा और ग्राम भरतला में रहवासी प्लाट उपलब्ध कराने के लिए सहमति बनाई गई। छतरपुर कलेक्टर मृणाल मीणा ने हाल ही में छतरपुर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर सभी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर आरपी गुप्ता और सिविल सर्जन डॉक्टर शरद चौरसिया उपस्थित रहे। कलेक्टर ने जिला अस्पताल के सभी तलों पर भ्रमण कर ओपीडी रूम, एसएनसीयू रूम, एएनसी वार्ड, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, एनआरसी और पीडियाट्रिक वार्ड सहित सभी वार्डो का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने परिसर में गंदगी पाए जाने पर नाराजगी जताते हुए सफाई इंचार्ज को निर्देश दिए कि अस्पताल में मरीजों के अटेंडरों की बैठक व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए, साथ ही बेंच लगाकर उनके बैठने की व्यवस्था की जाए। बारिश से अस्पताल में पानी लीकेज पाए जाने पर उसको तत्काल तरपोलिन शीट लगाकर सही करने के निर्देश दिए गए। जिले में अनुसूचित जाति एवं परीक्षा परिणामों में सुधार के उद्देश्य से 19 उत्कृष्ट छात्रावासों में विशेष कोचिंग की व्यवस्था की गई है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नमः शिवाय अर्जरिया की अध्यक्षता में 12 अगस्त को बैठक में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए योग्य और अनुभवी शिक्षकों का चयन किया गया। छतरपुर जिले में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, जिसके तहत छतरपुर जिला कलेक्टर के नेतृत्व में नगर पालिका विशेष तिरंगा रैली निकाली गई, जिसे छतरपुर विधायक ललिता यादव ने रवाना किया। बिजावर विधायक राजेश शुक्ला ने बिजावर में तिरंगा यात्रा निकाली, जबकि राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया ने बमीठा से खजुराहो तक लगभग 100 युवाओं के साथ तिरंगा रैली निकाली। वहीं पत्रकार संगठन के सदस्यों ने भी छतरपुर शहर में तिरंगा यात्रा निकाली। पूरे जिले में तिरंगे को लेकर एक उत्साह का वातावरण सप्ताह भर देखने को मिला। वहीं अब बात करते हैं जिले के मौसम की। छतरपुर जिले में इस वर्ष सामान्य बारिश हो रही है और जून तथा जुलाई माह में बहुत कम बारिश दर्ज हुई है, लेकिन अगस्त माह में बारिश ने जोर पकड़ लिया है। अभी तक छतरपुर जिले में 568 मिलीमीटर यानी कि 22.4 इंच औसत बारिश दर्ज की गई है, जबकि बीते वर्ष इसी अवधि में 1083.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जो कि 42 इंच थी। इस वर्ष सर्वाधिक बारिश जिले के गौरीहार विकास खंड में 803 मिलीमीटर और बिजावर में सबसे कम 433 मिलीमीटर दर्ज की गई है। किसानों ने अपने खेतों में ज्यादातर मूंगफली, सोयाबीन, उड़द और तिल की फसल लगाई है। कृषि विभाग के मुताबिक फसल के लिए अभी तक यह अच्छी बारिश साबित हुई है। जिले में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती समरसता संकल्प अभियान के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने शामिल होकर कलश वंदन यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि ये समरसता संकल्प यात्रा गांव-गांव पहुंचकर जन जन को संत रविदास जी के आदर्शों को पहुंचाने का काम करेगी। कार्यक्रम में छतरपुर विधायक ललिता यादव और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। छतरपुर जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे छतरपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुनील पांडे का था और वाचक थे अभिषेक कटियार।
2: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।

व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम का ये पहला गीत था कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म बलमा से। गीत समीर का, संगीत नदीम श्रवण का था और सुनना चाहते थे आप सब। मुकाम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, जगुताई राजे जाधव, संचित देशमुख, प्रथमेश सर्वद, हर्षता सानवी और प्रणाली देशमुख। दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। गांव फरासी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी। और पटियाली रोड गंजुंडवारा से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाद कुरैशी और बेबी अरीबा हबीबा। कार्यक्रम का अगला गीत अब हम आपको सुनवाएंगे। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं नई बस्ती गंजुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी। अडार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश और दीपेश वर्मा। कमर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली। लोहेडी जिला महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गोहर और सुनील पाठक। पोटियाकला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत बद्ध किया ये गीत। फिल्म का नाम है आक्रमण।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं हमारे ये सभी श्रोता। आप हैं रोहिदास चौक पंढरपुर से सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, प्रशांत शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोड़के। कलनौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव और संगीता जाधव। नेहरू चौक पैठन से सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव और बेबी सिया जाधव। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर रविंद्र रावल का लिखा ये गीत। संगीतबद्ध किया है राम लक्ष्मण ने, इसे गाया है लता मंगेशकर और SP बालसुब्रमण्यम ने और फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन।
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

सौदागर संतर मुरार से गुड्डू मिश्रा, गिरीश मिश्रा और निशा मिश्रा, संदलपुर आंतरी ग्वालियर से कालीचरण यादव, उर्मिला देवी यादव, दीपक यादव और चांदनी यादव, नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता जैन और सूरज जैन, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया फिल्म धरती का ये गीत। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
1: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
0: मतलब
1: ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
2: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
5: ग्राम नगर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। सियरा लियोन, वेस्ट अफ्रीका से शेख जियाउर रहमान। फुलचिंचोली तालुका पंढरपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी, बानू बी मुलानी, बादशाह मुलानी और उनके परिवार के सभी सदस्य। आप सब सुनना चाहते हैं अपनी पसंद पर किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया फिल्म बंदिश का ये गीत। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम का ये अगला गीत है, सुनना चाहते हैं आप सब। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश।

काश सहावा रोड गंजडुंडवारा से मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद कलीम अंसारी और शमसुल कमर राही, धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर लता मंगेशकर का गाया फिल्म सुराग का ये गीत। गीतकार हैं कैफी आजमी, संगीतकार बप्पी लहरी।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर है। आप हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप सिंह। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। खरियाराणी सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या बिजारनिया। गाँव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह गिल। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर महेंद्र कपूर, बलबीर और साथियों के स्वर में फिल्म मेरे हमसफर का ये गीत। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सबकी पसंद पर। आप हैं आर्यनगर कोह का भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल, बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, लोरमी चचेरी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया, समीर का लिखा और नदीम श्रवण का संगीतबद्ध किया ये गीत। फिल्म का नाम है वक्त हमारा है।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से हम
1: आयुष्मान भारत उमंग स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम की राज्य स्तरीय समीक्षा कार्यशाला का कल भोपाल में आयोजन हुआ, जिसमें किशोरों के स्वास्थ्य, जीवन कौशल और समग्र विकास को लेकर विभागों ने कार्य योजना साझा की। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने कल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.ffsfc.mp.gov.in का लोकार्पण किया। गोंड सभ्यता के महानायकों पर आधारित जननायक समारोह का आयोजन भोपाल स्थित जनजातीय संग्रहालय में आज से 23 अगस्त तक किया जा रहा है। पहले दिन आज शाम 6:30 बजे राजा पेमल शाह नृत्य नाट्य प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें प्रवेश निःशुल्क है। और मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर समेत प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश की संभावना जताई गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम। फोन करें गीत सुने।
1: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जावेद खान। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। श्रोताओं, यदि आपका फोन हफ्ते भर के अंदर लगा है तो कृपया हमारे नए श्रोताओं को जरूर मौका दें और आप अगले हफ्ते हमारे फोन इन कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। और जो हमारे नए श्रोता हैं, हम उनको अपना फ़ोन नंबर बता देते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 2660902 और 2660901 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सबसे पहले हमारे कौन से श्रोता हमसे जुड़े हैं, चलिए हम बात करते हैं।
2: हेलो
1: जी। जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, कौन बोल रही हैं?
2: मैं जबलपुर से बोल रही हूँ, वंदना उपाध्याय।
1: वंदना जी, आपका स्वागत है। और सुनाइए कि नमस्ते, आपके आसपास का मौसम कैसा है ये बताइए।
2: मेरे यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है सर, यहाँ जबलपुर बरेला में बहुत कंटिन्यू चालू बारिश है।
1: अरे वाह, तो बरसात का आप फुल मजा ले रहे हैं।
2: मौसम ऐसा हो गया जैसे दार्जिलिंग में आ गए हो मेरे।
1: अरे वाह वाह, क्या बात है,
2: इतनी ऐसी फीलिंग आ रही है।
1: अरे वाह, क्या कहना है, क्या

0: तो बरसात का फुल मजा ले रहे हैं।
1: जी। और आपके यहाँ भोपाल में कैसा माहौल है? चलिए
0: बहुत अच्छा है, पानी है, यहाँ भी बहुत अच्छी बारिश हो रही है।
1: बढ़िया है, मस्त बारिश का ही मौसम है, मजा आ रहा है।
0: अरे
1: आज कोशिश
0: वाह,
1: की तो मैंने लगाती हूँ
0: नहीं
1: फोन।
0: बहुत अच्छा किया। और देखिए क्या होता है कि खास हम इसलिए कहते हैं कि अपने श्रोताओं से कि हफ्ते भर के बाद में लगाइए ताकि दूसरे लोगों को भी
1: मैं
0: मौका
1: सुनते
0: मिले।
1: रहती हूँ, मैं कंटिन्यू सुनते रहती हूँ।
0: चलिए अच्छा
1: और आप लोगों की
0: बताइए
1: प्रस्तुति बहुत अच्छा, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहता प्रोग्राम में।
0: कि बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बताइए कि कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: मैं गाना सुनूंगी, तुझे गीतों में ढालूंगा, सावन को आने दो,
0: सावन को आने दो।
1: सावन।

0: कार्यक्रम फोन करेंगे सुने में आपका स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: जी नमस्कार, मैं राम मालवी बोल रहा था कोलार रोड भोपाल से।
0: राम मालवी जी, क्या हाल चाल है?
1: बस एकदम बढ़िया हूँ सर, ऊपर वाले की मेहरबानी है आप पे हम पे हर मतलब सभी श्रोताओं पे, और परिवार वाले भी सब बढ़िया है आनंद मंगल में।

0: आप सुनाओ सर, आप कैसे हो सर?
1: बहुत अच्छे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो देखिएगा कि मौसम बदल रहा
0: जी जी जी
1: है ना,
0: बिल्कुल
1: मौसम का मज़ा ले रहे हैं सारे लोग, आप भी मौसम का मज़ा ले रहे हैं,
0: बिल्कुल बराबर बराबर सर,
1: है ना।
0: बिल्कुल
1: ये कुदरत
0: इसलिए
1: का बड़ा
0: देखो अपना ये भारत ही भारत एक खूबसूरत अपना देश है। इसका जो मौसम है, मौसम के मजे तो सभी लेते हैं, उसके साथ में मैं भी हूँ सर, आप साथ में।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए, मौसम के मज़े लेने के सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम मौसम के साथ में रहें
0: जी जी
1: और
0: बिल्कुल
1: कुछ चीज़ों का ख्याल भी रखें। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम भीग रहे हैं तो हमें कितना भीगना है हमें ये भी मालूम होना चाहिए, और मौसम के
0: जी
1: हिसाब से खान पान हमारा वैसा ही होना चाहिए, है ना।
0: जी सर बिल्कुल
1: चलिए,
0: सर
1: ये तो हो गई
0: बहुत
1: बातें।
0: अच्छा
1: अब आप मुझे ये बताइए कि आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
0: जी सर, फिल्म दीवाना का सुनना चाहूंगा सर। उसमें गाना है, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ये वाला सर।
1: अच्छा, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते
0: हाँ
1: हैं,
0: जी
1: अरे
0: जी
1: वाह
0: जी जी
1: क्या बात
0: सर,
1: है।
0: और ये गाना मुझे लगता है आपको भी बहुत पसंद आएगा सर, और जितने भी सुनने वाले हमारे मध्य प्रदेश आकाशवाणी को,
1: हाँ
0: सभी दोस्तों को ये गाना बहुत पसंद आएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम इस गाने को आपको सुनवाते हैं, सुनिए अपने
0: जी
1: रेडियो
0: जी
1: सेट पर।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: हम भागचंद साहू जी बोल रहे हैं राजेंद्र नगर गंज वासुदा से।
0: अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। और सुनाइए, क्या हाल चाल है?
1: बहुत बढ़िया है सर, आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल शानदार, सदाबहार।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल।
0: और सुनाइए, वासुदा के क्या हाल है?
1: वासुदा में फिलहाल बरसात हो रही है सर, पानी गिर रहा है।
0: हाँ,
1: और भोपाल में गिर रहा है अभी सर।
0: हाँ बिल्कुल गिर रहा है। अच्छा एक बात बताइए कि गंज वासुदा जो है मंडी के लिए बड़ा मशहूर है।
1: हाँ, मंडी बहुत बड़ी है, कंजना के पठार पर है, बहुत बड़ी मंडी है।
0: मेरा ख्याल विदिशा जिले में सबसे बड़ी मंडी वही है
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
0: ना, गंज वासुदा की, ऐसा सुना है मैंने। अब वो कितना सही है कितना गलत वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुना है कि गंज
1: बिल्कुल सर,
0: वासुदा की मंडी बहुत बड़ी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल।
0: तो कौन कौन से अनाज आते हैं वहां पर?
1: वहां पर तो सभी आते हैं अनाज बेचने के लिए सर।
0: अच्छा,
1: हाँ, वो तो सभी क्षेत्र के गांव के लोग आते हैं अनाज बेचने। जैसे
0: हाँ, तो
1: अपने भाई हुआ, मंडी बामोरा हुआ, कुलार हुआ, बरेडुई, ये सभी लोग आते हैं वहाँ गांव क्षेत्र के, अपना गेहूं की उपज लेकर बेचने के लिए।
0: अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो आप भी
1: बिल्कुल
0: क्या
1: सर।
0: किसान हैं?
1: नहीं, हाँ किसान है ना सर, हम किसान भी है, वो पानीपुरी सेंटर का सिलाई भी लगाते हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो
1: बिल्कुल सर, आइए गंज वासुदा में, आपका स्वागत है, हार्दिक
0: अरे
1: स्वागत है,
0: धन्यवाद,
1: आइए
0: बहुत अच्छी
1: आइए।
0: बात कही आपने। जब भी आएंगे तो आप बिल्कुल, आपसे मुलाकात भी होगी। तो अच्छा ये
1: बिल्कुल
0: बताइए
1: सर,
0: कि,
1: पानीपुरी सेंटर पर जरूर आए आप।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा ये बताइए कि कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: गाना सुनना है तुम बिन का है।

0: हेलो
1: जी, कौन बोल रहे हैं?
0: जी, विनोद कुमार रॉक स्टार अजनर महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ सर।
1: विनोद कुमार जी, क्या हाल चाल हैं?
0: जी जी
1: हाल चाल क्या हैं आपके? हाँ
0: बस बढ़िया है सर, बारिश का मजा ले रहे हैं।
1: हाँ वेरी गुड।
0: आप कौन बोल रहे हैं सर?
1: मैं जावेद खान बात कर रहा हूँ।
0: जावेद खान साहब, नमस्कार।
1: हाँ नमस्कार। तो देखिए कि मौसम की बात अभी हम कर रहे हैं और ये कल आप जब प्रोग्राम सुनेंगे तो मौसम फिर
0: जी
1: बदल जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ऐसी हमें उम्मीद।
0: नहीं, अभी तो मौसम फिलहाल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, बराबर एक हफ्ते से ऐसे ही चल रहा है, रिमझिम बारिश हो रही है।
1: हाँ। तो अच्छा है, रिमझिम मौसम का भी मजा लेना चाहिए ना।
0: हाँ, रिमझिम बारिश से अच्छी बारिश होती है, खासकर जमीन के लिए भी, इससे वाटर लेवल भी ऊपर बढ़ता है।
1: बिल्कुल। और यह है कि पक्की सड़कें बन चुकी हैं तो जो खेत हैं वहाँ पर अगर ये रिमझिम जिम पानी गिरता है तो ये नीचे
0: हाँ
1: ज़मीन इसको एब्जॉर्ब करती है और उससे हमारे वाटर लेवलिंग ऊपर आती है। बिल्कुल सही बात है।
0: बिल्कुल।
1: चलिए ये तो हो गई आसपास की बातें, अब आते हैं हम मुद्दे पर कि कौन सा

0: गाना सुनेंगे?
1: सर आज गाना सुनवा दीजिए आप, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला दिला दे उसके, ऐसा कुछ गाना है?
0: हाँ हाँ पानी रे पानी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम ये गाना आपको सुनवा रहे हैं, आप सुनिएगा अपने दोस्तों के साथ में।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी सर जी, नमस्कार सर जी। सर
0: नमस्कार।
1: जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड, उज्जैन, मध्य प्रदेश से सर।
0: क्या बात है, क्या बात है। और सुनाइए, क्या हाल है?
1: बस बिल्कुल सर जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, और आकाशवाणी और रेडियो के साथ में मतलब रहते हैं। मतलब हमारा तो रेडियो एक दीवानापन है, और रेडियो हमारा एक साथी है सर, समझ लो एक परिवार का हिस्सा है सर।
0: अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। देखिए, रेडियो से जो लोग जुड़े होते हैं उनको फिर दूसरी चीज़ अच्छी नहीं लगती। उसकी वजह
1: हाँ जी
0: यह है कि
1: बिल्कुल,
0: रेडियो जब हम सुनते हैं तो आसपास के सारे काम जो भी हम कर रहे होते हैं वो करते रहते हैं,
1: हाँ जी
0: जबकि
1: बिल्कुल,
0: हम अगर सोशल मीडिया या टीवी देखते हैं तो उसके साथ में एक ड्रॉबैक ये है कि सब काम छोड़ के हमें सिर्फ वही काम करना पड़ता है, सिर्फ देखने
1: जी
0: का
1: जी
0: काम।
1: बिल्कुल,
0: तो ये हमारे साथ में ये बड़ा पॉजिटिव चीज़ है कि रेडियो के साथ में कि आप सारे काम करते रहिएगा और रेडियो सुनते रहिएगा।
1: बिल्कुल सर जी, हम तो पुराने दौर से रेडियो सुनते आ रहे हैं, करीब 40 सालों से रेडियो से जुड़े हुए हैं। हमारे पिताजी का दौर था जब पुराना वाल वाले रेडियो सेट हुआ करते थे घर में बड़े, जब
0: हाँ
1: से जुड़े हुए हैं। पिताजी तो अब नहीं रहे, पर पिताजी तो का जो शौक है रेडियो सुनने का, वो धीरे धीरे बचपन से हमें भी चालू हो गया, और जब से
0: हाँ
1: हम भी रेडियो से जुड़े हुए हैं 40 साल से ज्यादा हो गए हैं। फिर प्रसार भारती का ऐप आ गया, तो ऐप के माध्यम से और भी रेडियो श्रोता बहुत दूर दूर के भी अब जुड़ने लग गए हैं, जो ऐप पर अच्छी साफ क्वालिटी में सुनाई देता है सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, आपकी आवाज़ से तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चल रहा कि आप 40 साल से रेडियो सुन रहे हैं।
1: हाँ जी सर जी, मेरी अभी उम्र रनिंग 52 चल रही है,
0: अरे वाह,
1: पर
0: क्या बात
1: कहते हैं
0: है।
1: ना कि आप जैसे जो महोदय रहते हैं, उद्घोषक महोदय, उनके जो बात करने का अंदाज रहता है, बात करने का जो लहजा रहता है,
0: जी
1: उस प्रकार से हम भी थोड़ा थोड़ा सा हमारी आवाज में परिवर्तन हो जाता है। उम्र भले इतनी हो गई, पर आवाज आज भी गुनगुना लेते हैं थोड़ा बहुत
0: अरे वाह,
1: रेडियो के
0: क्या बात है,
1: माध्यम
0: क्या
1: से।
0: बात है। तो आज कौन सा गाना गुनगुनाने का दिल चाह रहा है?
1: ये सर जी, 20 अगस्त को जैसे भारत भर के जितने भी जो रेडियो श्रोता मित्र हैं, 20 अगस्त के दिन रेडियो श्रोता दिवस भी मनाते हैं। ये एक सभी रेडियो दोस्तों की दीवानापन दीवानगी है जो रेडियो के प्रति है, इसलिए यह दिवस मनाया जाता है। इसी के माध्यम से हम जब थोड़ा सा गुनगुनाना भी सीखे हैं, तो वो एक गाना है बहुत पुराना, फिल्म का है, जिसकी फिल्म का नाम है खामोशी। उसमें
0: खामोशी।
1: एक गाना है, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, ऐसा गीत है। और
0: हाँ
1: ये गाना भी रेडियो आकाशवाणी में फिल्मांकन किया गया है इसका।
0: हाँ अच्छा, जी, खामोशी फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: जी जी सर जी
0: तो सुनिए अपने रेडियो सेट पर खामोशी फिल्म का ये बेहतरीन गाना।

0: जी नमस्कार भैया।
1: नमस्कार।
0: मैं दादूबैद कपूरवा ग्राम तिंदवारा जिला बांदा उत्तर प्रदेश से भैया रोशन सिंह बात कर रहा हूँ।
1: रोशन सिंह जी, क्या हाल चाल है?
0: मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा।
1: मैं बात कर रहा हूँ जावेद खान
0: जी। भैया जी बढ़िया है, बस आपको ट्राई कर रहे थे तो कॉल लग गई।
1: अरे वाह वाह, देखिए जब दिल से कोई किसी को याद करता है तो अपने आप तार जुड़ जाते हैं।
0: जी जी जी भैया।
1: हाँ तो अब ये बताइए कि जब दिल से तार जुड़ गए हैं तो दिल की बात अगर करना चाहते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो गाना बता दीजिए।
0: ये जी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, जितनी भी तारीफ करूँ उतनी कम है आपके
1: अरे जरा
0: कार्यक्रम।
1: नवाजी, देखिए आप लोगों से ही तो हम लोग हैं, अगर आप सुनने वाले हैं तो तभी तो हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छे से अच्छा प्रोग्राम बनाए। अब ये बताइए कि कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: फिल्म का नाम रहेगा यकीन।
1: यकीन। हाँ
0: जी जी इसमें एक गीत है सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में, चेहरा तेरा जब जब देखूं प्यार आए तुझ पे।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, और हमारे अगले कॉलर कौन है, उनका फोन आ रहा है। हेलो
1: जी सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं श्री चंद्र निषाद, ग्राम जलालपुर, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, उत्तर प्रदेश से आप हमारे दूसरे कॉलर हैं। अब ये बताइए कि आप दिल की बातें हमसे करेंगे या दिल का गाना सुनना चाहेंगे, दोनों में से क्या करना चाहेंगे? पहले
1: दिल का गाना सुनेंगे जी।
0: तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनेंगे।
1: बंधन तो प्यार का बंधन है, करण अर्जुन।
0: अच्छा हाँ, करण अर्जुन
1: जी सर।
0: तो आप अपने रेडियो सेट पर जरूर सुनिएगा आपका ये प्यारा गाना। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, और जो श्रोता हमारे 15 दिन से पहले हमसे कनेक्ट हुए हैं तो उनसे निवेदन है कि कृपया नए लोगों को मौका दीजिएगा। आपके पसंदीदा गाना आप सुन सकते हैं हमारे प्रोग्राम में फोन इन कार्यक्रम फोन करेगी सुने में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, और अब हमारे अगले श्रोता कौन है हम उनसे बात करते हैं। Hello. फोन करेगी सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: जी धन्यवाद, मैं अरविंद अग्रवाल बोल रहा हूँ।
0: अरविंद जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: श्रीनगर जिला महोबा से।
0: महोबा से, क्या बात है क्या बात है। और सुनाइए क्या हाल चाल है?
1: एकदम बढ़िया है, आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल शानदार। अच्छा ये बताइए कि महोबा में ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा मशहूर है?
1: जी यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ के बड़े लड़कियाँ महोबे वाले आला उदल है।
0: हाँ
1: जी, मेरा गांव है श्रीनगर, यहाँ मूर्ति पूरे देश में जाती है यहाँ से अष्ट धातु की।
0: अरे वाह क्या बात है
1: जी।
0: तो अब ये बताइए कि आपके मन का गीत कौन सा है जो हम आपको फोन करेगी सुने में सुनवा दें?
1: जी अभी रक्षाबंधन आ रहा है, उसी के उपलक्ष्य में सुन लेंगे चंबल की कसम फिल्म का।
0: चंबल की कसम का कौन सा?
1: चंदा रे मेरे भैया से कहना।
0: हाँ गाना तो बहुत ही शानदार है
1: जी, मेरे आंसू आ जाते हैं इस गाने, बहुत फीलिंग जुड़ी है। मेरी बहन नहीं है कोई, भाई बहन नहीं है मेरा कोई भी।

0: कार्यक्रम फोन करेगी सुने में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं भाईजान फूलचंद पाल बोल रहा हूँ, छतरपुर जिले के मनकारी गांव से।
0: अरे वाह, क्या क्या कहना। जैसे कि आपका नाम है ना फूलचंद, तो आपके फोन से हमें फूलों की खुशबू आ गई।
1: क्या भाई साहब, बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
0: हाँ तो और बताइए क्या हाल चाल है?
1: बहुत बढ़िया है सर, हाल चाल बढ़िया है। आइए खजुराहो घूम जाइए आप।
0: हाँ बहुत सालों से नहीं आए, जब भी आएंगे तो बिल्कुल घूमने के लिए आएंगे और आपको याद भी करेंगे।
1: और मैं आपको बता दूं कि जो खजुराहो के मंदिरों में जो कलाकृतियां हैं वो देखने के लायक हैं। देखो आप तो कहेंगे कि हाँ यार क्या कला है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, यही तो हमारा जो आर्ट था, जो बरसों पुराना हमारा कल्चर था, वो हमें प्राचीन मूर्तियों में या इन चीज़ों में हमें दिखाई देता है कि हम कितने समृद्ध थे उस ज़माने में। अच्छा देखिए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और सारे लोग आपको सुन भी रहे हैं, अब ये बताइए मन की बात बता दीजिए कि आप गाना कौन सा सुनेंगे?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल भाईजान, देखिए सामने रक्षाबंधन का त्योहार है, तो जितने श्रोता सुन रहे हैं सभी को बहुत बहुत रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।
0: आपको भी एडवांस में शुभकामनाएं।
1: और ऐसे में एक गीत याद आ रहा है मुझे, फिल्म का नाम है अंधा कानून
0: जी,
1: और गीत की बोले कि मेरी बहना दीवानी है, ये वाला गीत बजाइए आप जो है रक्षाबंधन के ऊपर गीत है।
0: हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा गाना है।
1: बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको डेडिकेट रहेगा, और हमारे प्रेमदास बाबा जी है महोबा से, और मांगीलाल चंदेल जी हैं, और दिनकर सिंह जी चित्रकोट धाम से हैं
0: जी, जी
1: राजू यादव जी हैं, जयपाल यादव जी हैं, और पूनम कानपुर से हैं। जितने श्रोता सुन रहे हैं, माताएं बहनें सुन रही हैं, सभी को डेडिकेट रहेगा।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आज जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित की जा रही है। दो दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। इस दौरान पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण पाठ के बजाय केवल दो पद गायन के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 से कांग्रेस ने तुष्टीकरण के नाम पर वंदे मातरम को दो भागों में विभाजित कर दिया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज टीकमगढ़ में जनविश्वास अभियान के तहत लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री यहां उद्योग संवाद, समाधान ऑनलाइन, सीएम मॉनिटरिंग के प्रकरणों की समीक्षा भी करेंगे। केंद्र सरकार ने चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात को मंजूरी दी है। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को एक और अवसर दिया है। प्रदेश के कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की खाली सीटों पर आज से 31 अगस्त तक अतिरिक्त कॉलेज लेवल काउंसलिंग के जरिए प्रवेश दिए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। और हॉकी महिला विश्व कप में आज भारत का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। भारत ने कल इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में जगह बनाई थी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश लेकर आज हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त सुनीता सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आप तक भेजती हूं मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, दोपहर का वक्त है, दिन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और इस रफ्तार के बीच कुछ पल ऐसे भी होते हैं जब मन ठहरना चाहता है। किसी गीत की धुन पर, किसी भूली बिसरी याद के पास, किसी अपने की आवाज के एहसास में। और आज इन खूबसूरत पलों को आपके नाम करने के लिए हम हाजिर हैं, आपकी पसंद के गीतों के साथ, आपकी यादों के रंगों के साथ और आपके भेजे हुए खतों के साथ। क्योंकि फिल्मी गीत सिर्फ धुन और बोल नहीं होते हैं दोस्तों, कभी वो किसी मुलाकात की कहानी कहते हैं, कभी बिछड़ने का दर्द, तो कभी किसी रिश्ते की मिठास बन जाते हैं और कभी बीते हुए दिनों की खिड़की खोल देते हैं। आपके खत भी तो कुछ ऐसे ही है ना, कागज पर लिखे हुए शब्द जिनके पीछे धड़कता हुआ एक दिल होता है, किसी की फरमाइश, किसी की याद, किसी का संदेश और कभी कभी एक पूरा किस्सा भी होता है। तो आइए आज दोपहर 12 बजे गीतों की इस महफिल में आपके हम खत पढ़ते हैं, आपकी फरमाइशें सुनते हैं और उन फिल्मी नगमों से मुलाकात करते हैं जो शायद आपके दिल की बात हमसे बेहतर जानते हैं। आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश, जहां गीत हमारे हैं लेकिन हर गीत के पीछे छिपी कहानी आपकी है। आइए सिलसिला शुरू करते हैं आपकी पसंद का। पहला गीत घर फिल्म से है, आवाजें किशोर कुमार, लता मंगेशकर की, और इसे लिखा है गुलजार ने और संगीतबद्ध किया है आरडी बर्मन ने। अनुरोध आप सबका है, गयाजीपुर मंडला से वीरेंद्र कुमार पंजाबी और राधेश्याम चावला इसी गीत को पसंद करते हैं। सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। और साहूनगर यवतमाल से ये खत आया हुआ है, लिखने वाले हमारे श्रोता हैं राहुल मनवर, सरला,

विशाल, चेतन, रोशनी, स्वीटी, बेबी प्रियांशी। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं घर फिल्म का ये गीत। उम्मीद की तरफ तेरी उठती हुई नजरें जाने क्या कह के मुझे शर्म से फिर लौट गईं।

आपकी आंखों में कुछ, घर फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है झुक गया आसमान। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। पसंद आप सबकी है। कालका से शुभचंद्र बजाज, चंद्रमोहन, इंद्रमोहन और बिट्टा बजाज। सेक्टर 67 मोहाली पंजाब से टीडी मल्होत्रा, वृतिका मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा। ये खत आया है घंटाघर चौक खंडवा से। लिखने वाले श्रोता हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। और चांडूर बिस्वा तालुका नांदुरा जिला बुलडाणा महाराष्ट्र से इस गीत को पसंद करते हैं। नारायण भाऊ खड़से, रक्षा ताई खड़से, ललिता संजना खड़से, गणेश और कार्तिक खड़से, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। मोहब्बत का तुमसे असर क्या कहूं, नजर मिल गई, दिल धड़कने लगा।

झुक गया आसमान, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। कार्यक्रम का अगला गीत असद भोपाली का लिखा हुआ है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। फिल्म का नाम है रूप तेरा मस्ताना। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, धामणी मनोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण प्रज्वल और अनुत डेरे, और ये खत आया है राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट का। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत। मोहब्बत एक तपिशे ना तमाम होती है, मोहब्बत एक तपिशे ना तमाम होती है, ना सुबह होती है इसकी ना शाम होती है।

दिल की बातें दिल ही जाने, लेकिन भाई आपके दिल की बात तो हम जरूर जानते हैं क्योंकि वो बातें लिखी हुई हैं खत में। जी हाँ, आपकी फरमाइश। कुछ खत इस वक्त मेरे हाथ में हैं, आइए आपको बताऊं कि किन श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत है। ये खत है छत्तीसगढ़ से आया हुआ, दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लचनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू का, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार, और ये चिट्ठी आई है अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा, सालिया, शोएब खान, सायमा खान, मुश्तबा, आफिया खान, रऊफ भाई और शहीद भाई की ओर से। आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत। संगीत आर डी बर्मन का है और फिल्म का नाम है प्यार का मौसम। मोहब्बत की दुनिया में सब कुछ हसीं है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है।

तुम बिन जाऊं कहां, किशोर कुमार की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे। कार्यक्रम का अगला जो गीत है वो हमारे इन दोस्तों की फरमाइश पर है। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गम्हाणकर राही, सरिता गम्हाणकर और प्रिंस एकांश गम्हाणकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गम्हाणकर, प्रणीता गम्हाणकर, अर्जुन गम्हाणकर टुक टुक और आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गम्हाणकर, सुमित गम्हाणकर, कुमारी ध्वनि गम्हाणकर परी। अगला खत आया हुआ है सनावद से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री का। राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव, इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या, करिश्मा कामले और छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। एक और चिट्ठी है गोला बाजार बक्सर से आई हुई, हमारे श्रोताओं के नाम हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित, संगीता आर्य। आप सबकी फरमाइश पर अभिमान फिल्म का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। इसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत तैयार किया है एस डी बर्मन ने और आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की हैं। इश्क को चैन नहीं आफत किए बगैर, तुम और मान जाओ शरारत किए बगैर।

0: दो दोस्तों दोपहर के इन खूबसूरत पलों में कभी कोई गीत आपके पास बैठा, किसी खत ने पुरानी यादों का दरवाज़ा खोला और कभी किसी धुन ने मन की अनकही सी बात कह दी। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब इस कार्यक्रम से इजाज़त दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार। आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में आज सुनिए धारावाहिक जमुनिया की तीसरी कड़ी।

0: भैया।
1: पिछले अंकों में आपने सुना है जमुनिया और उसका पति पट्टे की जमीन पाकर खुश हैं। फिर भी ऊबड़ खाबड़ खरपतवार वाली जमीन में पत्थर हैं, जिसे दोनों मिलकर साफ करते हैं। उधर रतन का भाई करण दीवान से मिलकर अपने भाई रतन को 10,000 का कर्ज दिलाता है। दीवान रतन का खेत अपने ट्रैक्टर से मुफ्त में जुतवा देता है। रतन और जमुनिया प्रसन्न हैं। अब आगे
2: चलो। ये अच्छा हुआ खेत की जुताई हो गई, नहीं तो हाथ से करते तो बड़ी मेहनत लगती।
3: हाँ, और टाइम भी तो बहुत लगता।
2: अरे ये अचानक क्या सोचने लगे? हाँ, जब देखो कुछ ना कुछ सोचने लगते हो।
3: पता नहीं क्यों ये सब अच्छा अच्छा हो रहा तो डर लगता है। अब बुरे की तो आदत हो गई। अच्छा जमुनिया, तुम्हें अपने दिल की बात बताता हूँ।
2: क्या?
3: वो उस दिन जब पट्टे की जमीन लेते हुए अंगूठा लगा रहा था।
2: हाँ?
3: तो पहली बार अंगूठा लगाते हुए अच्छा लगा। पर यही अंगूठा जब दीवान लगवा रहा था तो ना जाने क्यों अच्छा नहीं लग रहा था।
2: चलो कुछ तो अच्छा लगा ना, अब सो जाओ।
3: ठीक है। अरे हाँ, कल सवेरे जल्दी उठना भी तो है। अब खेत की जुताई तो हो गई, सिंचाई के लिए नाली बनाना है।
2: ठीक है ठीक, अब सो जाओ।
3: अच्छा तुम भी सो जाओ जमुनिया।
4: अरे कोई है?
5: जी मालिक।
4: कहां मर जाते हैं सारे के सारे, इतने आदमी रखे हैं पर जब देखो कम बखत जाने कहां गायब हो जाते हैं।
5: आया मालिक, आया मालिक, गायों को पानी पिला रहा था।
4: गायों को पानी पिला लिया?
5: जी मालिक, पिला दिया।
4: अच्छा ये बताओ
5: मालिक,
4: ये तुम लोग कर क्या रहे हो?
5: मालिक हम
4: पट्टा बटे 15 दिन हो गए हैं, सब लोग खेतों में लगे हैं और कर्ज लेने कोई नहीं आया। ले देकर एक आदमी आया रतन, उसे भी लेकर आया था उसका भाई करण। अरे तुम लोगों से तो करण ही अच्छा है।
5: मालिक कह तो रखा है कईयों से, अब फिर जाता हूं। अरे मालिक ये क्या, करण आ रहा है। देखिए आओ करण आओ, अभी मालिक तुम्हें ही याद कर रहे थे।
6: कैसे मालिक, कोई गलती हो गई?
4: अरे नहीं भाई नहीं, गलती नहीं। मैं तो कह रहा था करण, कर्ज लेने कोई नहीं आया तेरे भाई को छोड़कर।
6: अरे आएंगे मालिक आएंगे, जाएंगे कहाँ। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ मालिक।
4: अच्छा बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हो?
6: मालिक मुझे कुछ कर्ज नहीं मिल सकता है।
4: कर्ज और तुझे? तेरी हरकतें जिम्मेदार आदमी की तो है नहीं, इसलिए तुझे तो कर्ज मिलने से रहा, इसलिए बार बार पूछकर मेरा दिमाग खराब मत किया कर।
6: माफी मालिक माफी, मैं तो ऐ कहना चाहता था कि रतन भैया को तो कर्जा 10,000 का दिया था, उसे ही 20,000 का लिख दिया। अभी तो कागज सादा ही होगा, हम दोनों भाई मिलकर मेहनत करेंगे और कर्जा चुका देंगे।
4: अच्छा कर्ज के कागज पर लिख दूं 20,000 और तुझे दे दूं 10,000, और पैसा लेकर तूने अपने भाई को बताया ही नहीं और ऐश करके उड़ा दिए तो?
6: ना मालिक ऐसा नहीं होगा।
4: ऐसा नहीं होगा। अच्छा अब दीवान को तो बनाओ मत, हम उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। पर है एक उपाय है।
6: क्या मालिक, क्या उपाय है?
4: तेरा दिमाग बड़ा शातिर है बच्चे। तो सुन वो उपाय।
6: जी।
4: मैं तुझे 5,000 दूंगा, पर गवाह की जगह तुझे दस्तखत करने पड़ेंगे।
6: मुझे भी तो दस्तखत करना नहीं आता मालिक।
4: पर चतुर तो बहुत है तू। कर्ज के कागज कोरे हैं ये जरूर देख लिया तूने, बदमाश। चल अंगूठा लगा देना, अब कर्ज की रकम होगी 25,000। ऐसे मुंह बाएं क्या देख रहा है? अगर चाहिए तो हां बोल, और जरूरत पड़ी तो तुझे गवाही भी देनी पड़ेगी कि करण ने तेरे सामने 25,000 रुपए उधार लिए थे।
6: मालिक 10 दीजिए ना, गवाही तो मैं दे ही दूंगा।
4: हट, दीवान को उल्लू समय रखा है क्या? चलो उठ यहां से, 10 की रट लगा के बैठ गया। सुन, 5 चाहिए तो बोल।
6: ठीक है मालिक।
4: शाबाश, ये हुई ना अकलमंदी वाली बात। अरे सुनो।
0: जी मालिक।
4: ये रतन के कर्ज वाले कागज पर इसका भी अंगूठा ले लो।
0: जी मालिक।
5: हाँ मालिक।
0: ए करण, इधर आ।
6: जी भैया।
4: और सुन, अंगूठा लगाकर मेरे पास वापस आ जाना।
6: जी।
4: चलत मुसाफिर मोलियो रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोलियो रे।
6: अंगूठा लगा दिया मालिक।
4: बड़ा अच्छा किया करण। अब घर जाओ, यहाँ क्यों खड़े हो? सोनुआ के पिंजरे में बंद भइल हाय राम, चिड़ै के जियरा उदाम।
6: मालिक मजाक कर रहे हैं।
4: चुप, दीवान तुझसे मजाक करेंगे?
6: ठीक है मालिक।
4: क्या ठीक है? पैसे चाहिए तुझे?
6: जी।
4: पैसे लेकर जाएगा तू?
6: जी।
4: चल ले, तू भी क्या याद रखेगा बच्चू, ये ले पकड़।
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मालिक ये तो 1,000 है।
4: हाँ 1,000। देख भाई, पैसे तो तुझे किश्तों में ही मिलेंगे। हाँ, एक बार में दे दिया तो उड़ा देगा, और फिर तेरी बात भी तो देखनी होगी कि बात बात में तूने नशे में राज जाहिर कर दिया, तो इसलिए अभी ये रख, धीरे धीरे बाकी रकम ले लेना।
6: नहीं मालिक, ये राज तो मैं जाहिर करने वाला नहीं, चाहे सभी रुपया अभी दे दो या किस्तों में, चलता हूं मालिक।
4: शाबाश, चल चल इधर आ, इधर आ।
6: जी।
4: ये ले 50 और रख, और ये हिसाब किताब में नहीं है। बच्चों को मिठाई खिला देना।
6: जी मालिक।
4: चलत मुसाफिर मोलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, ए चलत मुसाफिर।
3: ये ससुर माटी है कि पाथर, नाली कैसे बनेगी, अरे खेत कैसे सिंचाएगा? हे भगवान, आज रात झमाझम पानी बरसा दो भगवान। अरे रतन की भी कुछ सुन लो मालिक।
2: सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। वो तुम्हारे खेत पर बादल लेकर आएंगे है ना, अब पलेवा लगाकर चले जाएंगे।
3: अरे ले भाई आ गया। अच्छा एक बात तो बता।
2: हाँ।
3: मैं यहाँ खेत में काम करता हूँ और तू वहां घर में काम करती है, पर जमुनिया तुझे पता कैसे चलता है कि मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए।
2: हम औरत हैं, आपन आदमी की जरूरत समझ जाती हैं। समझ गए?
3: हाँ, पर बताओ अब भगवान से भी ना मांगे तो कहाँ जाएं?
2: अरे भाई मांगो और भगवान से ही मांगो, पर सबके लिए मांगो। खाली आपन दुखड़ा रोने से भगवान थोड़ी ही सुनने वाले।
3: चल भाई तू ही मांग, सबके लिए मांग।
2: ये अच्छी कही। और ये टंटनाती धूप देख रहे हो? ऐसे में तो एक बूंद की भी आस नहीं। तुम झमाझम पानी बरसने की बात कर रहे हो।
3: अरे आस वास छोड़ो, भगवान है तो ऐसे में ही बरस कर दिखा देंगे। हाँ
2: हाँ, इनकी सुन लेना भगवान। अभी तो पानी पियो और नाली बनाने में लगो, कहो तो मैं भी लग जाती हूँ।
3: अरे तू तो रहने दे, अब तू घर जा, घर का काम देख, जरूरी हुआ तो मैं तुझे बुला लूंगा।
2: अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, मैं जा

0: आज अंग्रेजी तो ला, देसी तो रोज ही पीते हैं।
1: वो बाबूजी को लगा, बाबूजी को लगा।
2: क्या बात है करण भैया, कहीं माल वाल हाथ लग गया क्या?
0: अरे काय का माल वाल, उधार मांग के लिए बहुत दिन से मन कर रहा था। ये उधार ससुर हमारे ऊपर ही चढ़ा बैठा है, चाय पीकर उधार करे या फिर उधार लेकर पिए।
2: देख भाई करण, तेरा पुराना उधार तो मिल गया।
0: ठीक है,
2: ये दीवान तेरे ऊपर बड़ा मेहरबान है, क्या बात है? है? तेरी सारी उधारी चुका दी उसने।
0: अरे ठीक है चल ला, आज इसी खुशी में अंग्रेजी तो ला जरा।
2: लाते हैं थोड़ा सा धीरज रख भाई, इतनी जल्दी क्यों मचा रहा है?
0: अरे सुनो, कुछ चना चबेना भी।
2: ए करण, लगता है बारिश होगी, अंदर आजा भाई। यही तो ऊपर वाले की ताकत है भैया करण।
0: मान गए।
3: अरे कितनी जोर से गरज रहे हैं ये बादल, इन बादलों को भी अभी बरसना था, अभी चारों ओर लोग नालियां बना रहे थे। अरे हमारा ट्यूबवेल चलता कुछ कमाई होती, पहली सिंचाई तो ऊपर वाले ने ही कर दी। वाह भगवान वाह, आप भी कभी कभी भांजी मार ही देते हो।
4: देखा जमुनिया, तुम्हारी कथनी भगवान मान गए, बिना बादल ही बरस गए।
5: हाँ, सबके भले में ही आपन भला। अब नाली बनाने के लिए पत्थर ही तोड़ना पड़ेगा, है ना?
4: हाँ, अरे अगर थोड़ा और बरस गए तो कल रोपनी होगी, धान की रोपनी।
5: जब इतना बरसे हैं तो फिर बरसेंगे, मेरा मन कहता है।
4: लो भाई चलो तैयारी करो, आज ही धान रोपेंगे।
5: चलो जी, आज ही रोपते हैं धान।
4: हाँ।
6: ऐसा वाला।

0: अरे जमुनिया, अरे वो वाली कजरी सुनाओ ना।
1: कौन सी जी?
0: अरे वो क्या तो है, हाँ, अपने कायल रंगून कचौड़ी गली सुन कायल बलम।
1: राई दे, याद नहीं है। और फिर जब आप रंगून जाएंगे तभी ना कचौड़ी गली सुन होगी, अभी तो सब कुछ आबाद है।
2: कमबख्तों, हाथ पे हाथ धर के बैठे हो तुम लोग। अरे देख नहीं रहे, आधे पट्टेदारों के धान रोपे जा चुके हैं।
3: मालिक।
2: अरे मालिक क्या कर रहे हो, कर्ज लेने आए कुल 5 और तुम लोग, अरे तुम लोग आखिर कब तक बैठे रोटियां तोड़ोगे?
3: सभी सभी आएंगे देर सवेर मालिक।
4: अभी एक बोछार क्या आई है कि सब चहक रहे हैं।
2: अरे यही तो, ये चहक नहीं रहे हैं, अरे चहक नहीं रहे हैं, हमको जला रहे हैं, कमबख्त जला रहे हैं हमको।
5: अरे किसकी हिम्मत है जो आपको जलावेगा मालिक?
2: अरे उस जमुनिया जला रही थी और कौन। अरे सुना आज बड़ी कजरी वजरी गाई गई है। अरे उस जमुनिया बड़ा चहक चहक के गाना गा रही थी। अरे अरे जाके कह देना उससे, हाँ अरे कल हमारे खेत में भी धान रोपा जाएगा और सब लोगों को लेकर आना। हाँ
5: सबको ले आएंगे मालिक, आपने कहा वो बस काम हो गया समझिए। मालिक थोड़े पैसे चाहिए थे।
2: पैसे? कैसे पैसे?
5: वो जो बाकी हैं 4,000 रुपए।
2: बाकी 4,000? कमबख्त हमको कर्जा दिए हो का है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मालिक की?
5: माफी सरकार, हमारी मतलब नहीं था, आप ही बोले थे किस्तों में देंगे।
2: तो वो किस्त हमारी मर्जी से होगी, समझे? जब हम चाहेंगे तब तुम हमसे मांग नहीं सकत।
5: जी
2: हाँ। ये कोई सपेरा लग रहा है। ए ए इधर आओ, क्या कर रहे हो इधर तुम?
6: हुजूर साहब ना चाहते हैं हजूर, कुछ मिल जाए तो हम दोनों खा लेंगे।
2: नाग पंचमी को तो बहुत दिन है अभी भैया, अब इसे लगे घूमने तुम?
6: हुजूर हम तो साल भर यही धंधा करते हैं।
2: ठीक है ठीक है। बड़ा सुंदर सांप है ये तो, पर अंदर रखो इसे अभी।
6: जी।
2: अरे कोई है?
3: जी मालिक।
2: इसे लाकर कुछ अनाज दे दो।
3: आया मालिक।
2: जाओ जाओ।
7: सुनो जी।
8: हाँ।
7: आज बहुत अच्छा लग रहा है।
8: वो क्यों है, कोई खास बात है क्या? आज
7: आज पहली बार आपन खेत में आपन धान रोपे हैं।
8: हाँ
7: पहली बार। अच्छा तो तुम्हें भी लग रहा होगा ना?
8: बहुत अच्छा लग रहा है आज तो।
5: हाँ हाँ तुम लोगों को तो अच्छा लगेगा ही, मालिक मालकिन जो हो गए हो खेत के, इस घर में तो मेरी कोई कदर ही नहीं है।
8: करण क्या बक रहा है? अरे हम कमा कमा कर हाड़ तोड़ते हैं तब तुम्हारे मुंह में निवाला जाता है।
5: बस यही, तुम कमा रहे हो और मैं खा रहा हूं, किसी काम धाम का तो हूं नहीं, तो भैया हमें अलग क्यों नहीं कर देते हो?
8: क्या अंटशंट बोल रहा है आज तू?
5: अरे सारी दुनिया में मेरी थू थू हो रही है, अब मैं भी कमाऊंगा तब ही खाऊंगा।
8: अरे ये अलग होने की क्या बात है, हमारे पास क्या है जो बांटेगा? अरे हमारे साथ रहना तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो रहो अलग, कौन रोकता है?
5: तो फिर आधा खेत मेरा होगा, उसमें जो पैदा होगा उसका आधा, बस अगली फसल से मैं अलग जोतूंगा बोऊंगा।
8: लगता है तुम्हें कोई बहका रहा है, नहीं तो पी कर भी तू कभी ऐसी बात नहीं करता था।
5: अरे हमें कोई नहीं बहका सकता, इतना तो हम भी समझते हैं। अरे मीठी छुरी हो तुम, मीठी छुरी।
1: देख रहे हो इसकी जुबान,
7: हमारा सुख इसे देखा नहीं जा रहा है।
5: अरे तुम तो चुप ही रहो, दीवान से 10,000 दिलवाया तब तो बड़ा अच्छा लगा, ये नहीं कि 1,500 मेरे हाथ में धर देते। मेरे भी कुछ अरमान है, पूरा कर लेता मैं भी।
8: हाँ तो तुम्हारे पेट में वो पैसे ऐंठ रहे हैं। हाँ अरे समझता क्यों नहीं कि वो कर्ज है, कर्ज। तू तो पूरा ही ले ले, बस लौटाने की जिम्मेदारी तेरी, ठीक है?
5: अरे चलो ठीक है, मैं लौटा दूंगा।
7: ऐसा तो मैं हरगिज होने नहीं दूंगी।
5: वो तो सही है, अरे मैं सब समझता हूँ, तुम नहीं होने दोगी। हाँ
8: जमुनिया तुम हम भाइयों के बीच में मत पड़ो।
7: क्यों ना पड़ू, दीवान ने अंगूठा तुम्हारा लिया है, पैसे वो तुमसे वसूल करेगा, ये तो बस उड़ाना आता है।
5: अरे रहने दो भैया, रहने दो, बस आधा हिस्सा हमें दे दो, हमारा जो मन करेगा वो हम करेंगे। अरे तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाएंगे हम। हाँ
8: देख भैया करण, बहुत रात हो गई है, कुछ खा पी कर सो जाओ, जो बात है वो कल करेंगे, ठीक है?
5: अरे बात तो यही रहेगी, चाहे आज हो या कल, छोड़ूंगा नहीं भैया तुम्हें।
7: ठीक है देवर जी, हम लोग थके हैं तो थोड़ा आराम करने दो।
5: अरे कर लो आराम, फिर मैं ही तुम लोगों का जीना हराम करूंगा।

0: की बैठक आयोजित की जा रही है। दो दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। बैठक के दौरान पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण पाठ के बजाय केवल दो लोक गायन के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने दावा किया है कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टीकरण के नाम पर वंदे मातरम को दो भागों में विभाजित कर दिया था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज टीकमगढ़ में जन विश्वास अभियान के तहत लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री यहां उद्योग संवाद समाधान ऑनलाइन सीएम मॉनिटरिंग के प्रकरणों की समीक्षा भी करेंगे। केंद्र सरकार ने चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात को मंजूरी दी है। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को एक और अवसर दिया गया है। प्रदेश के कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की खाली सीटों पर आज से 31 अगस्त तक अतिरिक्त कॉलेज लेवल काउंसलिंग होगी। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उधमपुर के रास्ते जम्मू तवी और श्रीनगर के बीच चलेगी। और हॉकी महिला विश्व कप में आज भारत का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। भारत ने इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में जगह बनाई। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
2: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए महिला सभा, ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर का योगदान है।

जीवन में कठिनाइयां हमें नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि हमारी छिपी हुई क्षमता का एहसास कराने के लिए आती हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के इसी सुविचार के साथ महिला सभा के सभी श्रोताओं को प्रतिभा चतुर्वेदी का नमस्कार। बहनों, आज का युग डिजिटल युग हो गया है, यह हम कह सकते हैं कि हम सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में डिजिटल पर निर्भर हो गए हैं। बहनों, छोटे बड़े सभी कामों के लिए सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने लगे हैं। इंसानों द्वारा तैयार की गई तकनीक ने जहां हर कदम पर नए नए विकल्प तैयार किए, तो वहीं इंसान को शारीरिक और मानसिक रूप से आलसी बनाने का काम भी किया। हर सिक्के के दो पहलू हैं, अच्छे भी और बुरे भी। फिर भी सोशल मीडिया आज के समय की जरूरत है। सोशल मीडिया का उपयोग करते समय सावधानी रखना जरूरी है। बहनों, सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग करने के लिए मजबूत और अलग पासवर्ड बनाएं और अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट सेटिंग्स पर सेट करें। बहनों, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और अपनी निजी जानकारी और स्थानीय जगह की जानकारी साझा ना करें। सोशल मीडिया पर जुड़े संदिग्ध लोगों को ब्लॉक करें व रिपोर्ट करें। बहनों, सोशल मीडिया अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए हर अकाउंट के लिए अलग अलग और कठिन पासवर्ड का उपयोग करें। बहनों, अपनी पोस्ट और व्यक्तिगत जानकारी को केवल दोस्तों तक सीमित रखें। बहनों, ऑनलाइन सावधानियां रखना भी जरूरी है। यदि व्यक्तिगत जानकारी जैसे अपनी जन्मतिथि, अपना फोन नंबर और घर का पता सार्वजनिक ना करें, किसी भी अनजान लुभावने और संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें, नहीं तो आप जाल में फंस सकते हैं। अपनी लाइव लोकेशन या छुट्टियों की योजना ऑनलाइन पोस्ट करने से बचें। बहनों, साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए आप उन्हीं लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करें जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हों। बहनों, परेशान करने वाले अनजान लोगों या फर्जी खातों को तुरंत ब्लॉक और रिपोर्ट करें। बहनों, इंटरनेट से कोई भी चीज पूरी तरह डिलीट नहीं होती, इसलिए हमेशा सोच समझ कर ही कुछ भी साझा करें। ऑनलाइन धोखाधड़ी या स्कैम कई तरह से होता है, जैसे फिशिंग स्कैम। इसमें धोखेबाज या स्कैमर बैंक या जानी मानी फर्जी

टिप्पणी बनाकर संदेश भेजते हैं और आपकी व्यक्तिगत जानकारी चुरा लेते हैं। स्कैमर फर्जी प्रोफाइल के माध्यम से असली लोगों के नाम पर फर्जी आईडी बनाकर पैसों की मांग करते हैं। बहनों, सोशल मीडिया पर भारी मुनाफे या फर्जी नौकरियों का झांसा देकर ठगी की जाती है। ओटीपी या पासवर्ड किसी के साथ साझा ना करें। बहनों, ये तो अभी आपसे चर्चा की सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग और ऑनलाइन धोखाधड़ी इस विषय पर। और बहनों, अब रुक करते हैं गीत संगीत की ओर। तो चलिए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर में मेरा गांव मेरा देश फिल्म से ये गीत। आनंद बख्शी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

इस प्यारे से गीत के बाद आपसे एक और चर्चा कर लेते हैं। सैर कर दुनिया की गालिब जिंदगानी फिर कहाँ, सैर कर दुनिया की गालिब जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। बहनों, अधिकांशतः हम सभी को अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ घूमने जाना अच्छा लगता है, क्योंकि हम अपनों के साथ स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को सोलो ट्रिप या अकेले घूमना भी पसंद होता है, और अकेले यात्रा करना रोमांचक तो होता ही है, लेकिन अकेले यात्रा करते समय सतर्कता रखना भी जरूरी होता है। यदि आप सोलो ट्रिप पर जा ही रहे हैं तो अपनी लाइव लोकेशन परिवार के साथ शेयर अवश्य करें। अपने जरूरी दस्तावेज या कागज जैसे अपने आईडी कार्ड, टिकट और पासपोर्ट डिजिटल रूप से मोबाइल में सुरक्षित रखें। बहनों, यात्रा के दौरान अनजान जगह, अनजान लोगों पर तुरंत भरोसा ना करें, और अपनी सूझबूझ और अपने परिवार से विचार विमर्श करते रहें। अकेले यात्रा के दौरान रात के समय अनजान या सुनसान जगहों पर अकेले जाने से बचें, और

0: हमेशा भीड़ भाड़ और रोशनी वाले रास्ते ही चुनें। बहनों, अनजान जगह पर आप अपनी पहचान छुपाएं, अपनी निजी जानकारी या अकेले होने की बात किसी को ना बताएं। सोलो ट्रिप के दौरान जरूरी एप्स अपने मोबाइल में डाउनलोड अवश्य करें, जैसे गूगल मैप रास्तों की जानकारी और ऑफलाइन मैप डाउनलोड करने के काम आता है। तो वहीं अनजान शहरों में सुरक्षित रजिस्टर और ट्रैक होने वाली कैब या टैक्सी बुक करें। बहनों, किसी इलाके की सुरक्षा का स्कोर जांचने और इमरजेंसी मदद के लिए सेफ्टी पिन ऐप जरूर डाउनलोड करें। स्थानीय भाषाओं को समझने और बातचीत आसान बनाने के लिए गूगल ट्रांसलेटर जरूर डाउनलोड करके रखें। बहनों, सोलो ट्रिप पर जाते समय यदि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगी तो ये यात्रा आपके लिए सुखद, सुरक्षित और यादगार बन जाएगी। और बहनों, एक किताब पढ़ने से जितना हम सीखते हैं उसका हजार गुना हम यात्रा करने से सीखते हैं। कहते हैं, रास्ते कहाँ खत्म होते हैं, जिंदगी के सफर में मंजिल भी वही है जहाँ ख्वाहिशें थम जाएं। तो बहनों, ये तो हमने आपसे चर्चा की अकेले यात्रा के दौरान सुरक्षित टिप्स और जरूरी एप्स इस विषय पर। और अब रुक करते हैं साहित्य की ओर। साहित्य की एक विधा है कहानी, और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सत्य घटना पर आधारित कहानी एक अनूठी प्रेम दास्ता ढोला मारू, और कहानीकार हैं पीयूषा सिंह।
1: कहते हैं हर राज्य अपनी संस्कृति, वहाँ के रहन सहन, खान पान और उस राज्य का लोक संगीत भी उस जगह की खास विशेषताओं के लिए जाना जाता है। आज एक ऐसे ही राज्य के लोक संगीत से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। केसरिया बालम, पधारो मारे देश, ये बोल से आप समझ ही गए होंगे आज हम आपको इस लोकगीत के बनने के पीछे की जानकारी देने वाले हैं। मारू के दोहों पर बना केसरिया बालम, पधारो मारे देश गाना जिलाईबाई ने महाराजा गंगा सिंह के दरबार में पहली बार गाया था। सिर्फ 10 साल की छोटी सी जिलाईबाई ने इस गाने को मांड शैली में इतनी खूबसूरती से गाया कि जिसने सुना वह सुनता ही रह गया। तब से ही यह गीत लोकप्रिय हो गया। जगह जगह पर जिलाईबाई को ये गीत गाने के लिए बुलाया जाने लगा। जब उन्होंने गाना पहली बार ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी पर गाया तो दुनिया के लिए ये गीत राजस्थान की रंगीली संस्कृति का चेहरा बन गया। इस गीत के साथ ही डोला मारू की प्रेम कहानी भी दुनिया के कोने कोने में पहुंची। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये गीत सबसे पहले मारू ने लिखा था अपने ढोला को अपने पास बुलाने के लिए। ये गीत ढोला मारू के प्रेम की कहानी को बयां करता है। वही ढोला मारू जिनके चित्र राजस्थान की खूबसूरत हवेलियों की दीवारों पर आपको मिल जाएंगे। रेगिस्तान के सुरों और चित्रकारी में ढोला मारू के प्यार की कहानी हमें आज भी देखने को मिलती है, जिसमें ऊंट पर बैठकर ढोला अपनी मारू को महलों की तरफ लेकर जा रहा है। कि संवत 978 में अजमेर जिले के बाघीरा गांव में ढोला और मारू की शादी हुई। ढोला और मारू के दोहों में तो मारू का इंतजार और दर्द झलकता है, तो सवाल ये आता है कि शादी तो हो गई थी तो मारू के दर्द के पीछे की आखिर वजह क्या थी। ये जानने के लिए आपको सुननी होगी ढोला मारू की दिलचस्प प्रेम कहानी, और ये सुनने के लिए हमें चलना होगा सदियों पीछे। ढोला मारू के प्यार की कहानी शुरू होती है 11वीं शताब्दी से, जब पश्चिमी राजस्थान का महत्वपूर्ण शहर बीकानेर जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। वो जांगल प्रदेश जहाँ हर तीसरे साल अकाल और हर 8वें साल में भयानक अकाल पड़ता था। जांगल के सूखे से परेशान होकर लोग अक्सर मालवा चले जाया करते थे, और जब बारिश होती तो जंगल में अपने ठिकानों पर लौट आते थे। ऐसे ही एक अकाल के दौरान जंगल प्रदेश के पिंगल ठिकाने के राजा पिंगल अपने परिवार और पशुओं को लेकर मालवा की तरफ रवाना हुए। वे अपने परम मित्र राजा नल के पास पहुंचे। राजा नल मालवा के नरवरगढ़ राज्य पर राज किया करते थे। उन्होंने अपने दोस्त की खूब मान मनोहार की। दोनों ने काफी लंबा समय एक साथ बिताया। मजे मजे में दिन कब गुजर गए पता ही नहीं चला। दोनों राजा एक दिन बातचीत में व्यस्त थे, तभी राजा पिंगल के पास संदेशा आता है जिसमें लिखा गया था कि बरसात हो गई है और अब आपके राज्य के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ये संदेशा पाकर राजा पिंगल ने राजा नल से विदा ही लेनी चाही, लेकिन राजा नल ये नहीं चाहते थे कि उनका दोस्त उन्हें अपने राज्य में जाकर भूल जाए। इसीलिए अपनी पक्की यारी को रिश्तेदारी में बदलने की वे तैयारी करते हैं, और अपने 3 साल के बेटे सालय कुमार की शादी राजा पिंगल की 1.5 साल की बेटी मरवणी से तय कर देते हैं। सालय कुमार के प्यार का नाम ढोला था और मरवणी को सब मारू कहकर बुलाते थे। यहीं से दोनों का रिश्ता जुड़ता है। ढोला मारू के विवाह को लेकर राजस्थान में एक दोहा भी कहा जाता है। दोहे में बताया गया है कि ढोला मारू की शादी में उस वक्त 900 मण मिर्ची खर्च

हुई थी और अनाज का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। कहते हैं दोनों के विवाह का भोज कई दिनों तक चला था। राजा नल और पिंगल ने अपने बच्चों का विवाह काफी धूमधाम से किया, लेकिन ये एक बाल विवाह था, इसलिए दुल्हन अपने ससुराल नहीं गई, बल्कि अपने पिता के साथ पिंगल फिर से लौट आई। मारू को बचपन से ही बता दिया गया था कि जब वो जवा होगी तो उसका पति उसे लेने जरूर आएगा। मारू अपने ढोला का इंतजार कर रही थी, लेकिन समय ने करवट ली। ढोला के पिता राजा नल भगवान को प्यारे हो गए। अब ढोला जवान हुआ और शादी के बारे में सब कुछ भूल गया। वह एक प्रतापी राजा बन गया और उसने मालवा के दूसरे राज्य की राजकुमारी मालवणी से विवाह कर लिया। विवाह के बाद ढोला अपने राजकाज में व्यस्त हो गया। ढोला और मालवणी दोनों खुशी खुशी रह रहे थे, लेकिन इस बात से बेखबर मारू अब भी ढोला का इंतजार कर रही थी। पुराने समय में ये रीत रही है कि एक बार विवाह होने के बाद उस विवाह को ही निभाया जाता है। चाहे जो हो, बेटे के जवान होते ही राजा पिंगल ने ढोला को संदेश भेजा कि वो मारू को ले जाए, लेकिन जब दूत संदेश लेकर नरवरगढ़ पहुंचा तो ढोला राज्य में नहीं था और ये संदेश रानी मालवणी के हाथ लग गया। संदेश पढ़ते ही उसे ढोला की पहली शादी के बारे में सब कुछ पता चल गया। उसने एक दूत भेजकर मारू की खूबसूरती का पता लगवाया। जब दूत पिंगल पहुंचा तो मारू की खूबसूरती को देखकर वह दंग रह गया। जब वह वापस नरवरगढ़ आया तो रानी ने उससे पूछा कि मारू कैसी दिखती है। जवाब में दूत ने कहा, गति गंगा मति सरस्वती सीता सील सुभाई महिला सरहर मारुई अवर नदूजी काई। कहने का मतलब है कि मरवणी की गति में गंगा, बुद्धि में सरस्वती और स्वभाव में सीता जैसी विनम्र है वो। दुनिया की कोई दूसरी महिला गुणों और खूबसूरती में उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। दूत की ये बातें सुनकर मालवणी घबरा जाती है। उसने अपने सैनिकों को ये आदेश दिया कि राजा पिंगल का भेजा हुआ कोई भी संदेश ढोला के हाथ नहीं लगना चाहिए। अब राजा पिंगल बार बार दूत भेजते और मालवणी के सैनिक उन दूतों को रास्तों में ही मार डालते। इधर अपने ढोला के इंतजार में मारू ने खाना पीना तक बंद कर दिया था और वह दिनों दिन कमजोर होती गई। उसके चेहरे की चमक ही खो गई। अपनी बेटी की इस हालत को देखकर राजा पिंगल ने एक दूसरा रास्ता अपनाया। राजा पिंगल ने एक चतुर ढोली को नरवरगढ़ भेजने के लिए तैयार किया। ढोली ने खुद मारू से मिलकर ये वादा किया कि या तो वह मारू का संदेश ढोला तक पहुंचाएगा, नहीं तो कभी अपनी शक्ल भी उसे नहीं दिखाएगा। मारू ने ढोली को दोहे लिखकर दिए और कहा कि ढोला को ये दोहे सुना देना ताकि ढोला को अपनी पहली शादी के बारे में सब कुछ याद आ जाए और वो मारू को लेने पिंगल आए। मारू के दोहों में लिखा था, अगर सावन से पहले ढोला नहीं आया तो वो अपनी जान दे देगी। ढोली मारू का संदेश लेकर नरवरगढ़ के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसने दूत नहीं बल्कि भिखारी का भेष बनाया। रास्ते में रानी मालवणी के सैनिकों ने उसे रोका, लेकिन भिखारी समझ कर छोड़ दिया। इस तरह ढोली सैनिकों को चकमा देकर ढोला के महल तक जा पहुंचा। महल के बाहर जाकर ढोली ने मारू के दोहों को मल्हार राग में गाना शुरू कर दिया। ढोली की इस मधुर आवाज को सुनकर ढोला ने उसे महल में बुलाया और उसे यहाँ आने का कारण पूछा, तो ढोली ने गाते हुए साफ शब्दों में राजकुमारी मारू का संदेश ढोला को सुनाया और बताया कि कैसे ऊर्जा पक्षी के लाल लाल छोटे छोटे बच्चों की तरह मारू भी अपने ढोला को पल पल याद करके रो रही है। गलत लोगों की बातों में आकर आप मारू को दिल से मत निकालो। ढोली ने अपने दोहों में मारू की खूबसूरती और ढोला के विरह में रोती मारू के दुख को बहुत ही शानदार तरीके से बयां किया। ढोली के गाए हुए एक एक दोहे ने ढोला को सब कुछ याद दिला दिया। ढोला को अपनी गलती का एहसास हुआ और राजा पिंगल को संदेशा भिजवाया कि वो अपनी मारू को लेने आ रहा है। ढोला के आने की खबर सुनते ही मारू खुशी से झूम उठती है। उसका रूप फिर से निखरने लगता है। अगले ही दिन ढोला तैयार होकर अपनी मारू को लाने के लिए निकला, लेकिन उसकी दूसरी पत्नी मालवणी ने उसे रोक दिया। अब जितनी बार ढोला मारू को लेने के लिए निकलता, मालवणी हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे रोक दिया करती थी। एक दिन ढोला एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर अपने मारू को लेने पिंगल पहुंच गया। मारू की खूबसूरती देखकर ढोला हैरान था। उसने अपने ससुराल में मारू के साथ साथ खुशी खुशी कई दिन बिताए और फिर राजा पिंगल से मारू को ससुराल ले जाने की आज्ञा मांगी। ढोला और मारू अपने ऊंट पर पूरे काफिले के साथ नरवरगढ़ की तरफ चल निकलते हैं, लेकिन रास्ते में उनका सामना उमरा सुमरा नाम के एक व्यक्ति से होता है। उमरा चाहता था कि वह ढोला को मार के मारू को हासिल कर ले, इसलिए उसने रास्ते में ही जाजम बिछा दिया और मनुहार करने लगा। राजस्थान में विवाह के दौरान अमल की मनुहार करने की परंपरा काफी पुरानी रही है। कहते हैं कि जब ढोला मारू के साथ नरवरगढ़ जा रहा था तो उमरा ने ढोला को मनुहार के लिए रोक लिया। ढोला उमरा की हकीकत नहीं जानता था, इसलिए उसने मारू को ऊंट पर ही बैठे रहने के लिए कहा और खुद उमरा के साथ अमल की मनुहार लेने के लिए बैठ गया। अमल यानी कि

0: अफीम। राजस्थान में उस वक्त से ही किसी खुशी या गम के मौके पर अफीम देकर मनोहार की जाती थी। वक्त के साथ ही ये कुप्रथा तो बंद हो गई, लेकिन इस मनोहार की आड़ में कईयों को नुकसान उठाना पड़ता था। ढोला भी मारा जाता अगर वक्त रहते ढोला मारू के साथ जा रहे ढोली को उमरा के षड्यंत्र का एहसास नहीं होता। ढोली ने मारू को बता दिया कि ये साजिश है ढोला को मारने के लिए, लेकिन मारू भी रेगिस्तान की बेटी थी। उसने ऊंट को एड़ी मारी जिससे ऊंट जोर से भागने लगा। ऊंट को रोकने के लिए ढोला ऊंट के पीछे दौड़ने लगा। कहते हैं कि जब ढोला भागते हुए ऊंट के पास पहुंचा तो मारू ने उससे कहा, धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो, ये तुम्हें मारना चाहते हैं। ढोला ऊंट पर चढ़ गया और ढोला और मारू का ऊंट दौड़ते दौड़ते सीधा ढोला के साम्राज्य नरवरगढ़ आकर रुका। दोनों का यहाँ खूब सत्कार किया गया। मालवणी ने भी मारू को स्वीकार कर लिया और मारू ढोला की रानी बनकर राज करने लगी। तब से ही आज तक राजस्थान में ढोला मारू के दोहे गीतों के रूप में गाए जाते हैं। ढोला शब्द पति शब्द का पर्यायवाची है। आज भी जब कोई सुंदर प्रेमी जोड़ा दिखता है तो लोग उसे ढोला मारू कहके ही बुलाते हैं। मारू के दोहों पर बना केसरिया मालम पधारो मारे देश गीत ढोला मारू के प्रेम की एक अनूठी मिसाल बन गया है।
1: अभी आपने पीयूषा सिंह से कहानी सुनी, एक अनूठी प्रेम दास्ता ढोला मारू। और अब बहनों आनंद लेते हैं गीत संगीत का, तो चलिए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर में अनजाना फिल्म से ये गीत। आनंद बख्शी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

बहनों, इस प्यारे शिव गीत के बाद आपको देते हैं उपयोगी जानकारी। बहनों, बरसात का मौसम जहां हरियाली, खुशहाली और मौसम में ठंडक लेकर आता है, तो वहीं ये मौसम जल जनित बीमारियां भी लेकर आता है।

इस मौसम में स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। स्वच्छता चाहे अपने आसपास की हो या व्यक्तिगत हो, साफ सफाई अति आवश्यक है, क्योंकि इस ऋतु में बारिश और नमी के कारण संक्रमण तेजी से फैलता है, जिससे बुखार, हैजा, उल्टी, दस्त जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। बहनों, बारिश के दौरान घर के आसपास पानी जमा न होने दें, नालियों में कीटनाशक का छिड़काव करें और नालियां हमेशा ढककर ही रखें। घर की छत पर पड़े हुए खाली गमले, डिब्बा डिब्बी, पुराने टायर डिब्बे इत्यादि को उल्टा करके रखें। कूलर को साफ करके रखें, क्योंकि रुके हुए पानी में मच्छर पनपते हैं जो डेंगू या मलेरिया फैलाते हैं। तो बहनों, घर की साफ सफाई करते समय पानी में फिनाइल या नमक मिलाकर पोंछा लगाएं। कपड़े अच्छी तरह सुखाकर ही पहनें, क्योंकि कपड़ों में नमी फंगल इन्फेक्शन को जन्म देती है। साथ ही व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए जरूरी है कि बाहर से आने के बाद, सोच के बाद और खाना खाने से पहले साबुन और पानी से 2 से 3 बार अच्छी तरह हाथ धोएं। बारिश में भीगने पर घर में साफ पानी से नहाकर शरीर को अच्छी तरह सुखाकर ही कपड़े पहनें व बालों को भी अच्छी तरह सुखाएं। बाहर का स्ट्रीट फूड खाने से बचें, घर का ही साफ स्वच्छ भोजन करें। अच्छी तरह से उबला, छना या फिल्टर किया पानी पिएं। बहनों, कटे हुए फल सब्जी बाजार से नहीं खरीदें। फल सब्जियों को उपयोग के पहले साफ पानी से अच्छी तरह धोएं, फिर उपयोग करें। बहनों, भोजन सामग्री व पीने का पानी और अन्य खाद्य सामग्री को ढककर रखें। बहनों, बारिश के मौसम में पैरों की खास देखभाल करना भी जरूरी है, और पैरों की खास देखभाल के लिए वाटरप्रूफ जूते या सैंडल पहनें। घर आने पर पैरों को अच्छी तरह से एंटीसेप्टिक साबुन से धोएं और सुखाएं। जूते और मोजों को भी साफ स्वच्छ रखें और सुखाने के लिए हवादार स्थान पर रखें। बहनों, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए मौसमी फल सब्जियों का सेवन करें, साथ ही नियमित व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। बहनों, थोड़ी सी सावधानी और आसपास की स्वच्छता से हम स्वयं भी स्वच्छ व स्वस्थ रह सकते हैं और अपने परिवार और आसपास के वातावरण को स्वस्थ व स्वच्छ रख सकते हैं। तो बहनों, ये तो अभी हमने आपको उपयोगी जानकारी दी बरसात में स्वच्छता और व्यक्तिगत हाइजीन इस विषय पर। और बहनों, टिक टिक करती घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। तो इतना ही कहूंगी कि सिर्फ आसमान छू लेना ही कामयाबी नहीं होती, असली कामयाबी तो वो है कि आसमान भी छू लो और पैर भी जमीन पर रहें। आपकी अच्छाइयां बेशक अदृश्य हो सकती हैं, लेकिन इनकी छाप हमेशा दूसरों के हृदय पर विराजमान रहती है। बहनों, सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, देश में अमन चैन, शांति और खुशहाली रहे। इसी के साथ अब अनुमति दीजिए प्रतिभा चतुर्वेदी को। नमस्कार।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ, मनोरंजन समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे पप्पू राजा यादव और साथियों के गाए लोकगीत, बलराम सिंह यादव का गाया गीत और देवी सिंह यादव का गाया लोकगीत।

देवी सिंह यादव के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत में सुनिए अनुपम जैन के गाए भजन और गीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर का योगदान है।

0: अनुपम जैन के गायस गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: लोग सोचते हैं योग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो सोच में होनी चाहिए ना, ना कोई बंधन ना कोई बॉडी टाइप। बचपन हो या पचपन, व्हीलचेयर हो या वर्क फ्रॉम होम, योग सबका हक है।
2: योग जीवन से जब जुड़ता है।

0: हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज़ में, फिल्म आया सावन झूमकी। आनंद बख्शी लिखे गीत की फिल्म बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम नगमा चांदनी फिल्म से आवाजें सुरेश वाडेकर और अनुपमा देश पांडे की, आनंद बख्शी लिखे गीत की, धुन बनाई है शिव हरी ने।

0: सुरेश वाडेकर के गाइस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:10 होने को हैं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में शामिल होंगे। इस दौरान वे उद्योग संवाद समाधान ऑनलाइन और सीएम मॉनिटरिंग से जुड़े मामलों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में शामिल होंगे और स्थानीय नागरिकों से संवाद भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल दो छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा है कि निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया है कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टिकरण के नाम पर वंदे मातरम को दो भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस हमें वरिष्ठजनों के स्वास्थ्य सम्मान सुरक्षा और अधिकारों के प्रति अपने सामाजिक दायित्व का बोध कराता है। मुख्यमंत्री ने आज सोशल मीडिया पर कहा कि परिवार समाज और देश के विकास में वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव और योगदान से भावी पीढ़ी को मार्गदर्शन मिलता है। प्रदेश के जेल विभाग और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर के बीच मानसिक स्वास्थ्य और साइको सोशल काउंसलिंग के लिए समझौता हुआ है। इसके तहत जेल अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण देकर मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे। जेल विभाग के अनुसार 6 से 12 जुलाई तक 28 अधिकारियों और कर्मचारियों को तनावग्रस्त बंदियों की पहचान और काउंसलिंग का प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण के बाद संबंधित जेलों में बंदियों की काउंसलिंग की गई, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। समझौते के तहत चयनित अधिकारियों को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद वे प्रदेश के अन्य जेलों के कर्मचारियों को काउंसलिंग का प्रशिक्षण देंगे। भारतीय महिला टीम आज एम्स्टर्डम में एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में मेजबान नीदरलैंड से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। नए प्रारूप में पूल ई से शीर्ष दो टीम सेमीफाइनल के क्वालिफाई करेंगी। इससे पहले कल भारत ने पूल डी के अपने अंतिम मैच में इंग्लैंड के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। दोनों टीमों ने मौके बनाए लेकिन गोल करने में असफल रही, जबकि भारत का रक्षात्मक पक्ष दूसरे मैच में मजबूत बना रहा। इस ड्रॉ से टीम को पूल डी में महत्वपूर्ण दूसरा स्थान मिला। प्रदेश में सक्रिय मौसम प्रणाली के असर से पूर्वी हिस्से में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में अगले 24 घंटों में 4 से 8 इंच तक बारिश होने की अनुमान है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, सागर, दमोह, पन्ना, सीधी और सिवनी में भारी बारिश का अलर्ट है। कई जिलों में नर्मदा, मंदाकिनी और अन्य नदियां उफान पर हैं। सतना के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का पानी बाजार तक पहुंच गया है, जबकि गुप्त गोदावरी की गुफाएं पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई हैं। मैहर और पन्ना में स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। डिंडौरी में भी भारी बारिश के कारण स्कूल और आंगनबाड़ी बंद रखे गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। वाल्मीकि समाजजनों द्वारा आगरमालवा जिला मुख्यालय पर गोगा महाराज की प्रमुख मार्गों से निकाली गई छड़ी यात्रा में राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ महाराज भी शामिल हुए। मंडला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय सह कार्यशाला और समीक्षा बैठक आयोजित हुई। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान 2026 के तहत नर्मदापुरम जिले की माकरनगर के नगरी क्षेत्र में आज जन समस्या समाधान और संवाद शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिवपुरी जिले में कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 22 अगस्त तक गाजर खास जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। सिंगरौली में किसानों के एग्रीस्टेक पंजीयन के माध्यम से फार्मर आईडी बनाने, पैक्स की सदस्यता दिलाने, उर्वरक के अग्रिम उठाव के लिए विशेष अभियान 20 अगस्त से 15 सितंबर तक संचालित किया जाएगा। बुरहानपुर में 10 साल के लंबे इंतजार के बाद बुरहानपुर कृषि उपज मंडी ने फिर छलांग लगाई है। लगातार बढ़ती आय और कृषि उपज की आवक के दम पर मंडी को ए ग्रेड का दर्जा मिल गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जवानों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि इससे पहले एसएसबी के कार्यक्रमों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इनमें शामिल होना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमा सुरक्षा के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना, सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने बंगाल के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर करीब 189 करोड़ रुपए की लागत से एसएसपी के कई निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया है कि यह समझौता ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट।
2: पुणे में आयोजित 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक से इतर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो के बीच हुआ। ये समझौता ज्ञापन दूरसंचार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यवस्थित सहयोग के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों में समावेशी, सुरक्षित और मजबूत डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना है। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकों के क्षेत्र में अधिक सहयोग की वकालत करता रहा है। भारत ब्राजील समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का भी एक हिस्सा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक जारी है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीली डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। उद्घाटन भाषण में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की प्रतिबद्धता से प्रेरित लचीले, विश्वसनीय, नवोन्मेषी, सशक्त और समावेशी भविष्य के लिए भारत के दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की।
3: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए।
4: इम्प्लीमेंटिंग कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स।
0: ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर में हो रही है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का स्वागत किया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राजस्थान भारत की सदियों पुरानी विरासत, जीवंत संस्कृति और अद्वितीय आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अतिथि अपने प्रवास के दौरान राज्य की परंपराओं की गर्मजोशी और समृद्ध का अनुभव करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसेह और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनः समीक्षा को खारिज करते हुए 2-1 से ये फैसला दिया। एक रिपोर्ट।
5: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
0: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है।
6: झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी को आगामी 7 सितंबर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन और नियुक्तियों को अचानक रद्द करने का सरकारी फैसला नियमों के अनुकूल नहीं है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर तय की है। इससे पहले कल जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। सिंगापुर में भारत सिंगापुर कारोबारी मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, निवेश के अवसरों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री गोयल ने सिंगापुर के विदेश मामलों और व्यापार तथा उद्योग राज्य मंत्री गन सियो ह्वांग तथा अन्य गणमान्य लोगों से भी मुलाकात की। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। नई सेवा से लोगों को यात्रा का एक और विकल्प मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के उधमपुर स्टेशन पर रुकने की सुविधा का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। नई वंदे भारत उन यात्रियों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जिन्हें नौकरी, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी कामों के सिलसिले में जम्मू श्रीनगर आना जाना पड़ता है। अब उन्हें इस सेवा का लाभ लेने के लिए पहले जम्मू या किसी अन्य स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधमपुर से ही जम्मू से श्रीनगर तक की यात्रा की जा सकेगी। रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @ एआईआर न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान को विश्व में इतिहास के सबसे बड़े समन्वित आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। एक साक्षात्कार में श्री बेसेंट ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर द्वितीय प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के आर्थिक उपायों को ध्वस्त करने की धमकी दी थी। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन आर्थिक धमकियों को खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अराक्ची ने कहा कि ये धमकी अमरीकी जनता का अपने घरेलू वित्तीय समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जल मार्गों को मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही उन पर पूरा कब्जा कर लेगा। एक रिपोर्ट।
8: एक निजी रेडियो चैनल के साथ साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि अमरीका के लोगों को इस संघर्ष के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिए जाएंगे और दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता काफी हद तक कम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान में बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और सैन्य कर्मियों को वेतन नहीं मिलना उस पर बढ़ते दबाव के संकेत हैं। श्री ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो वह इसराइल और पश्चिम एशिया के अन्य देशों पर हमले कर सकता था। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइलों ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: अमेरिका ने क्यूबा के निर्माण, खनन और धातु क्षेत्रों से जुड़ी 9 सरकारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही क्यूबा की सरकारी कंपनियों के साथ कारोबार करने वाले अमरीकी नागरिकों पर भी पाबंदियां कड़ी कर दी गई हैं। क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की 100वीं जयंती से जुड़े समारोहों से वापस आने वाले नागरिकों को अमरीका म्यामी हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है और कई नदियां उफान पर हैं।
9: मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन में बारिश का असर धीरे धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: भारत के त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने असाधारण दृढ़ता और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले सेट में पिछड़ने के बाद वापसी की और चौथी वरीयता प्राप्त चीन की जिया यीफेन और झांगशू शियान को हराया। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। ये 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। भारतीय महिला टीम आज अम्स्टरडैम में एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में मेजबान नीदरलैंड से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,544 जबकि निफ्टी 24,236 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश भेजी है स्टार रेडियो श्रोता संघ रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जयस नायक, शोभा नायक, समस्त डागला परिवार। डवाली हरियाणा से जेके बोकोलिया, स्मित सुनीता बोकोलिया, संजय, अनिल और मीनू बोकोलिया। धामड़ी मानोरा से तुलसी राम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे, प्रज्वल डेरे और अनुत डेरे। आप सबने सुनना चाहा है कुमार सानू का गाया हुआ सर फिल्म का ये नगमा, संगीत अनु मलिक का।

आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, बदलापुरा मुंबई से सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता गवाणकर, अर्जुन गवाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाणकर, सुमित गवाणकर और कुमारी धोनी गवाणकर, जय किसान रेडियो श्रोता संघ कोटरा बहादुर जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से तूफान डांगी पटेल, मिसेज बीना नेपाल डांगी, राहुल डांगी, पप्पूलाल डांगी, विक्रम डांगी, कालका से शुभचंद्र बजाज, चंद्रमोहन, इंद्रमोहन, बिट्टा बजाज, सेक्टर 67 मोहाली पंजाब से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा। आप सबने पसंद किया है अनजाना फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। आनंद बख्शी के गीतों को सुरों में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश। अगली फरमाइश शोर फिल्म के इस गीत की है, आवाज़ें लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की। इंद्रजीत सिंह तुलसी के लिखे गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत की फरमाइश भेजी है बोरखेड़ा पिपरामल जिला उज्जैन से विनोद, नेहा, दीपक, मयंक, चेतन हटा, दिशा खुशमूणत और ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। साथ ही थाना रोड बक्सर से जीवद गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी ने। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं शोर फिल्म का ये नगमा।

गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में सुनिए काला बाजार फिल्म का ये गीत। शैलेंद्र के लिखे गीत की धुन बनाई है एस डी वर्मन ने। इस गीत को पसंद किया है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनाबद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अल्तमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदीप मीका, बलविंदर बिरक, जितेंद्र बिरक, मीका बिरक। यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार। और छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए ये गीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनिए मंजिल फिल्म का ये गीत। योगेश के लिखे गीत की धुन बनाई है राहुल देव फरमन ने। इस गीत की फरमाइश भेजी है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा, भोपाल एमपी से मनीष श्रीवास्तव, हर्षिता लाली श्रीवास्तव, विमल, आशा, राधिका श्रीवास्तव। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए ये गीत।

कार्यक्रम का अंतिम नगमा सुनिए, लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिसे हमने लिया है फिल्म माचिस से, गुलजार का गीत और विशाल का संगीत। इस गीत को पसंद किया है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आजू जाजोरिया, गरम पजोनिया जालोन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया, रामनगर रोड शांतिनगर इंदौर से खुर्शी खर्चे, ब्रोनो खर्चे, गणेश कार्तिकी, संजना परी, ललित नारायण खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती, छत्तीसगढ़ दंतरिंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चारडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू।

0: इस नगमे के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में शामिल होंगे। इस दौरान वे उद्योग संवाद समाधान ऑनलाइन और सीएम मॉनिटरिंग से जुड़े मामलों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में भी शामिल होंगे, स्थानीय नागरिकों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस हमें वरिष्ठजनों के स्वास्थ्य, सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों के प्रति अपने सामाजिक दायित्व का बोध कराता है। मुख्यमंत्री ने आज सोशल मीडिया पर कहा कि परिवार, समाज और देश के विकास में वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव और योगदान से भावी पीढ़ी को मार्गदर्शन मिलता है। प्रदेश के जेल विभाग और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर के बीच मानसिक स्वास्थ्य और साइको सोशल काउंसलिंग के लिए समझौता हुआ है। इसके तहत जेल अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण देकर मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे। प्रदेश में सक्रिय मौसम प्रणाली के असर से पूर्वी हिस्से में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर, 6:30, 8:15 और रात 10:45। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 6:00। 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी बाती आपके फिल्मी गीत। सुर्खियों में ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 8:00। रात 9:30 खेल जगत कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे इसराल उल हक से ली गई भेंटवार्ता, विषय है मध्य प्रदेश में बॉडी बिल्डिंग की संभावनाएं, भेंटकर्ता मनीष गजवीय। आपकी फरमाइश कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा रात 10:00 और रात 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे धानी गुंदेचा का ध्रुपद गायन, राखों का केदार। ये थे शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर अब हमारी ये सभा यही संपन्न होती है। शाम 5:00 से मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे पप्पू राजा यादव और साथी का गाया लोकगीत, बलराम सिंह यादव का गाया गीत और देवी सिंह यादव का गाया लोकगीत। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की है।

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति था। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल, प्रस्तुत है सुगम संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है जिसमें आप सुनेंगे अनुपम जैन के गाए भजन और गीत।

अनुपम जैन के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति था। हम डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण।

डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। पहला गीत बेतावी फिल्म से, आवाज सुरेश वाडेकर की, गीत समीर का और संगीत विशाल का।

नमस्कार। मीडियम वेव 188.3 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा मीडियम वेव पर आरंभ होती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। मीडियम वेव 188.3 मीटर्स पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

0: ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कुछ अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आज भोपाल के फुटल भाई सयाजी में रिटेल क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्राहकों को विभिन्न ऋण सुविधाओं और क्रेडिट समाधानों की जानकारी उपलब्ध कराना, बैंक और ग्राहकों के बीच संबंधों को और मजबूत करना रहा। और मौसम विभाग ने निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है युवा श्रोता का कार्यक्रम युववाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे युववाणी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ पारुल पटेरिया, तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कार्यक्रम की शुरुआत में हम लेकर आते हैं कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं, तो हमारी आज की पहली चर्चा का विषय है आतंकवाद के पीड़ितों की स्मृति एवं श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। साथियों, ये दिवस हर वर्ष 21 अगस्त यानी आज ही के दिन मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आतंकवाद के पीड़ितों को याद करना और उन्हें श्रद्धांजलि देना है। साथियों, ये दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवाद के पीड़ितों के सम्मान में मनाया जाता है। ये पीड़ितों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा का संदेश देता है। आतंकवादी घटनाओं में कई निर्दोष लोगों की जान चली जाती है और परिवार प्रभावित होते हैं। ये दिवस उनके दर्द और संघर्ष को दुनिया के सामने लाता है। साथियों, इस अवसर पर आतंकवाद के पीड़ितों के प्रति सहानुभूति और एकजुटता व्यक्त की जाती है। उनके साहस और संघर्ष को सम्मान दिया जाता है। साथियों, ये दिवस समाज में शांति, सुरक्षा और मानवता के महत्व को उजागर करता है। साथ ही आतंकवाद के विरुद्ध सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देता है। साथियों, आतंकवाद से प्रभावित लोगों को न्याय और सहायता मिलना आवश्यक है। उनके अधिकारों की रक्षा करना सरकार और समाज की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। साथियों, ये दिवस हमें हिंसा और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की प्रेरणा देता है। इसका संदेश है कि मानवता, शांति और सह अस्तित्व को हमेशा प्राथमिकता दी जाए। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी आतंकवाद के पीड़ितों की स्मृति एवं श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विषय पर। कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम दे देते हैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी ऐतिहासिक स्थल गोलकुंडा किला विषय पर। साथियों, गोलकुंडा किला तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला है। ये अपनी भव्य वास्तुकला और मजबूत किलेबंदी के लिए प्रसिद्ध है। साथियों, इस किले का निर्माण काकतीय वंश के समय हुआ था। बाद में कुतुबशाही शासकों ने इसका विस्तार और विकास किया। साथियों, गोलकुंडा किला कभी हीरों के व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था। कोहिनूर जैसे प्रसिद्ध हीरों का संबंध भी गोलकुंडा क्षेत्र से जोड़ा जाता है। साथियों, किले की वास्तुकला में इस्लामी और स्थानीय स्थापत्य शैली का सुंदर मेल दिखाई देता है। इसकी ऊंची दीवारें, विशाल द्वार और बुर्ज इसकी विशेषता है। साथियों, गोलकुंडा किले की ध्वनि व्यवस्था बहुत अनोखी है। प्रवेश द्वार पर ताली बजाने की आवाज किले के ऊपरी भाग तक सुनाई देती है। साथियों, किले के अंदर महल, मस्जिद, मंदिर और जल संरक्षण की व्यवस्थाएं बनाई गई थी। इससे उस समय की उन्नत वास्तुकला और इंजीनियरिंग का पता चलता है। साथियों, गोलकुंडा किला आज पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण है। यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग इसके इतिहास

इतिहास और सुंदरता को देखने आते हैं। साथियों, ये किला भारत की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक है। इसकी भव्यता हमें अपने इतिहास और पूर्वजों की उपलब्धियों से परिचित कराती है। साथियों, ये तो थी एक महत्वपूर्ण जानकारी ऐतिहासिक स्थल गोलकुंडा विषय पर। कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम करवा देते हैं आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म सनम रे से ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी अरमान मलिक और पलक मुछाल की, गीतकार थे मनोज यादव और संगीत से सजाया था अमाल मलिक ने। कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आपको सुनवा देते हैं वार्ता भारतीय संस्कृति में गाय विषय पर, जिसमें वार्ताकार होंगी मीनाक्षी राजे।
1: भारत संस्कारों का देश है, भारत अनेकता में एकता का देश है। भारत वह वट वृक्ष है जिसकी छाओं में विभिन्न रंगों, धर्मों व रीति रिवाजों के लोग निवास करते हैं। दोस्तों, आज हमारे चर्चा का विषय है भारतीय संस्कृति में गाय, या यूं कहें भारतीय समाज में गाय की स्थिति या स्थान। भारतीय संस्कृति अपने आप में अनूठी है। प्रेम, सौहार्द और सहिष्णुता के रंग तो उसमें घुले ही हैं, साथ ही दूसरों को आत्मसात करने का गुण भी है। तभी तो देश विदेश से लोग भारत आते हैं और यहीं के होकर रह जाते हैं, जैसे मदर टेरेसा और एओ ह्यूम जैसे अनेकानेक व्यक्ति। भारतीय संस्कृति प्रेम व स्नेह केवल मनुष्यों से करना ही नहीं सिखाती, वरन पेड़ पौधे जीव जंतु स्नेह दे। इसी संदर्भ में हम यदि प्राचीन काल पर दृष्टि डालें तो युगों युगों से हमें प्रकृति व जीव जंतु के हित में ही पाएंगे। इन्हीं में से एक है गाय। गाय को मातुल्य ही समझा जाता रहा है, वह पूजनीय है, वह माता है। हमारे हिंदू धर्म में गाय को पूजा जाता है, गाय का स्थान सर्वोपरि है। सतयुग में भी ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा गाय का पूजन अर्चन किया जाता था। ईश्वर भी गाय को माता का स्थान देते थे। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी व सीता जी ने वनवास काल में गाय की सेवा शुश्रूषा की। समकालीन राजा महाराजा, सामान्य जन समुदाय सभी प्रकृति व पशु प्रेमी हुआ करते थे। गाय को गौ माता भी कहा जाता है, क्योंकि इससे अमृत तुल्य दूध, स्वास्थ्यवर्धक दही व पौष्टिक घी मिलता है, इसलिए गाय को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। त्रेता युग में वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में विलक्षण गाय हुआ करती थी, उसे कामधेनु कहा जाता था। कामधेनु अर्थात मनोकामना पूर्ति करने वाली गाय। कहा जाता है कि कामधेनु से जो भी इच्छा की जाती थी वह पूरी कर देती थी। कामधेनु को गायों में सर्वोपरि धेनु माना जाता है। हमारे ग्रंथों में कामधेनु का वर्णन मिलता है। उसी के अनुसार कामधेनु सतयुग में समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और 36 कोटि देवी देवता उसमें वास करते हैं, इसलिए कामधेनु अतिशय पूजनीय है। द्वापर युग में श्री कृष्ण जन्मे थे। श्री कृष्ण को गाय अति प्रिय रही है। श्री कृष्ण यदुवंशी थे, वे ग्वाले रहे हैं, गायों को वन ले जाते थे। श्री कृष्ण के युग में गायों का संरक्षण, सम्मान, स्नेह और महत्व जितना बढ़ा वह अकथनीय है। गाय का जितना सम्मान और सेवा शुश्रूषा श्री कृष्ण ने की, शायद ही किसी और देवी देवता ने की हो। श्री कृष्ण को माखन बहुत पसंद था। श्री कृष्ण के द्वारा माखन के लिए की गई लीलाएं सभी को बहुत आनंद देती हैं। श्री कृष्ण के धेनु प्रेम ने गाय को अतिशय पूजनीय बना दिया। शाम को संध्या वंदन के लिए गौधूली बेला उत्तम मानी जाती है। जब गायें वन से अपने घरों को लौटती हैं, बड़ा ही सुहावना दृश्य होता था। बछड़े अपने अपनी माओं से मिलने के लिए रमाते थे और गायें उनके पास दौड़कर जाती थीं। बड़ा ही मनोहारी दृश्य हुआ करता था गौधूली बेला का। बड़े बड़े राजघराने हो या सामान्य जन, सभी के पास गायें हुआ करती थीं। घरों में गौशालाएं बनवाया करते थे। गाय के बछड़े बड़े होकर हल जोतते थे, जिससे खेती के कामों में भी मदद मिलती थी। भारत में कृषि ही जीवन यापन का मुख्य साधन रहा है। परंपरागत कृषि आज भी बैलों द्वारा हल जोतकर ही की जाती है, परंतु अत्याधुनिक कृषि यंत्रों के बाजार में उपलब्ध होने से बैलों के द्वारा कृषि कम ही की जाती है, क्योंकि अब भारत संपन्नता की ओर अग्रसर है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गाय से प्राप्त दूध, दही, मक्खन व घी बहुत ही उत्तम होता है। जिन नवजात शिशुओं को माँ का दूध हजम नहीं होता, उन्हें गाय के दूध का सेवन बताया जाता है, क्योंकि गाय का दूध स्वास्थ्यवर्धक, सुपाच्य व लाभकारी होता है। कृष गाय व्यक्तियों को गाय के दही व घी का सेवन का फायदेमंद रहता है। अपच हो तो गाय के दही से बना मट्ठा बहुत अच्छा रहता है। इसी तरह एसिडिटी की समस्या आम हो गई है, इसमें आधा गिलास दूध व आधा गिलास पानी पीने से लाभ होता है। नेत्र ज्योति कम हो तो गाय के घी से बना काजल लगाने से आंखों में ठंडक तो मिलती ही है, साथ ही नेत्र ज्योति भी बढ़ती है। गाय के दूध से सौंदर्य समस्याएं भी दूर होती हैं। आज महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज करती युवतियां स्वाभाविक सौंदर्य को नष्ट कर रही हैं। यदि वे गाय के दूध से चेहरे को साफ कर लेप लगाएं तो उनका चेहरा फूल की तरह खिल उठेगा और पैसों की भी बचत होगी। यह तो रहे गाय से निर्मित दूध दही घी के फायदे। गाय का मूत्र भी कम उपयोगी नहीं है, इसके सेवन से टीबी जैसी गंभीर बीमारियां भी ठीक होती हैं। हमारे हिंदू धर्म में पूजा अर्चना में पंचगव्य का विशेष विधान है। पंचगव्य अर्थात गाय का घी, गाय का मूत्र, गोबर, गंगा जल व तुलसी दल को मिलाकर मिश्रण बनाया जाता था। उसके सेवन से ही पवित्र होकर पूजा की जाती थी। पहले हर पूजा पाठ में पंचगव्य बनाया जाता था, परंतु अब आसानी से उपलब्ध न होने के कारण तथा सो कॉल्ड मॉडर्न होने के कारण इसका उपयोग लगभग बंद ही हो गया है। भारतीय संस्कृति में गाय को जो स्थान मिला है वह किसी और धर्म में नहीं मिलता। हमारे दादा नाना और उनके भी दादा नाना के ज़माने में गौदान जरूर किया जाता था। अपने जीवित रहते गौदान करने से माना जाता था कि वैतरणी पार कर स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और यह प्रथा राजा रानियों से लेकर सामान्य जन समुदाय तक प्रचलित थी। इसके विपरीत यदि किसी से गौ हत्या हो जाती थी तो उसे जघन्य अपराध माना जाता था। इस अपराध से मुक्ति के लिए गंगा स्नान व गंगा जी में सिर मुड़ाने की प्रथा थी व ब्राह्मण भोज कराना भी जरूरी होता था। तब तक अपराधी के घर का दाना पानी तक नहीं छूते थे। गाय का तो गोबर भी काम में आता है। पंचगव्य को तो पिया जाता था जिसमें गोबर भी मिलाया जाता है। गोबर से घर आंगन को लीपते हैं जिससे घर आंगन साफ स्वच्छ होने के साथ साथ कीटाणु रहित भी हो जाता है और शीतल भी रहता है। गाय के गोबर से बने उपले उत्तम ईंधन है। गरीब घरों में कंडों से ही भोजन बनाया जाता है। यह सस्ता व सरलता से उपलब्ध ईंधन है। इनका धुआं मच्छरों को दूर रखता है। यह कीटनाशक का भी काम करता है। होली के समय गोबर से बने बरूले रखे जाते हैं। दहन के समय होलिका के साथ जलाते हैं व राख को घरों में रखते हैं। गोवर्धन की पूजा का भी विशेष विधान है। गोबर से हाथ पैर और बड़ा सा पेट बने देवता गोवर्धन कहलाते हैं। इनकी पूजा दीपावली के एक दिन बाद की जाती है तथा विभिन्न प्रकार का प्रसाद लगाया जाता है। भारतीय संस्कृति ही ऐसी है कि सब जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नर नारी सभी एक दूसरे के सान्निध्य में ही रहना पसंद करते हैं। इसी से प्रकृति व मनुष्य के बीच तालमेल बना रहता है। ईश्वर की खूबसूरत रचना पृथ्वी, जल, आकाश, बादल, पशु पक्षी, कीट पतंगे, नर नारी सभी का अपना अपना महत्व है और इस सृष्टि में सभी का योगदान भी है। तभी पृथ्वी व पृथ्वीवासी सकुशल व खुशहाल रहेंगे। जिस तरह हर घर के आंगन में तुलसी होती है, ठीक उसी तरह घर में गाय भी होनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि किसी शुभ कार्य के लिए निकल रहे हो और गाय बछड़े को दूध पिलाती दिखे तो यह शुभ संकेत होता है। गाय यदि दाहिना पैर आगे किए बैठी हो तो हमें नमन करना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय चारा व हरी हरी घास व भूसा भी खाती है। अनाज का दलिया, बची हुई सब्जियाँ सभी कुछ खिला सकते हैं। गाय के भरण पोषण में अधिक खर्च नहीं आता। आज भी हमारे घरों में रिवाज है कि प्रथम रोटी गाय के लिए निकाली जाती है तथा भोजन का प्रथम ग्रास गौ के नाम का निकालते हैं। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि भारतीय संस्कृति में गाय का क्या स्थान है। गाय के रख रखाव व भरण पोषण के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। इसके लिए शासन भी कई तरह के कार्य कर रही है। जगह जगह चरो यानी गाय के पीने का पानी की व्यवस्था कराती है। निराश्रित गायों के लिए कांजी हाउस बने हैं जिसमें आवारा गायों को रखा जाता है तथा खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। इन सब के बावजूद दूसरा पहलू यह भी है कि गायों की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। इंसानों को इंसानों के लिए भी वक्त नहीं रहा। वहाँ असहाय पशुओं का रख रखाव कौन करे। हमारे समाज की बड़ी विडम्बना ही है कि आज सड़क हादसे में कई गायें रोजाना घायल हो जाती हैं। उन्हें ना कोई भोजन कराने वाला है और ना ही उनकी पूंछ पर करने वाला। बेचारी गायें जो मिल जाता है उसे खा लेती हैं। कचरे के ढेरों में पड़ा पॉलीथिनों में खाना खाने के साथ पॉलीथीन भी खा जाती हैं, जिससे उनकी मौत भी हो जाती है। क्विंटलो पॉली बैग निकलते हैं उनके पेट से, अपने पेट की भूख मिटाने के लिए भिस्टा तक खा जाती हैं। इतनी दयनीय स्थिति देखकर मन दुख से भर जाता है और सोचता है कि काश राम राज्य फिर हो, दोबारा कृष्ण आए जो गायों को अपना सर्वस्व समझें व उनका सम्मान करें, गायों को उनका गोपाल मिल जाए। गाय अतिशय पूजनीय है। हम सभी दृढ़ संकल्प लें कि आज से अपने आसपास की गायों को पीने का पानी व भोजन का प्रथम ग्रास जरूर दें व सड़कों पर आवारा गाय बैलों को कांजी हाउस में भेजें और हम

0: हमारे भारतीय संस्कृति में गौ को माता की संज्ञा दी गई है। जिस तरह हम अपनी माँ का ध्यान रखते हैं, सेवा शुश्रूषा करते हैं, ठीक उसी तरह गाय का भी ध्यान रखेंगे। गौ वध सर्वत्र बंद हो, इसके लिए हमारे समाज को, शासन को पुरजोर प्रयत्न करना है, तभी हमारी भारतीय संस्कृति में गाय जीवित व संरक्षित रह सकेगी। इसी दृढ़ संकल्प के साथ गाय सर्वत्र पूज्यते, अर्थात गाय सभी जगह पूजी जाती है, जिन्हें मेरा सहस्त्र नमन।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता भारतीय संस्कृति में गाय विषय पर, जिसमें वार्ताकार थी मीनाक्षी राजे। इसी के साथ कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम करवा देते हैं आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म रेस से ही प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी आतिफ असलम की, गीतकार थे समीर और संगीत से सजाया था प्रीतम ने। साथियों, इसी के साथ कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आपको दे देते हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल स्किल्स विषय पर। साथियों, ऑनलाइन शिक्षा से घर बैठे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, इससे समय और दूरी की बाधा कम होती है। साथियों, डिजिटल स्किल्स आज के समय में शिक्षा और रोजगार दोनों के लिए आवश्यक है। कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल टूल्स का ज्ञान महत्वपूर्ण है। साथियों, ऑनलाइन माध्यम से ईबुक, वीडियो और ऑनलाइन कोर्स आसानी से उपलब्ध होते हैं। विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार सीख सकते हैं। साथियों, डिजिटल शिक्षा से नई तकनीकों की जानकारी मिलती है, इससे विद्यार्थियों में आधुनिक सोच और रचनात्मकता विकसित होती है। इंटरनेट का सही उपयोग सीखना डिजिटल शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे जानकारी खोजने और उसका सही उपयोग करने की क्षमता बढ़ती है। साथियों, ऑनलाइन शिक्षा विद्यार्थियों को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करती है। इससे आत्मनिर्भरता और समय प्रबंधन की क्षमता बढ़ती है। साथियों, डिजिटल

माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा और असाइनमेंट आसानी से किए जा सकते हैं। इससे शिक्षा प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक और तेज होती है। साथियों, डिजिटल शिक्षा के साथ साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन गोपनीयता का भी ज्ञान जरूरी है। विद्यार्थियों को सुरक्षित तरीके से इंटरनेट का उपयोग करना चाहिए। साथियों, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल स्किल्स भविष्य की शिक्षा और रोजगार की मजबूत नींव है। इनका सही ज्ञान व्यक्ति को बदलती दुनिया के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल स्किल्स विषय पर। साथियों, इसी के साथ घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको बता देते हैं हमारी आज की रोजगार सूचना। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद की संख्या है 9124। पद का नाम है जूनियर एसोसिएट्स क्लर्क। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी फील्ड में बैचलर की डिग्री या अपीयरिंग होनी चाहिए। आयु सीमा न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 28 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 31 अगस्त 2026। अधिक जानकारी के लिए आप इनके आधिकारिक वेबसाइट www.sbi.bank.in पर विजिट करें। तो साथियों, इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। तो दीजिए अपनी मित्र पारुल पटेरिया को इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

मुंशी प्रेमचंद ने कहा, जब तक आपके पास राष्ट्रभाषा नहीं, आपका कोई राष्ट्र भी नहीं।

0: सबसे ज्यादा जो
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में

0: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: पॉलीथिन बैग्स का इस्तेमाल न करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथिन की ये थैलियां कभी नष्ट नहीं होती, जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय। खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं। पॉलीथीन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है।

कार्यक्रम का अगला गीत सरफरोश फिल्म से हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसे आवाज़ें दी आमिर खान और अलका याग्निक ने। संगीत जतिन ललित का है और इस गीत के रचनाकार समीर।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत गाया अलका याग्निक और सोनू निगम ने, संगीतबद्ध अनु मलिक ने किया है और जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा। ये गीत हमने लिया फिल्म रिफ्यूजी से।

0: अलका याग्निक और सोनू निगम के आवाज़ों में गाए रिफ्यूजी फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: सुनिए आकाशवाणी भोपाल से ग्रामीण श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम सभा, प्रतिदिन शाम 7:20 से।
0: भी मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बुधनी विधानसभा क्षेत्र के शाहगंज में मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह में 10वीं और 12वीं के 30% विद्यार्थियों को लैपटॉप देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि बच्चों की सफलता परिवार और पूरे समाज के लिए गौरव है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति के संबंध में लंबित प्रक्रिया से अवगत कराया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आज भोपाल के फुटील बाई सयाजी में रिटेल क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्राहकों को विभिन्न ऋण सुविधाओं, क्रेडिट समाधानों की जानकारी उपलब्ध कराना, बैंक और ग्राहकों के बीच संबंधों को और मजबूत करना रहा। और मौसम विभाग ने निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। आप सबको नमस्कार, स्वागत बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखनी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार, विश्वास और सम्मान से सींचिए।

0: शिवा, खुशी, जानू, मनीषा, बसंती बाई और गणेश शिवदेव।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। हमारा निवेदन वही है जो हमेशा होता है और वो ये है कि जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी सुनाइए।
0: जी
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम के साथ बने रहिए। अब प्रस्तुत है आज का प्रेरक प्रसंग।
0: जी
1: तो विमलेश जी, हमने कल चर्चा की थी तितली के संघर्ष की।
0: बिल्कुल।
1: आज किसकी चर्चा होने जा रही है?
0: अजीत जी, आज हमारी चर्चा होने जा रही है बाज की। हम सभी इस पक्षी के बारे में जानते हैं। ये अपनी तीक्ष्ण दृष्टि और शानदार उड़ान के लिए जाना जाता है। आज हम सुनेंगे बाज और मुर्गियों की कहानी।
1: श्रोताओं, इस कहानी का मूल भाव है स्वयं को पहचानिए। कहानी कुछ इस प्रकार से है, शायद आपने पहले भी सुनी हो लेकिन हर बार ये हमें अपने जीवन के बारे में कुछ न कुछ नया सोचने के लिए जरूर प्रेरित करती है।
0: तो करते हैं शुरुआत कहानी की।
1: जी।
0: एक दिन की बात है, एक किसान खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे बाज पक्षी का बच्चा पड़ा हुआ मिला। वो घायल भी था, शायद किसी तूफान में वो घोंसले से गिर गया था।
1: तो उस किसान ने सोचा, यदि मैं इसे छोड़ दूंगा तो शायद ये जीवित नहीं बचेगा। वो उस बाज के बच्चे को घर ले आया और उसे अपनी मुर्गियों और चूजों के साथ रख दिया।
0: जी।
1: वो बाज का बच्चा अब मुर्गियों के बीच ही बड़ा होने लगा।
0: वो वही खाता जो मुर्गियाँ खाती थी। वो जमीन पर दाना चुगता, मुर्गियों की तरह थोड़ा बहुत उछलता और छोटे छोटे पंख फड़फड़ाता। और जब मुर्गियाँ कुट कुट करती तो वो भी वैसा ही करने की कोशिश करता।
1: उसे मालूम ही नहीं था कि वो वास्तव में कौन है। उसे ये पता ही नहीं था कि उसकी क्षमता कितनी है।
0: जी।
1: एक दिन उसने आकाश में एक विशाल बाज को ऊंची उड़ान भरते हुए देखा। वो बादलों के बीच बिना किसी डर के शान से उड़ रहा था।
0: बाज के बच्चे ने आश्चर्य से अपनी मुर्गी माँ से पूछा, माँ वो कितना अद्भुत पक्षी है, वो कौन है? मुर्गी ने उत्तर दिया, वो बाज है, आकाश का राजा। बाज ने पूछा,
1: क्या मैं भी कभी उसके जैसा उड़ सकता हूँ?
0: मुर्गी हंस पड़ी, नहीं बेटा, हम मुर्गियाँ हैं, हम जमीन पर रहने वाले पक्षी हैं। इतनी ऊंची उड़ान हमारे बस की बात नहीं, हम उसकी तरह उड़ नहीं सकते। अजीत जी, फिर क्या हुआ? क्या बाज कभी उड़ पाया?
1: नहीं विमलेश जी, दुखद बात यह है कि बाज के बच्चे ने भी यही बात सच मान ली और उसने कभी उड़ने का प्रयास ही नहीं किया। वो पूरी जिंदगी मुर्गियों की तरह जमीन पर चलता रहा, कुटकुट करता रहा।
0: जी।
1: पता है, उसने उड़ने की जन्मजात क्षमता थी।
0: जी।
1: बस यदि वो थोड़ा और पंख फड़फड़ाता, अपने पंखों को फैलाता, उड़ने का प्रयास करता तो वो उड़ सकता था।
0: जी।
1: लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया था कि उससे हो ही नहीं सकता।
0: और एक दिन इसी भ्रम में उसका जीवन समाप्त हो गया कि वो एक साधारण मुर्गी है। प्रिय श्रोताओं, ये केवल एक पक्षी की कहानी नहीं है, ये हम में से बहुत से लोगों की कहानी है। कई बार परिस्थितियां हमें ये विश्वास दिला देती हैं कि हम जितने हैं उससे अधिक नहीं बन सकते।
1: श्रोताओं, विद्यार्थी सोचते हैं कि वे और अच्छा नहीं कर सकते, कुछ विषय उनसे हो ही नहीं सकते।
0: जी।
1: लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तुम साधारण हो।
0: जी।
1: इतना बड़ा सपना मत देखो। और श्रोताओं, होता ये कि धीरे धीरे हम भी उन बातों पर विश्वास करने लगते हैं, अपनी क्षमता भूल जाते हैं।
0: हम अपने पंख समेट लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसी सीमा में जीते रहते हैं जो दूसरों ने हमारे लिए तय की है।
1: लेकिन इतिहास गवाह है, हर महान व्यक्ति ने एक दिन यह तय किया कि वह दूसरों की सीमाओं में नहीं लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार जिएगा।
0: आपने महान नर्तकी सुधा चंद्रन के बारे में अवश्य सुना होगा। जिस दिन उन्होंने सोच लिया कि कृत्रिम पैर के साथ वो नृत्य करके दिखाएंगी, एक इतिहास रच दिया गया।
1: और श्रोताओं, आपने पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा के बारे में भी सुना होगा कि एक पैर खोने के बाद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। जी हाँ प्रिय विद्यार्थी, श्रोता मित्रों, आपसे कहना चाहते हैं शायद आपके भीतर भी कोई ना कोई सपना है, कोई प्रतिभा है, कोई ऐसा कार्य है जिसे करने से आप डर रहे हैं। हो सकता है लोगों ने आपको बार बार निराश किया हो, लेकिन याद रखिए, दूसरे लोग आपकी पहचान तय नहीं कर सकते।
0: आपका भविष्य आपकी परिस्थितियां नहीं बल्कि आपका विश्वास तय करता है। यदि बाज अपने पंखों पर विश्वास करे तो आकाश उसका है, और यदि मनुष्य अपनी क्षमता पर विश्वास करे तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं।
1: तो हम कहना चाहते हैं,
0: अपने पंखों पर विश्वास कीजिए और हाँ, किसी और से अपनी तुलना मत कीजिए क्योंकि
1: आप हैं।
0: बिल्कुल।
1: आशा है आपको हमारी प्रस्तुति अवश्य पसंद आई होगी श्रोताओं, यदि आई तो जरूर लिख भेजिए प्रोत्साहन के दो शब्द। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से श्रोताओं, आज का प्रश्न है, नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की? प्रश्न फिर से सुन लीजिए।
0: नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं?

0: और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं हमारे IVRS नंबर 800-440-559 पर, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं,
1: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना होगा NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर। इस चैनल पर जाकर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
0: कार्यक्रम में जल की दुर्लभता को समझाते हुए बताया गया है कि पृथ्वी पर पेयजल की मात्रा बहुत ही कम है, शेष खारा जल है, इसलिए हमें जल बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए।
1: साथियों नमस्कार, पिछली बार आपने सुना था कार्यक्रम पानी रे पानी। इस कार्यक्रम में आपने सुना था एक कविता के माध्यम से जल चक्र की प्रक्रिया के बारे में। आइए अब सुनते हैं इसी कार्यक्रम का दूसरा भाग, पानी रे पानी, जल है तो कल है।
2: प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी,
3: और मैं हूँ झुमरू।
2: नमस्कार।

0: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे, करेंगे किस पर?
2: जल बचाओ।
0: तो झुमकी क्यों?
1: वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
0: हाँ,
1: तो चलो शुरू करें।
0: और हाँ बच्चों, तुम्हें भी तुक मिलाना है, समझे?
2: जी झुमरू जी।
0: चलो झुमकी।
1: ठीक है ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ।
3: बंद रखो तुम नल हरदम, नहीं हो जब उपयोग। जल की एक एक बूंद का सदा करो सदुपयोग।
0: करते हो जब ब्रश तो नल को खुला कभी ना छोड़ो। नित्य प्रतिदिन ऐसा करके बूंद बूंद तो जोड़ो।
4: झुमरू जी, किताबों में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, तो इसका मतलब हुआ पृथ्वी पर बहुत पानी है।
0: हाँ,
5: लेकिन यदि इतना पानी है तो पानी की कमी क्यों है?
3: क्योंकि इसमें से समुद्र का 96% जल खारा है और ये पीने योग्य नहीं है, है ना झुमरू जी?
0: हाँ बच्चों, पृथ्वी का सिर्फ 3.5% पानी ही पीने योग्य है, जिसमें से कुछ हिस्सा ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में संरक्षित है।
5: लेकिन जल बचाने के लिए हम बच्चे क्या कर सकते हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल किया है ये तो। चलो, बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
0: जैसे?
1: जैसे हम स्नान करते समय जल का उपयोग कम कर सकते हैं, है ना? और क्या कर सकते हैं?
0: बताओ बताओ।
1: मैं नहीं, अब बच्चे बताएंगे।
0: ठीक।
1: बताओ,
5: यदि हम किसी नल से पानी टपकता हुआ देखें तो हम उसे तुरंत बंद कर सकते हैं।
1: और
5: यदि बनना हो तो हम किसी बड़े को बता सकते हैं।
0: हाँ,
1: बहुत अच्छे।
0: हाँ, ताकि उसकी मरम्मत हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
5: यानी हम बच्चे भी जल बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।
1: तो अब हो जाए सबके लिए जोरदार
2: तालियां।
0: अच्छा, अब ये बताओ बच्चों, तुम में से किस किस के पास गुल्लक है?
2: मेरे पास बहुत बड़ी पैसे।
0: अरे वाह।
1: तो फिर ये पृथ्वी भी तो एक गुल्लक ही हुई ना, है ना, है ना, है ना? बोलो। जैसे गुल्लक में पैसे बचाते हैं, वैसे ही इस बड़ी सी गुल्लक में हम क्या बचा सकते हैं?
2: जल।
0: तो झुमकी, क्यों ना हो जाए इस पर एक सुंदर सी कविता? लेकिन ऐसी वैसी कविता नहीं, के तुक मिलाने वाली।
1: आपने तो मेरी मन की बात कह दी।
0: तो,
1: चलिए
0: शुरू हो जाओ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए।
3: पृथ्वी मेरी गुल्लक है, हम इसमें जल बचाएंगे। आप भी कहिए।
0: हाँ हाँ, बूंद बूंद हम जल बचाकर। बच्चों, अब तुम्हारी बारी है।
2: जीवन सुखद बनाएंगे।
1: जीवन सुखद बनाएंगे। हाँ, जीवन सुखद बनाएंगे।

0: बस फिर क्या था, बच्चों ने थोड़े दिनों के बाद एक समूह बनाया, नाम रखा बाल जल प्रहरी।
1: और फिर बच्चों ने संभाली अपने अपने घरों और कस्बे में जल संरक्षण यानी पानी बचाने की जिम्मेदारी।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
3: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
4: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हसरत मोहानी।
5: ये कार्यक्रम उर्दू के महान साहित्यकार जनाब हसरत मोहानी के जीवन और साहित्यिक उपलब्धियों पर आधारित कार्यक्रम हसरत मोहानी।
6: चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो जमाना याद है।
7: सैयद फजलुल हसन नाम और हसरत तखल्लुस। 1875 में कस्बा मोहान, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। बास किताबों में उनका सने पैदाइश 1880 और 1881 भी मिलता है। वो एक कामयाब शायर और बेबाक सहाफी होने के साथ साथ एक सरगर्म सियासतदान और मुजाहिदे आजादी भी थे। अरबी फारसी की इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की। 1898 में गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद 1899 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। हसरत ने 12 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। 1903 का साल हसरत की जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। उन्होंने बीए का इम्तिहान पास किया। इसी साल वो अपने बागियाना ख्यालात की वजह से कॉलेज से निकाले गए। अब हसरत अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में किराए पर मकान लेकर रहने लगे। 1903 ही में हसरत ने एक इल्मियो अदबी रिसाला उर्दुए मौल्ला जारी किया। ये सिलसिला आखिर उम्र तक जारी रहा। उर्दुए मौल्ला में अदबी और सियासी दोनों तरह के मजामीन शाये हुए थे। हसरत मोहानी ने इसके जरिए कौमी इत्तेहाद, सेकुलरिज्म और कामिल आजादी की आवाज बार बार बुलंद की। वो आजाद के मतवाले थे। अंग्रेजी हुकूमत की उन्होंने खुलकर मुखालफत की और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। अप्रैल 1908 के उर्दुए मौल्ला में एक मजमून की इशाअत पर मुकदमा चला। अदालत ने उन्हें 2 साल कैदे बामशक्कत की सजा सुनाई और 500 रुपए जुर्माना किया। जेल में हसरत ने किस तरह शबोरोज गुजारे, उनके इस शेर से अंदाजा किया जा सकता है।
8: कट गया कैद में माह रमजान भी हसरत, कट गया कैद में माह रमजान भी हसरत, घरचे सामान शहर का था ना इफ्तारी का।
7: कैद से रिहाई के बाद हसरत के सियासी ख्यालात में और शिद्दत पैदा हो गई। हसरत मोहानी के मिजाज में सादगी बहुत थी। उनके लिबास और रहन सहन को देखकर गुमान भी नहीं हो सकता था कि वो बुलंद पाया शायर, अदीब और सियासतदान हैं। एक मर्तबा कानपुर के एक सौदागर जो हसरत से अकीदत रखते थे उनसे मिलने आए तो देखा कि वो कुछ लिख रहे हैं।
9: जी आदाब, बजा लाता हूँ जनाब मुहानी की खिदमत में।
8: अरे आप, आदाब अर्ज, आइए आइए, तशरीफ रखिए।
9: जी जी, शुक्रिया।
8: माफ कीजिएगा, जरा एक मजमून लिख रहा था, बस अभी आपसे मुखातिब होता हूँ।
9: कोई बात नहीं जनाब, कोई बात नहीं।
7: लिखते थे और बीच बीच में उन सौदागर से बात भी करते जाते। हसरत की पुश्त पर एक फटा पुराना पर्दा लटक रहा था, वो पर्दे के पीछे से कुछ निकालते और मुंह में रख लेते और डेस्क पर रखी गुड़ की डली से थोड़ा गुड़ खा लेते। सौदागर साहब खामोशी से देखते रहते।
8: जनाब बस जरा सी देर और, बस यूं समझिए खत्म ही हुआ जाता है।
9: जी जी, आप इत्मीनान से काम करें, बाखुदा मैं मजे में। ये थोड़ा सा अजीब है, लिख भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, कैसे पूछूं।
7: जब जब्त ना हुआ तो अर्ज किया,
9: मुहानी साहब
8: जी,
9: ये पर्दे की ओट से निकालकर आप क्या खा लेते हैं, कुछ खादिम को भी आता हो।
8: चलिए फटी हुई बनियान दिखा ही देते हैं आपको।
9: क्या मतलब?
7: हसरत ने पर्दे के पीछे से मिट्टी की हंडिया निकाली जिसमें सूखी रोटियां पानी में भीगी हुई थी।
8: ये लीजिए, खा लीजिए मियां, फकीरों का खाना तुम रईस ना खा पाओगे।
9: क्या सूखी रोटी पानी में भीगी हुई?
8: आज तीसरा फाका है, शुक्र है सूखी रोटी मयसर हो गई, बड़ी तस्कीन हो गई।
9: या खुदा,
8: नौश फरमाइए मियां,
9: लाइए
8: खाइए।
10: हम मशकूर हैं उन तमाम शूरा और सुखनवर हजरात के जो मुशायरे में शरीक हो रहे हैं।
7: हसरत मुशायरों में भी शरीक हुआ करते थे। मुशायरों के मुंतजमीन शूरा को सफर खर्च और कलाम सुनाने का मुआवजा बंद लिफाफे में पेश करते थे।
8: शुक्रिया। गजल का आखिरी शेर है, मुलायजा फरमाए।
11: इरशाद ग्रामी
8: है, मश्के सुखन जारी, चक्की की मशक्कत भी।
12: वाह क्या बात है, मश्के सुखन जारी,
8: चक्की की मशक्कत भी।
12: वाह,
8: एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी।
12: एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत। क्या बात।
7: बाद में मुंतजमीन ने उनकी खिदमत में लिफाफा पेश किया।
12: जना, क्या खूब गजल कहते हैं आप।
9: मुहानी साहब, मुशायरे की रौनक बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
8: जी शुक्रिया तो आप सब जनाब का, आपने इस नाचीज को मौका दिया।
12: आप इतनी दूर से यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये लिफाफा हमारी तरफ से।
8: जी नहीं,
9: मुहानी साहब ये तो महज टिकट का खर्च है जनाब।
8: माफ कीजिए, मुझे सफर का खर्च नहीं चाहिए। हाँ? नहीं, दरहकीकत बात यह है कि मैंने सफर पर कुछ खर्च ही नहीं किया है।
12: क्या?
8: जी
11: एक गार्ड मुझे अपने साथ डिब्बे में बैठा कर ले आया। टिकट तो नाचीज ने खरीदा ही नहीं।
13: अरे साहब,
11: शेरो शायरी पसंद करते हैं वो गार्ड साहब। चंदा शार सुनाए, सुकून से सफर कट गया। बस वो आज वापस जा रहे हैं गार्ड साहब, ये टिकट हम फिर से वापस चले जाए।
12: आप भी मान साहब। लेकिन मान साहब, नाचीज को इतनी खिदमत का मौका तो थे।
11: नहीं माफ कीजिए, ये तो आपके साथ ज्यादती होगी। मैं खामखा खर्च कैसे ले सकता हूँ आपसे?
13: मानी साहब, खामखा खर्च कैसा?
11: देखिए जनाब, जब मैंने कुछ टिकट पर खर्च ही नहीं किया तो आपसे इखराजात लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
12: मानी साहब, आपसे लफ्जों में नहीं जीत सकते हम। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।
1: उस जमाने में स्वदेशी तहरीक शुरू हो चुकी थी। इस तहरीक का मतलब था कि अपने ही मुल्क की बनी हुई चीजें खरीदी और इस्तेमाल की जाएं, विदेशी माल का बायकॉट किया जाए। उन्होंने खद्दर का इस्तेमाल पहले ही शुरू कर रखा था। अवाम में भी स्वदेशी माल के इस्तेमाल को राइज करने के लिए हसरत ने अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में एक स्वदेशी स्टोर खोला, जो कामयाबी से चला। 1920 में हसरत अलीगढ़ को खैरबाद कहकर कानपुर आ गए और यहां भी एक स्वदेशी स्टोर कायम किया। हसरत मोहानी अपने एक दोस्त के घर में मेहमान थे। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी।
12: अरे लीजिए ना हसरत साहब, थोड़ा तो और लीजिए।
11: बस बस भाई, अब तो बहुत ज्यादा हो गया।
12: आपने तो कुछ खाया ही नहीं।
11: कुछ नहीं खाया, यहाँ गला कह रहा है कि माफ करो भाई, खाना गले तक आ गया। वैसे आज ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ रही।
12: जी, बजा फरमाया आपने, आज तो भला की ठंड है। मैं अभी आपको कंबल देता हूँ, ये लीजिए। आपका सोने का इंतजाम यहाँ कर दिया है, अब आप आराम करें।
11: इतना खूबसूरत और मुलायम कंबल।
12: जी, और काफी गर्म भी है। इसको ओढ़ के चैन से सोइए।
11: शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।
12: जी, शब्बा खैर।
11: शब्बा खैर।
12: बला की ठंड है,
11: लेकिन इतना कीमती और मुलायम कंबल, लगता है विदेशी माल है। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं ओढ़ सकता। मैं मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ देसी चीजें ही इस्तेमाल करने का हक है और यही मेरा फर्ज भी है। तो जनाब कंबल जी, आप तशरीफ उधर ले जाए। अरे हसरत, तू रात बेकंबल ही गुजार ले।
1: हसरत रात भर सर्दी में कांपते रहे, मगर वो कंबल नहीं ओढ़ा। इस ख्याल से नहीं ओढ़ा कि ये विदेशी माल है। हसरत एक सच्चे मजहबी इंसान थे। उन्होंने नात और मनकबत के अलावा श्री कृष्ण की शान में भी अशार लिखे हैं।
8: मथुरा कि नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू उसी का। बरसाना ओ नंदगांव में भी, देख आए हैं जलवा हम किसी का। पैगाम हयात जाविदां था, हर नगमा कृष्ण बांसुरी का।
1: अंग्रेज हुकूमत को हसरत मोहानी की सियासी सरगर्मियां कतई पसंद नहीं थी। 1913 में उनका प्रेस जब्त कर लिया गया।
7: 1916 में उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। 1918 में रिहाई मिली तो आजादी की जिद्दोजहद में फिर मसरूफ हो गए। हसरत मुकम्मल आजादी का मुतालबा करने वाले हिंदुस्तान के पहले मुजाहिदे आजादी थे। हसरत मुहानी को तीसरी बार 22 अप्रैल 1922 को 2 साल के लिए जेल भेजा गया। 1942 में हसरत कानपुर से यूपी असेंबली के मेंबर चुने गए और फिर पार्लियामेंट के मेंबर हुए। तहरीके आजादी के सिलसिले में उन्हें रईसुल एहरार के लकब से याद किया गया। उनका इंतकाल 13 मई 1951 को लखनऊ में हुआ। आज वो फिरंगी महल लखनऊ के कब्रिस्तान अनवारे बाग में दफन हैं।
14: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम हसरत मोहानी, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
14: नमस्कार।
15: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
16: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत लेकर हम हाजिर हैं किशोर कुमार की आवाज में, जिसे लिखा योगेश ने, संगीत आर डी बर्मन का है और फिल्म का नाम मंजिल।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अगला गीत लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है और फिल्म है अभिनेत्री।

मोहरा फिल्म के इस गाने के बाद आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। अजनबी फिल्म से स्वर दिया लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, आनंद बख्शी के बोलों को धुनों में पिरोया आर डी बर्मन ने।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गीत। संगीत तैयार किया आरडी बर्मन ने और आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। फिल्म है हम किसी से कम नहीं।

0: मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में हम किसी से कम नहीं फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
4: पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल ना करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियाँ कभी नष्ट नहीं होती, जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुँचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय। खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं। पॉलीथीन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आपको एक सूचना दे दें, आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 23 अगस्त 2026 को शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस ग्राम सभा के लिए विषय हो रहेगा खरीफ फसलों में समसामयिक कार्य। कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं वे दिनांक 23 अगस्त 2026 को शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच आकाशवाणी भोपाल के फोन नंबर 2660902 या 2660903 पर फोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन समय और फोन नंबर एक बार पुनः सुनिए, 23 अगस्त 2026 शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच फोन नंबर 2660902 या 2660903 भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई।

मीडियम वेव 188.32 पर, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7 बजने को हैं, कुछ ही देर में हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप के संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि इन जहाजों पर सवार सभी 22 नाविक सुरक्षित हैं और सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क में है। विदेश मंत्रालय की सचिव श्री प्रिया रंगनाथन की फलस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फलस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने कहा कि सुश्री रंगनाथन ने फलस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फलस्तीन सरकार को सौंपी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल SSB के मुख्यालय में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य सरकार सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार के साथ पूरा सहयोग कर रही है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य

0: अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की होगी। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने और घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाना है। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, AI, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग $12 अरब का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। श्री नड्डा ने कहा कि ये विरोध ना तो विद्यार्थियों के हित में है और ना ही न्याय के हित में। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। यह 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय 7:05 हुए हैं। ये वक्त है कार्यक्रम विवरण का। आइए आपको पहले जानकारी दे दें इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी भोपाल से 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम होगा, जिसमें आज आप सुनेंगे आपकी बातें आपके फिल्मी गीत। सुर्खियों में ये कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रात 8:00। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के ही कार्यक्रम में खेल जगत कार्यक्रम होगा रात 9:30, जिसमें आज आप सुन सकते हैं मध्य प्रदेश में बॉडी बिल्डिंग की संभावनाएं। इस विषय पर इसरार उल हक से ली गई भेंटवार्ता, भेंटकर्ता होंगे मनीष गजभिये। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 9:45 पर और रात 10:00 कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में रात्रि 10:30 सुनिएगा धानी गुंदेचा का ध्रुपद गायन। ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब आइए डालते हैं एक नज़र कल दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। पहले आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम। सुबह 7:20 पर नमस्कार भोपाल कार्यक्रम में समाचार पत्रों से ली गई मुख्य सुर्खियां, गीत संगीत और नगर में होने वाली गतिविधियां। सुरमई सवेरा, इस कार्यक्रम में फिल्मी गीत आप सुन सकते हैं सुबह 8:30। लोक संगीत के कार्यक्रम में पीराजी मंडोर के गाए मालवी निर्गुण भजन हम आपको सुनाएंगे 9:15 पर। 9:30 कार्यक्रम इनसे मिलिए में प्रसिद्ध गोंड चित्रकार पद्मश्री भज्जू श्याम से विनय उपाध्याय की बातचीत होगी। 10:00 सुनिएगा जिले की चिट्ठी। 10:05 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत सागर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में मनोज कुमार का ध्रुपद गायन हम आपको सुनाएंगे सुबह 10:30। 7:25 पर बुंदेली समाचार होंगे। 7:30 से 8:00 के बीच होगा कार्यक्रम किसान वाणी, जिसमें कल आप सुनेंगे मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से कृषि आजीविका विषय पर अधिकारियों एवं हितग्राहियों से बातचीत पर

0: आधारित स्थल रिकॉर्डिंग। अब डालते हैं एक नजर आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कल के कार्यक्रमों पर। कल सुबह 11 बजे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, आपकी फरमाइश होगा दिन में 12:30 बजे। संग्रहालय से इस कार्यक्रम में दिन में 12:30 बजे सुनिएगा धारावाहिक जमुनिया का भाग 4। दोपहर 1 बजे महिला कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति रहेगा। आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति में 1:30 बजे सुनिएगा लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा दोपहर 2 बजे 2:30 पर आपकी फरमाइश में, शाम 5:33 शाम 6 बजे और 6:45 पर। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान प्रसारित किया जाएगा शाम 6:30 बजे। रेडियो में कार्यक्रम होगा कल रात 8 बजे 8:15 पर फिल्म संगीत, 9:30 बजे विज्ञान भारती कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। आकाशवाणी दिल्ली से ही रात 10 बजे सुनिएगा संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्रेयस नारायणन का कर्नाटक वोकल। ये थे आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। एक सूचना सुनिए, पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहा, आकाशवाणी चौराहा और क्यूलोल पार्क चौराहा तथा इन चौराहों के माध्यम से मध्य आने वाले समस्त स्थानों पर किसी भी प्रकार के हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन एवं पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किए जाने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश आगामी 2 मई यानी 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 7:10 हुए, थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कहा, घुसपैठ रोकना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज टीकमगढ़ में आंगनवाड़ी और जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री कल नई दिल्ली में ईडी वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रदेश में निवेश और विकास की संभावनाओं पर विचार साझा करेंगे। और प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, कई नदियां उफान पर हैं, कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कुछ अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री शाह ने समारोह के बाद जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि एसएसबी के कार्यक्रमों में मुख्यमंत्रियों को पहले भी आमंत्रित किया जाता था, लेकिन उन्होंने इसमें शामिल होना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा, घुसपैठ रोककर पश्चिम बंगाल और देश को सुरक्षित बनाना सरकार की प्राथमिकता है और फेंसिंग का सबसे मजबूत उपाय है। इसलिए शुभेंदु जी ने मात्र 45 दिनों में ही बीएसएफ और एसएसबी को 1129 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई।
1: मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू सिख जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूं कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं। मगर मेरे भाषण को सुनकर घुसपैठिए खुश न हो जाए, एक एक मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूँ।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज टीकमगढ़ प्रवास के दौरान आंगनवाड़ी केंद्र तखा और डॉ. राजेंद्र प्रसाद जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। आंगनवाड़ी में लाडली बहनों और बेटियों ने मुख्यमंत्री को राखी बांधकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों से बातचीत कर उन्हें मिलने वाले नाश्ते और भोजन की जानकारी ली तथा गुणवत्तापूर्ण भोजन और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नन्ही बालिका वैष्णवी का अन्नप्राशन भी कराया। जिला अस्पताल में मुख्यमंत्री ने ओपीडी लैब ट्रॉमा सेंटर का जायजा लिया। उन्होंने 2 सर्पदंश और 1 दुर्घटना के मरीजों से मुलाकात की तथा एनआरसी में भर्ती 19 कुपोषित बच्चों को सेहत की टोकरी वितरित की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि स्वामी चिन्मयानंद महाराज का भारतीय समाज, युवाओं के नैतिक विकास और श्रीमद् भगवद गीता के प्रचार प्रसार में योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। मुख्यमंत्री ने आज भोपाल में चिन्मय अमृत यात्रा को केसरिया झंडी दिखाकर झांसी के लिए रवाना किया। छत्तीसगढ़ से शुरू हुई यात्रा रीवा, सतना, बैतूल, नर्मदापुरम होते हुए भोपाल पहुंची। मुख्यमंत्री ने स्वामी चिन्मयानंद मिशन के सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार मिशन के प्रयासों में सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बुधनी विधानसभा क्षेत्र के शाहगंज में मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह में 10वीं और 12वीं के 30 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि बच्चों की सफलता परिवार और पूरे समाज के लिए गौरव है। श्री चौहान ने विद्यार्थियों से आत्मविश्वास के साथ मेहनत करने का आह्वान किया।
2: समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल नई दिल्ली में आयोजित ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 में शामिल होंगे। वे एमपी अनलॉकिंग द हार्ट ऑफ इंडिया सत्र में मध्यप्रदेश की औद्योगिक क्षमता, निवेश के अवसर और विकास की संभावनाओं पर विचार साझा करेंगे। फोरम में प्रदेश के टेक्सटाइल क्षेत्र और निवेश की संभावनाओं पर भी चर्चा होगी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है। योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की होगी। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। पीआईबी भोपाल द्वारा आज बुरहानपुर में आयोजित मीडिया वार्तालाप कार्यक्रम में खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आमजन को सहजता से मिले, ये सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने मीडिया से योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने और उनके सुझाव सरकार तक पहुंचाने का आग्रह किया। प्रदेश सरकार ने 32 IAS अधिकारियों की नई पदस्थापनाएं की हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने आज इस संबंध में आदेश जारी किया। अधिकारियों को विभिन्न विभागों, नगर निगमों और जिला पंचायतों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। इनमें अभिषेक चौधरी को ग्वालियर नगर निगम का आयुक्त, संजय प्रिय को जिला पंचायत सिंगरौली और नितिन बघेल को जिला पंचायत देवास का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। प्रदेश में सक्रिय मौसम प्रणाली के असर से पूर्वी हिस्से में भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात बने हैं। डिंडौरी, पन्ना, रीवा, सतना और छतरपुर में तेज बारिश होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। नर्मदा और मंदाकिनी समेत कई नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों

में 4 से 8 इंच तक बारिश की संभावना है। सतना के चित्रकूट में मंदाकिनी का पानी बाजार तक पहुंच गया है, जबकि माओगंज में नदी में फंसे मजदूरों में से एक के बहने की सूचना है। प्रदेश में अब तक सामान्य से करीब 11% कम बारिश दर्ज की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला कलेक्टर ने आज नारायणगंज के रानी दुर्गावती सीनियर कन्या छात्रावास और मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल कूड़ा मैली का निरीक्षण किया। देवास में अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं उद्यमियों को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से SC/ST उद्यमिता समागम आयोजित किया गया। गुना में आज मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत जनपद पंचायत आरून की ग्राम पंचायत झाझौन में आयोजित 3रा जिला स्तरीय जनविश्वास शिविर आयोजित किया गया। वहीं आगरमालवा जिले के डोंगरगांव में आज आयोजित हुए शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 146 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। उधर सतना जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत मजकवा में शिविर आयोजित किया गया। निमाड़ के आराध्य संत सिंगाजी महाराज का 467वां समाधि दिवस आज खंडवा जिले स्थित सिंगाजी धाम में श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। आज सीहोर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर समिति की बैठक आयोजित की गई। शिवपुरी जिले में आज कलेक्टर अर्पित वर्मा ने कोलारस कृषि उपज मंडी में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत आयोजित शिविर में जन समस्याएं सुनी और उनका मौके पर ही निराकरण किया। रायसेन में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत विकासखंड बेगमगंज के सुल्तानगंज क्लस्टर स्थित ग्राम पंचायत टीकापार मुंजापता में जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया। वहीं सागर के जैसी नगर में खंड स्तरीय जन विश्वास शिविर का भव्य आयोजन किया गया। शेड्यूल पुलिस अधीक्षक ने 15 निरीक्षकों और उप निरीक्षकों की पद स्थापना में बदलाव किया है। कई थानों के थाना प्रभारी भी बदल दिए गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित पानी का भी अभाव के कारण में नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,40,667 रुपया हमको मिला है। अपना भी बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल करें।

जय जवान जय किसान चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैयन को प्रेमचंद भैया की राम राम। और सुनाओ भैया, कैसे हो आप सभी? कुशल मंगल हो कि नहीं? भैया देखो, हम तो जो ही चाहते हैं कि सबसे पहले तो अपन को अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखने हैं, क्योंकि भैया देखो खेती किसानी से अपन जुड़े हैं और खेती किसानी के काम के लाने भैया अपन को चाहे कोनो भी मौसम का ना हो के लाने अपन को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। और अगर अपन स्वस्थ नहीं हुई है तो ना तो अपन अपने खेती किसानी के काम काज कर पे हैं और ना ही अपने घर गृहस्थी के काम काज। तो इस समय अपन को अपने मौसम को देखते हुए अपने खान पान और अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखने हैं। और भैया देखो, अपने चारों तरफ अंचल में भैया बारिश भी खूब हो रही है और किसान के लाने तो भैया बहुत ही खुशी की बात होता है कि भैया अपनी जो खेती किसानी है वो अब भी भैया मानसून पर निर्भर है। अगर मानसून अच्छा होगा तो खेत अपने फसल से लहला उठाते हैं, और अगर मानसून अच्छा नहीं हो तो खेत खाली भी रह जाते हैं। तो इस समय जो बसकाय को मौसम है, इसमें

अगर अपन खेती किसानी के कामकाज में जो कमी अगर रह गई है तो अपन को जल्दी करने हैं और कोशिश या करने हैं भैया अपन को के अच्छे से उपचारित बीजन को ही उपयोग करना है। क्या खेती में भैया अपन को कम लागत में अधिक लाभ भी लेने हैं और खेती को अपन को लाभ को धंधा बनाना है। तो ई के लाने भैया जो छोटी छोटी बातें हैं वो अपन को ज़रूर ध्यान रखने हैं। आजकल तो भैया देखो आधुनिकता का युग भी है और अपने जो नज़दीकी कृषि विज्ञान के जो वैज्ञानिक हैं वे भैया फ़ोन के माध्यम से भी अपन को सटीक जानकारी भी दे देते हैं। मौसम को भी भैया बहुत अच्छा इस समय अपन को जो देखने को मिल रहा है जानकारी बहुत अच्छी अपन को सटीक मिल जाते हैं कि कब बारिश होने हैं कब अपन को दिक्कत है मौसम में, तो बाकी अपन को बहुत अच्छे हुए हैं। तो भैया आधुनिकता को अपन को लाभ भी लेने हैं संगे संगे अपन को का जरूरी कामकाज भी करने हैं। अगर अच्छे से उपचारित बीजन को अपन उपयोग नहीं करें भैया तो अपनी मेहनत भी बेकार जाए और अपन को खेती में जो लाभ अपन चाह रहे हैं वे भी ना मिले। और वैज्ञानिक तो भैया चाहते हैं कि जो नए नए बीज हैं जो कम लागत में और अधिक उत्पादन भी अपन को दे सकते हैं वे उनके पास हैं, लेकिन अपन को उनसे जानकारी जरूर लेने हैं। और फसल चक्र को तो बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है, क्या कि भैया अगर फसल चक्र अपन ध्यान नहीं रखें तो अपनी खेतन की माटी की जो उपजाऊ क्षमता है वह भी भैया धीरे धीरे प्रभावित हो सकते हैं। जब बिल्कुल नहीं करने हैं कि अगर अपन गेहूं की खेती कर रहे हैं तो लगातार भैया अपन गेहूं गेहूं गेहूं कर रहे हैं, भैया अपन को खेती में फसल चक्र अपनाने हैं और बदलने हैं। एक बार अगर अपन ने दलहनी फसल ले ली तो भैया कोशिश क्या करें कि दूसरी बार भैया तिलहनी फसल ले लें। कम जहरी गहरी जो जड़ वाली फसलें हैं उसके बाद अपन उथली जड़ वाली फसल भी ले सकते हैं। कुल मिला के जा है कि खेती में अपन को नवाचार को उपयोग समय समय पर करते रहने हैं। भैया देखो बतकाओ तो और भी करें अपने श्रोता भैया से, पहले हम आपको सुनवा देते हैं आभा खरे के स्वर में जो नौ सौ झूला लोकगीत।

0: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
1: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
4: भैया देखो, हम अपने कार्यक्रम में समय समय पर आपको वार्ता और भेंट वार्ता के माध्यम से जो आवश्यक जानकारी होते हैं, चाहे वो अपने स्वास्थ्य से संबंधित हो, या अपनी खेती किसानी से संबंधित हो, या अपने पशुधन से संबंधित हो, वो हम आपको देते रहते हैं। तो आज जो हम भेंट वार्ता आपको सुनवा रहे हैं, उनकी विषय भी भैया जो ये है कि बरसातकालीन सब्जियों में लगने वाले प्रमुख कीट और उनसे बचाव, और ई विषय पर अपन को जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्रवीण सिंह गुर्जर, और उनसे चर्चा कर रहे हैं सोहन सिंह। तो भैया सुन लेते हैं जो अच्छी और महत्वपूर्ण भेंट वार्ता।
5: बरसात के मौसम में नमी और आर्द्रता अधिक रहती है, जिसके कारण कीटों का प्रकोप सब्जियों पर अधिक पड़ जाता है। सब्जियों में प्रमुख रूप से कौन कौन से कीट लगते हैं और इन कीटों की रोकथाम करके हमारे सब्जी उत्पादक भाई किस तरह अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित हैं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण सिंह गुज्जर। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
6: धन्यवाद
5: डॉक्टर साहब। हमारे किसान भाई बरसात के मौसम में प्रमुख रूप से कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनका उत्पादन करते हैं?
6: बरसात के मौसम में विशेष रूप से कद्दूवर्गीय सब्जियां जैसे टिंडा है, कद्दू है, लौकी है, तोरई है, इनका उत्पादन करते हैं। इसके अलावा हमारे किसान भाई भिंडी का उत्पादन लेते हैं, और मिर्ची और टमाटर बैंगन सामान्यतः पूरे वर्ष पर उगाए जाते हैं, क्योंकि ये जो फसल है सब्जियों की, जो टमाटर मिर्ची बैंगन, ये ताप के प्रति पूरी तरह से उदासीन होते हैं, इसलिए इन्हें वर्ष भर हम उगा सकते हैं।
5: डॉक्टर साहब, बरसातकालीन सब्जियों में भिंडी एक प्रमुख

0: फसल है। भिंडी की फसल में प्रमुख रूप से कौन कौन से कीट नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे किसान भाई इनसे किस तरह अपनी फसलों का बचाव कर सकते हैं?
1: भिंडी एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जी फसल है बरसात के मौसम में और काफ़ी किसान इसको लगाते हैं। इसमें प्रमुख रूप से तना और फल छेदक कीट, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे किसान भाइयों को इस सब्जी में होता है। दूसरा जैसिट, माहू और सफ़ेद मक्खी काफ़ी प्रकोप इन फसलों में होता है और सबसे जो प्रमुख है वो तना और फल छेदक है। इसके नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाइयों को सबसे जो महत्वपूर्ण जो तरीका है, जिसमें हम जैविक विधि कहते हैं नियंत्रण की, इसमें सबसे उपयुक्त तरीका है कि 8 से 10 ml या 8 से 10 मिलीलीटर आपका जो नीम तेल प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर यदि आप स्प्रे करते हैं या छिड़काव करते हैं फसल पर, तो इन कीटों का प्रकोप कम से कम होता है। दूसरा जैविक नियंत्रण में हम NPV, जिसको हम न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रेसिस वायरस, इसकी लगभग 50 इल्लियों के बराबर इसकी मात्रा प्रति बीघे हम इसका स्प्रे करते हैं, तो परिणाम स्वरूप जो इल्लियां होती हैं वो उसी विषाणु से ग्रसित होकर लटक जाती हैं और मर जाती हैं, जिससे हम जैविक रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा, किसान भाई जब आपको ऐसा लगे कि इसका नियंत्रण नहीं हो रहा है, उस परिस्थितियों में आप रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जो प्रमुख जो कीटनाशक है वो है प्रोपेनोफॉस 35 EC। इसकी 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से इसका घोल बनाकर यदि स्प्रे करते हैं तो निश्चित रूप से इसको बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन किसान भाई इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि 1 बीघा में 90 से 100 लीटर पानी में बनी हुई दवा का यदि स्प्रे करते हैं तो आप बेहतर तरीके से इन कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, सब्जियों में कद्दू वर्गीय सब्जियों का भी प्रमुख स्थान है, तो डॉक्टर साहब बरसात के मौसम में कद्दू वर्गीय सब्जियों को कौन कौन से कीट प्रभावित करते हैं और इनका हमारे किसान भाई किस तरह बचाव कर सकते हैं?
1: हमारे किसान भाई कद्दू वर्गीय सब्जियों को विशेष रूप से जायद या गर्मी के मौसम में भी लगाते हैं और बरसात के मौसम में लगाते हैं। हम ग्वाली और चंबल क्षेत्र की यदि बात करें तो काफ़ी क्षेत्रफल में इन सब्जियों का उत्पादन हमारे किसान भाई लेते हैं। किसान भाइयों, इनके जो प्रमुख जो कीट हैं वो है लाल कद्दू वर्गीय लाल भृंग कीट और दूसरा है फल मक्खी। इसके अलावा कुछ मात्राओं में जैसिट और माहू और माइट का भी प्रकोप होता है। इसमें जो प्रमुख जो कीट है वो फल मक्खी और लाल कद्दू भृंग है। फल मक्खी के लिए यदि जैविक कीट नियंत्रण की हम बात करें, और मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि फल मक्खी होती कैसे, किस तरह से आप अपना पहचान सकते हैं। फल मक्खी लगभग घरेलू मक्खी जैसी होती है, सिर्फ अंतर इतना होता है कि इसके जो पंख होते हैं वो पारदर्शी होते हैं। दूसरा, इसका जो उदर होता है या जो पेट होता है वो पीले रंग का होता है। इस तरह से आप इस फल मक्खी को पहचान सकते हैं। इसके नियंत्रण के लिए एक कह सकते हैं बिस्चारा का उपयोग कर सकते हैं और बिस्चारे में आपको प्रोपेनोफॉस और एक प्रोटीन आती है उसका मिश्रण बना सकते हैं। इसके अलावा इसमें गुड़ मिलाते हैं और इस चारे को अलग अलग जगह पर लगभग पौधे की ऊंचाई के बराबर रख देते हैं, जिससे ये कीट इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और इसके संपर्क में आने से मर जाते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे किसान भाई इसके नियंत्रण के लिए जैविक कीटनाशी, विशेष रूप से आपका नीम तेल 8 से 10 ml प्रति लीटर पानी की दर से स्प्रे करते हैं तो जैविक रूप से इन कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं और जो फल आपको प्राप्त होंगे वो विष मुक्त होंगे और अच्छी गुणवत्ता के होंगे। जहाँ तक हम बात करते हैं कि इसका रासायनिक नियंत्रण किस तरह से हो सकता है, तो सबसे जो आजकल अनुशंसित जो रासायनिक कीटनाशक है वो विशेष रूप से प्रोपेनोफॉस है। इसको हम 2 से 2.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से यदि हम घोल बनाते हैं तो इस घोल का यदि हम स्प्रे करते हैं तो इसको नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा जो प्रमुख कीट है वो लाल कद्दू भृंग है। किसान भाइयों, आप जब भी इन फसलों को देखते होंगे तो आपको पीला और लाल कलर का एक

0: कीट भृंग दिखाई देता होगा, जिसमें आप देखेंगे कि चार उसकी ऊपर की तरफ चार काले काले धब्बे पाए जाते हैं। आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये लाल कद्दू भृंग है। इसके नियंत्रण के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप इसमें भी एक प्रोपेनोपॉज, जो मैंने आपको पहले भी बताया, उसकी 8 से 10 ml मात्रा, यदि इसका स्प्रे आप प्रति लीटर की दर से, यानी 2 से लेकर 2.5 ml प्रति लीटर की दर से यदि स्प्रे करते हैं तो इसको बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा, एक बात को हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई भी फसल हो, चाहे वो सब्जी हो चाहे सस्य फसलें हों, किसान भाइयों की अनुशंसा की जाती है कि वो कोशिश करें हर वर्ष जहाँ सब्जियाँ लगा रहे हैं वहाँ गर्मियों में गहरी जुताई करें, तो निश्चित रूप से इनके जो सुप्तावस्था में जो पड़े रहते हैं, चाहे वो संघ के रूप में हो जिनको हम प्यूपा कहते हैं, वो सभी कीट नष्ट हो जाते हैं और इससे हमारे आने वाले समय में इन कीटों का प्रकोप सब्जियों पर बहुत कम होगा। इसके अलावा जेसिड है, एफिड है या माऊ है, इनके नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाई एक देह कीटनाशक जिसमें इमीडा क्लोप्रेट 2 लीटर में 1 ml मात्रा, अर्थात एक स्प्रेयर में लगभग 7 ml मात्रा मिलाकर यदि स्प्रे करते हैं तो इसको नियंत्रित कर सकते हैं। यदि जैविक कीटनाशक की बात करें तो तंबाकू का शत निकालकर इसका लगभग 10 ml मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से यदि आप स्प्रे करते हैं तो इसको अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है या नियंत्रित किया जा सकता है। आप इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ सब्जी का उत्पादन ले रहे हैं वहाँ फेरोमोन ट्रैप का जरूर उपयोग करें, क्योंकि फेरोमोन ट्रैप में एक विशेषता रहती है कि इसके अंदर एक विशेष प्रकार की गंध आती है जो नर कीटों को आकर्षित करती है, क्योंकि उसकी जो गंध होती है वो मादा की गंध रहती है। इससे जो नर कीट हैं वो इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और इसके संपर्क में आने पर जो नीचे रखा हुआ जो पानी है जिसमें कीटनाशक मिला रहता है उसके संपर्क में आने से नष्ट हो जाते हैं।
1: डॉक्टर साहब, बरसात के मौसम में हमारे किसान भाई बैंगन की भी फसल उगाते हैं, बैंगन की फसल में प्रमुख रूप से कौन कौन से कीट नुकसान पहुंचाते हैं और इनको किस तरह नियंत्रित कर सकते हैं?
0: बैंगन, जैसा आपने कहा कि बैंगन एक महत्वपूर्ण सब्जी फसल है और इसका जो प्रमुख कीट है वो तना और फल छेदक है। मेरा ये मानना है कि लगभग 80% या 80 से अधिक नुकसान है वो इसी कीट द्वारा बैंगन की फसल को पहुंचाया जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कुछ मात्रा में कुछ कीट और लगते हैं, जैसे आपका पत्ती लपेटक कीट है, उसका भी प्रकोप होता है, लाल मकड़ी है, माऊ है, लेकिन विशेष रूप से तना और फलछेदक कीट का प्रकोप होता है। इसके नियंत्रण के लिए कई जैविक विधियां हैं, लेकिन इसका जो प्रकोप देखा गया है वो विशेष रूप से प्रारंभिक अवस्था में शुरू हो जाता है और प्रारंभिक अवस्था में ये जो आपकी जो छोटी अवस्था होती है उसी अवस्था में ये तने में प्रवेश करके उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। किसान भाइयों, जब भी आप जाते होंगे खेत में तो जब इस कीट से आपकी फसल प्रभावित होती है तो आप देखते होंगे कि इस पौधे का ऊपरी भाग कभी कभी मुड़ जाता है या सूख जाता है, तो आप निश्चित रूप से समझिए कि आपकी जो बैंगन की फसल है उसमें इस कीट का प्रकोप हो चुका है। एक तो तरीका ये है कि जो भी आपके सूखे हुए भाग हैं उसके नीचे से उसको तोड़कर और ज़मीन में नष्ट कर दें। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है, जैसा मैंने पूर्व में भी बताया है, कि आपको NPB जो न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस रहता है इसकी 50 इल्लियों के बराबर इसकी जो मात्रा लें और इसको पानी में मिलाकर इसका स्प्रे करें, और स्प्रे करने के बाद आप देखेंगे कि 2-4 दिन में जो इल्लियां हैं वो बीमारी से ग्रसित हो जाएंगी और उल्टी लटक जाएंगी। हमारे किसान भाई, इस दवाई को दोबारा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, पुनः इनको जो आपकी जो लटकी हुई या बीमार या ग्रसित जो आपकी इल्लियाँ हैं उनको इकट्ठा करें और पानी में मसल कर इसको पुनः इस दवा को बना सकते हैं और प्रभावित फसल पर हम पुनः इसका स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा, हमारे किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी आप बैंगन की पेड़ी फसल जिसको हम रेटून क्रॉपिंग कहते हैं, यानी किसान भाई क्या करते हैं फसल लेने के बाद काटकर पुनः उसी का उपयोग कर लेते हैं, ये कतई ना करें क्योंकि इससे इस कीट का प्रकोप बढ़ने की ज़्यादा संभावना रहती है। दूसरा, किसान भाई हमेशा कुछ सेंसिल किस्मों का चुनाव करें, जैसे पंजाब बरसाती, ये जो किस्म है इसमें इस कीट का प्रकोप कम से कम होता है। दूसरा, हमारे किसान भाई ये भी कर सकते हैं कि जहाँ आपको ऐसा लगता है कि इस कीट का प्रकोप है और हमें जैविक रूप से इसको नियंत्रित करना है, तो मैंने आपको पूर्व में बताया था कि जहाँ जो कीट हैं विशेष रूप से इल्ली जाति के कीट हैं उनके नियंत्रण के लिए यदि जैविक कीटनाशी की बात करें तो नीम तेल सबसे उपयुक्त है, जिसको 8 से 10 ml प्रति लीटर पानी की दर से यदि स्प्रे करते हैं तो इसको बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि किसानों को ऐसा लगता है कि हम रासायनिक कीटनाशी से इसको नियंत्रित करेंगे तो साइबरमेथ्रिन या आपकी सबसे अच्छी है प्रोपेनोफॉस, इसकी 2 से 2.5 ml मात्रा प्रति पानी की दर से आप इसका स्प्रे करें। और इस बात का ध्यान रखें कि यदि एक बार कोई कीटनाशक यदि आप प्रयोग करते हैं दोबारा उसका प्रयोग न करें, क्योंकि यदि आप दोबारा प्रयोग करेंगे तो कीटों के अंदर उस विशेष कीटनाशक के प्रतिरोधक शक्ति उत्पन्न होगी जिससे आपके कीट पूरी तरह से नियंत्रित नहीं होंगे। इसलिए एक बार जिस कीटनाशक का प्रयोग करें दूसरी बार दूसरा कीटनाशक का प्रयोग करें, इससे आपको बहुत उत्साहवर्धक इस कीट के नियंत्रण के लिए आपको परिणाम प्राप्त होंगे।
1: डॉक्टर साहब, इसी समय हमारे किसान भाई टमाटर और मिर्च की भी फसल लगाते हैं। टमाटर और मिर्च की फसल में बरसात के मौसम में प्रमुख रूप से कौन कौन से कीट नुकसान पहुंचाते हैं और इनसे किस तरह हमारे किसान भाई अपनी फसलों का बचाव कर सकते हैं?
0: यहाँ तक टमाटर का प्रश्न है, क्योंकि टमाटर भी हम कह सकते हैं कि हमारे शिवपुरी और अन्य क्षेत्रों में या कह सकते हैं पूरे मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण फसल है, और इसमें जो विशेष रूप से जो कीट आता है वो आता है सफ़ेद मक्खी, और दूसरा जो कीट है जो हमारे फलों को नुकसान पहुंचाता है वो फल छेदक है। इसके अलावा थ्रिप्स, माइट और माहू का भी प्रकोप हमारी मिर्ची और टमाटर में होता है। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि हमारे क्षेत्रों में या इन सब्जियों की फसलों में सबसे ज़्यादा जो समस्या रहती है वो चुर्रा मुर्रा या लीफ कर वायरस की रहती है। इससे बहुत ज़्यादा आपकी फसल प्रभावित होती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि आपके फसलों का उत्पादन बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो इसका आपको पता होना चाहिए कि ये रोग तो विषाणु से फैलता है, लेकिन इसके बाहक विशेष रूप से फल आपकी जो सफ़ेद मक्खी और माइट्स और थ्रिप्स और जेसिड रहते हैं। इसलिए कीट नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। इसलिए किसान भाइयों, आपसे विनम्र अनुरोध है कि जब भी आपको ऐसे कीट दिखें जो रस चूसते हैं उनके लिए आप देहक कीटनाशी, विशेष रूप से देहक कीटनाशी का प्रयोग करें। और देहक कीटनाशी में यदि रासायनिक कीटनाशक की बात करें तो इमीडा क्लोप्रेट सबसे उपयुक्त है। इसको 2 लीटर पानी में 1 ml मात्रा, यदि आपके नेपसेक स्प्रेयर में यदि 14 लीटर पानी आता है तो लगभग 7 ml दवा मिलाकर आप स्प्रे करें, और लगभग 1 बीघा में इसमें लगभग आपको 6 से 7 पंप दवा मिला जो आपका जो घोल है उसका स्प्रे करें। दूसरा, किसान भाई इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि यदि सफ़ेद मक्खी या माहू या माइट से थ्रिप्स का प्रकोप होता है तो कुछ फसलें हैं जो सस फसलें हैं वो इनको आकर्षित करती हैं, जिनको हम ट्रैप क्रॉप कहते हैं। इसमें विशेष रूप से मक्का, ज्वार और बाजरा। जब भी आप मिर्ची या टमाटर लगाएं तो मेड़ों के आसपास मक्का और ज्वार की फसल को जरूर लगाएं, क्योंकि इससे आपकी जो सफ़ेद मक्खी है उसका प्रकोप कम से कम होगा और आपका जो चुर्रा मुर्रा रोग है उससे आप काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। दूसरा, किसान भाइयों, इसमें जो सबसे जो आपका जो दूसरा जो कीट है वो फल छेदक कीट है, और इसके जैविक नियंत्रण के लिए आप NPB जो मैंने पूर्व में भी आपको बताया है उसको लगभग

0: 50 इल्लियों के बराबर इसकी मात्रा लें और एक बीघा में इसका स्प्रे करें। दूसरा, नीम तेल का भी स्प्रे करें। तीसरा, जो जैविक नियंत्रण का जो तरीका है, जो मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि फेरोमोन ट्रैप, लगभग एक बीघा में लगभग आपको 2 से लेकर 3 फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करना है। यदि 1 हेक्टेयर की बात करें तो 10 फेरोमोन ट्रैप या 12 फेरोमोन ट्रैप 1 हेक्टेयर या 5 बीघा में यदि आप उपयोग करते हैं तो इनका जैविक नियंत्रण बेहतर तरीके से कर सकते हैं और बहुत अच्छा उत्पादन और गुणवत्ता युक्त उत्पादन आप ले सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे किसान भाइयों को बरसात के मौसम में, बरसातकालीन सब्जियों में कौन कौन से कीट प्रमुख रूप से नुकसान पहुंचाते हैं और इनका किस तरह बचाव कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी। और इस जानकारी से हमारे किसान भाई निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: भाई। देखो, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, बरसातकालीन सब्जियों में लगने वाले प्रमुख कीट और उनसे बचाव, और ईबी से पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर प्रवीण सिंह गुर्जर और उनसे चर्चा कर रहे थे सोहन सिंह। भैया देखो, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। अगर अपन इनको अपने खेती किसानी में उपयोग करें तो अपन जब मान लो कि भैया कीट व्याधि से भी अपनी फसल को बचा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी ले सकते हैं। क्योंकि मुख्य फसल के अलावा जो अपनी खेती किसानी में जो फल सब्जियों की जो खेती है, इसे भैया अपन को समय समय पे जो पैसे की आवक भी बनी रहते हैं और अपनी जो आर्थिक स्थिति है वह भी अच्छी बनाता है। तो भैया हम तो उम्मीद कर रहे थे कि डॉक्टर साहब ने जो जो बातें बताई अगर उनको ध्यान रखें तो अपन को जरूर लाभ हुई है। अब भैया आपको सुनवा देते हैं संदेश।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

भैया देखो, शासन तो अपनी ओर से प्रयास करत है कि जो अपनी आर्थिक स्थिति है वो अच्छी बनी रहे, और अपन जो मुख्य धारा में अपने आप को पीछे पाते हैं उनमें अपन को आगे आ रहा है। इसके अलावा भैया देखो, शासन की कई कल्याणकारी योजना भी हैं, इसे अपन को लाभ भी लेने हैं। लेकिन भैया, अगर अपन जागरूक नहीं हुई है तो भैया शासन की कोनों भी योजना को अपन लाभ नहीं ले सकते हैं। शासन की भैया देखो ऐसे ही उज्ज्वला योजना भी है, इसमें भैया अपन देखा था कि अपने गांव देहात में भैया आज भी लोग चूल्हे पर रोटी बनाते हैं, और ये खिलाने भैया लकड़ी इनके लाने अपन को बहुत दूर दूर तक लकड़ी इकट्ठी करके खिलाने। अपनी जो घर की महिला हैं वे भैया श्रम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, और शासन ने जब बात महसूस करी है कि भैया देखो, लकड़ियों से निकलने वाले धुआं से भैया सांस की बीमारी और आंखन में परेशानी भी जो अपनी है वो भी देखने को मिल रही थी। ई के लिए भैया शासन ने जो उज्ज्वला योजना निकाली है, ई को अपन को बहुत लाभ है। इसे भैया अपन को मुफ्त जो LPG सिलेंडर होते हैं, जो ईंधन है वो अपन को मिल जाते हैं, और इसे घर की महिला के नाम से भी अपन को जो कनेक्शन है वो मिलत है। इसे शासन महिला को भैया समाज में एक सम्मान की दृष्टि से भी पेश करना चाहता है कि भैया जब महिला घर की है उनके नाम से अगर सिलेंडर मिले तो बामे भैया थोड़ी जागरूकता है। तो शासन की जो योजना को अपन को लाभ लेने हैं, और अगर अपन 18 वर्ष से ऊपर के हमारे अपने गांव मतलब गांव की या अपने परिवार की कोई महिला है तो भैया जाके आवेदन कर सकते हैं, और उज्ज्वला योजना को जो सिलेंडर है वो अपन को मुफ्त मिल जाते हैं। भैया देखो, शासन की योजना है, लाभ लेने हैं तो जागरूक अपन को जरूर होने हैं। बिना जागरूकता के भैया शासन की कोनों भी जो कल्याणकारी योजनाओं को अपन लाभ नहीं ले सकते हैं। आयुष्मान कार्ड जो योजना है इसे भी भैया अपन को बहुत लाभ है, क्योंकि भैया देखो जब घर में कोई बीमार हो जाता है तो सबसे पहले भैया जो अपनों घर को जो जमा पूंजी है वो सबसे पहले खर्च हो जाते हैं, और शासन चाहते हैं कि जो घर की आर्थिक स्थिति है वो ना बिगड़े। इसके लिए भैया 5 लाख तक को जो एक वित्त वर्ष में जो अपन को इलाज है वो कोनों भी अस्पताल में अपन को मुफ्त मिल जाते हैं। तो जाके लाने भैया अपने परिवार के जितने भी लोग हैं, अगर उनको आयुष्मान कार्ड नहीं बनो है तो भैया प्रयास करें, आगे आएँ और आयुष्मान कार्ड भी बनवा लें। और ऐसे भैया

अगर जनधन खातों है, अगर जनधन खाते भी अपन देख रहे हैं, इसे अपन को बहुत लाभ मिल रहे हैं आज। पहले भैया कोनों की जागरूकता नहीं होती कि खातों काय के लाने, सब्जी चाहते भैया कि कमाई है नहीं है भैया और अपन बैंक में खातों काय खुलवाएं। लेकिन आजकल की जो शासन की कल्याणकारी योजना में अगर जो अपन को आर्थिक जो लाभ मिलते हैं वो जनधन खाते के खुलवे से अपन को सुविधा हो गई है। अगर शासन की कोनों योजना को अपन को लाभ लेने हैं और उसे लाभ मिल रहा आर्थिक लाभ, तो भैया जो सीधे अपने खाते में आ जाते हैं, इसे भैया अपन को परेशान भी उन्होंने पड़ते हैं। अगर भैया खातों नहीं होता तो शासन की जो कल्याणकारी योजना को जो आर्थिक लाभ है वो बिचौलियन के माध्यम से भैया इतना होता है उलझ भी सकते हो। लेकिन आजकल भैया एक सिंगल बटन क्लिक से भैया अगर कोई योजना को अपना आर्थिक लाभ है तो वो सीधे अपने खाते में आ जाते हैं और अपन को दिख जाते हैं कि भैया अपने खाते में पैसा आ गए। तो हर जो छोटी छोटी जो अपन को योजना है शासन की उनके लाने भैया अपन को स्वयं भी जागरूक होने हैं और अपने आसपास के जो लोग हैं अपने गांव पंचायत देहात के और शहर के लोग भी हैं उनको भी अपन को जो संपर्क में है उनको भैया जागरूक करने हैं और शासन की कल्याणकारी योजनाओं को लाभ लेने के लाने आगे आने हैं। भैया देखो बतकाओ तो हम अपने श्रोता भैया से और भी करें, अब हम आपको सुनवा देते हैं जगदीश सिंह यादव के स्वर में जो 900 वर्षा गीत।

भैया देखो, अभी आप सुन रहे थे जो उन्होंने सुन लोगी, तो भैया देखो स्टूडियो की घड़ी भी अब हमको इशारा कर रही कि हम अपने सभी श्रोता भैयन से लेने आए विदा। तो चलते हैं सभी श्रोता भैयन को प्रेमचंद भैया की राम राम, जय जवान जय किसान।

0: हैं आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम MPMS को जुलाई के महीने में मंजूरी दी थी। इस स्कीम की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक यानी कि 5 साल की है। पिछले दशक में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देश में औद्योगिकी रोजगार के सबसे तेजी से बढ़ने वाले स्रोतों में से एक बनकर उभरा है। इस सेक्टर ने लगभग 25 लाख नौकरियां पैदा की हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग आधारित आर्थिक विकास और आजीविका पैदा करने में इसके बढ़ते योगदान को दर्शाता है। अकेले मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम ही अभी लगभग 12 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है। इस बारे में और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इकोनॉमिक एनालिस्ट शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी नमस्कार, धन्यवाद।
1: शिशिर जी, आपसे सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम शुरू करने के पीछे सरकार की आखिर क्या सोच थी?
2: देखिए, ये जो स्कीम है, मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो है, ये दरअसल पुरानी स्कीम की जगह लेगा। पुरानी स्कीम क्या थी? हमारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम थी। और उस स्कीम का जो नतीजा है, वो अगर आप देखें, जैसे कुछ आंकड़े आपने शुरुआत में बताए, आंकड़े ये बताते हैं कि 2014-15 में हमारा जो प्रोडक्शन था वो 18,000 करोड़ का था, मोबाइल हैंडसेट की अगर मैं बात करूं, जो कि 2025-26 में 6.27 लाख करोड़ हो गया, यानी कि लगभग 33 गुना बढ़ा। आप अगर निर्यात की बात करिएगा तो लगभग 1,500 करोड़ का था 2014-15 में, जो कि 2025-26 में बढ़कर के करीबन 2,60,000 करोड़ पर पहुंच गया। यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे तो 165 गुना बढ़ा है। अब ऐसे समय में हमने ये देखा कि बहुत सारी जो विदेशी कंपनियां थी, विदेशी ब्रांड थे, वो देश में उन्होंने अपनी पैठ बना ली, उन्होंने यहाँ पे इसको हब बनाया और हम यहाँ से बड़े पैमाने

0: वो इंसेंटिव यानी कि प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। और मुझे लगता है कि मोबाइल हैंडसेट एक ऐसी चीज है, जैसे आप देखेंगे कि अभी आप किसी के भी हाथ में देखें तो एक तो मोबाइल हैंडसेट है ही, कई लोग हैं कि दो दो मोबाइल हैंडसेट रखते हैं, यानी कि देश में मांग काफी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी काफी मांग है। एक और चीज आप अगर देखेंगे तो हमारे लिए डिजिटल जो है वो हमारी जिंदगी की जरूरत बन गई है। पहले हम कहते थे रोटी कपड़ा मकान, अब हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान मोबाइल फोन और डेटा। ये पांचों हमको चाहिए जो हमारी जिंदगी को सही तरीके से चला सके। तो घरेलू मांग और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग उनको देखते हुए और घरेलू ब्रांड को प्रोत्साहित करने के लिए उसी को ध्यान में रख करके ये स्कीम लाई गई है।
1: आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये भी बताया कि आईपीस जो हैं उनका मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में आखिर क्या योगदान है। तो आइए आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आखिर क्या कहा।
2: PS2 टारगेट सेगमेंट 2 इज फॉर सपोर्टिंग इंडियन आईपी, इंडियन डिजाइन, इंडियन ब्रांड। दैट्स अ फंडामेंटल initiative. It's a very ambitious initiative, but we have taken in consultation with the industry. If you recall, we had a mobile manufacturing ecosystem, but because of tax issues and because of the Chinese onslaught, it became impossible for them to compete in the market. Now that we have been able to establish the ecosystem back in our country, time has come when we should be now focusing on developing Indian brand. Indian brand, Indian IP, Indian design. That is the thought process, and I think we are taking very measured, very calibrated steps on that. We have very closely coordinated with the industry, and we hope that in the tenure of this mobile phone manufacturing scheme, we'll have a good success on the having Indian brands.
1: किया कि इस स्कीम के बारे में, जो कि जुलाई के महीने में ही आ गई थी और उसको कहा गया था कि ये अप्रैल से लागू हो गई है। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि इस स्कीम के अलग अलग पहलू क्या हैं।
0: देखिए, सबसे बड़ी जो बात इस स्कीम की है जो मुझे समझ में आती है कि वो घरेलू ब्रांड को प्रोत्साहित करना, ये एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा जो घरेलू स्तर पर कल पूर्जे का उत्पादन करना, क्योंकि हो क्या रहा है कि हम एक मोबाइल हैंडसेट बनाते हैं, हम अमूमन ये कहते हैं कि हम एक असेंबली प्लांट हैं। आप असेंबलिंग प्लांट हैं तो आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत आपको बाहर से पड़ती है। अभी के समय में देखिए कि पूरी दुनिया में एक बड़ा संकट है, वो है आपका चिप को लेकर के। हमारे यहाँ बहुत सारे चिप यूनिट्स स्टार्ट हो रहे हैं, हमें उम्मीद है कि 2027 तक हम उसका निर्यात करना भी शुरू कर देंगे। तो दूसरा पहलू ये है कि आप लोकलाइजेशन कैसे बढ़ाते हैं। पहला तो आप घरेलू ब्रांड को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरा जो भी विदेशी कंपनियां हैं या देसी कंपनियां हैं वो लोकलाइजेशन को कैसे बढ़ाती हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मंत्री जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस चीज का जिक्र किया कि लगभग 18% से बढ़कर के 23% तक आया है, अभी इसको और आगे बढ़ाना है। तो ये इसका दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू ये है कि आप तकनीक के मामले में, डिजाइन के मामले में आप किस तरीके से घरेलू स्तर को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि क्या है कि अगर कोई विदेशी ब्रांड है या विदेशी डिजाइन है, आपको एक रॉयल्टी की रकम अदा करनी पड़ती है, पेटेंट की रकम अदा करनी पड़ती है। ये यदि आपके अपने देश में विकसित होना शुरू हो जाए तो आपके लिए ये एक बड़े पैमाने पर जो विदेशी मुद्रा बाहर जाती है उसका जाना रुक सकेगा। तो हम असेंबली से कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो सके, उसके लिए ये तीन जो कंपोनेंट की मैंने आपको बात की, तीन अलग अलग वर्टिकल की बात की। और ऑफ कोर्स उसके बाद ये है कि जैसे जैसे जरूरतें और जैसे जैसे तकनीक की जरूरतें बढ़ रही हैं, उसके आधार पर आप कैसे हैंडसेट को तैयार करते। तो ये मुझे लगता है कि ये कुछ खास बिंदु है इस योजना के। और उम्मीद ये की जा रही है, जैसा आंकड़े दिए जा रहे हैं, कि लगभग 39 लाख करोड़ रुपए का जो है प्रोडक्शन हमारा पहुंच सकता है। और मुझे लगता है कि ये आपके निर्यात को अगर आप ध्यान में रखिए, सेल्फ सफिशिएंसी की बात करें, आत्मनिर्भरता की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण होगा। और रोजगार भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 60,000 सीधे रोजगार की बात होगी। तो ये सारी संख्याएं और सारे जो वर्टिकल्स को अगर आप मिला दे तो हमारे एक कंप्लीट इकोसिस्टम तैयार होगा जो आगे चल करके आपको दुनिया में और बेहतर स्थिति में पहुंचा सकता है।
1: अभी कुछ देर पहले आपने भी जिक्र किया था कि भारत जो है दुनिया का दूसरे नंबर पे मोबाइल फोन उत्पादन में है, मैन्युफैक्चरिंग में। और ये भी कहा जा रहा है कि बाहर से भी कंपनियां भारत में अपने असेंबली यूनिट्स को लेकर आ रही हैं। तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि किन देशों ने अपने मोबाइल फोन असेंबलिंग यूनिट्स को भारत में लाने में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया है।
0: देखिए, सबसे बड़ी तो दक्षिण कोरिया की कंपनी है। हमारे आपके पास जो मोबाइल हैंडसेट है उसमें से अगर आप देखें तो या तो वो सैमसंग का होगा या एप्पल का होगा, तो अमेरिका से एप्पल जो है वो लेकर के आए और कोरिया से हमारे पास सैमसंग आए। इसके अलावा नोकिया ने भी अपना यहाँ पे काम शुरू किया है। ये जो तीन देश हैं जो कि काफी बड़ी हिस्सेदारी रखते थे वो अपने यहाँ पर असेंबलिंग शुरू की। अब आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ ही क्यों, तो

0: एक तरफ तो आपने उत्पादन में सहन राशि आपने दी उनको, दूसरी तरफ यहाँ पे जो श्रम शक्ति है वो काफी सस्ती है, ये एक महत्वपूर्ण है। तीसरी बात जो यहाँ पर जिसको कहते हैं भारत के पक्ष में जाता है कि पहले हमारी एक बड़ी समस्या थी लॉजिस्टिक कॉस्ट। हमारा जो पहले कच्चे माल को फैक्ट्री तक पहुंचाने और फैक्ट्री से तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने की लागत ज्यादा होती थी, इससे हमारे प्रतिस्पर्धा के ऊपर असर पड़ता था। तो अभी जब पीएम गति शक्ति योजना की शुरुआत हुई या उसके पहले सड़कों के ऊपर बात हुई, चाहे रेल मार्ग की बात करें, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें, इन सब का नतीजा ये हुआ है कि आपका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो सिंगल डिजिट में आ गया है। तो आपके पास एक श्रम शक्ति सस्ता है, आपके लिए जो लागत है जो सामान बाजार से बाजार तक पहुंचाने या कच्चे माल को फैक्ट्री तक पहुंचाने वो लागत कम है। और तीसरी बात जो भी महत्वपूर्ण ये भी है कि हमारे यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है जो कि बाहर के देशों से कंपनियों के लिए एक बड़ी मददगार साबित होती है सेकंड लेयर में। तो आपके पास लेबर है, उसके पास एक व्हाइट कॉलर जो हम लोग कहते हैं कि जो आपके मैनेजर्स हैं वो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं, वो कोऑर्डिनेशन अच्छे से कर सकते हैं, बाहर के देशों के साथ बातचीत अच्छे से कर सकते हैं, व्यापार पे अच्छे से बातचीत कर सकते हैं। तो ये सारे तथ्य आपके पक्ष में है, इसीलिए हमारे लिए उन देशों को जो अपने यहाँ सामान बनाना चाहते हैं वो नहीं बना पा रहे, क्योंकि उनके यहाँ एक और बात आप याद रखिए, उनके यहाँ एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन ज्यादा है। हम कहते हैं ना कि 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। तो अब उस 35 वर्ष से कम उम्र के लिए रोजगार के मौके की अगर हम बात कर रहे हैं, उनको अगर प्रशिक्षित कर देते हैं और बाहर के देश यहाँ पर आकर के पूंजी और तकनीक लगाते हैं तो आपका इकोसिस्टम बेहतर होगा।
1: शिशिर जी, और एक चीज मैं जो आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में तेजी से बढ़ोतरी आई है और कैसे ये सेक्टर बढ़ता ही चला जा रहा है।
0: देखिए, सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी चीज से हुआ तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से हुआ है। क्योंकि देखिए, कोई भी कंपनी किसी भी देश में निवेश करती है तो वो दो तीन चीजें देखती है। एक वो ये देखती है कि क्या वहां पर मुझे सामान का उत्पादन करना मेरे लिए फायदेमंद है कि नहीं है, सस्ता है कि नहीं है। दूसरा वो ये देखती है कि वहां से अगर हम दुनिया के दूसरे देशों में सामान पहुंचाएं तो उसकी हमारे लिए लागत क्या बनेगी। अगर हम वही सामान अपने आप बना करके बाहर भेजते हैं और भारत में ला करके तैयार करते हैं, फिर उसे दुनिया के दूसरे देशों में भेजते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट कंपैरिजन है वो आपके लिए किस तरीके से है। और तीसरी बात ये, राज्य सरकारों के बीच भी एक प्रतिस्पर्धा है कि आप ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को अपनी ओर आकर्षित करें। उनके लिए जमीन की सुविधा है, उनके लिए जो स्थानीय स्तर पर मंजूरी है वो देने की बात होती है। तो ये सारी चीजें जो है एक विदेशी कंपनी को लुभावित करती है। और अगर आप देखें, हम आप जहां बैठे हुए हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक इलाका जिसको हम लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा के नाम से जानते हैं, वहां पर आप देखें तो मोबाइल हैंडसेट की जो असेंबलिंग यूनिट्स हैं, जिस स्तर पर उनका विस्तार हुआ है वो काबिले तारीफ है। उसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में भी अगर आप बात करें, अलग अलग राज्यों में भी बात करें, वहां भी विस्तार हुआ है। तो ये सारे तथ्य जो है इन कंपनियों को एक मौका देते हैं, प्रोत्साहित करते कि आप आइए। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि केंद्र सरकार ने एक नीति बनाई, राज्य सरकार ने भी अपने स्तर पर प्रोत्साहन देने की कोशिश की, क्योंकि उनके लिए भी एक फायदे का सौदा है। उनके यहाँ अगर निवेश आता है, उनके यहाँ बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलता है, उसके अलावा कई तरह के अप्रत्यक्ष तौर पर जो गतिविधियां होती हैं उनको फायदा पहुंचता है। तो राज्यों ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो इन सब का मिला जुला ये हुआ कि आपके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, खासतौर पर मैं मोबाइल हैंडसेट की बात करूँ, उसमें काफी बढ़ोतरी हुई।
1: आपने जैसे कि मोबाइल हैंडसेट का जिक्र किया, तो उसी पे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का आने वाले सालों में क्या डेवलपमेंट होगा उसका भी जिक्र किया। और जिक्र करते हुए उन्होंने कहा,
2: टाइमलाइंस ऑलरेडी दी कंपनीज आर मैन्युफैक्चरिंग एंड वी हैव सेड दैट दिस स्कीम बेसिकली किक्स इन फ्रॉम 1st April ऑफ दिस ईयर, दिस फिस्कल ईयर FY 26-27. So from 1st April 2026, the scheme becomes effective. So that way there is a continuity of the previous program, so that all the hard work which the sector has done so far also gets accounted for. The new Indian brand industry is working on it. There is a lot of discussion going on between various players in the entire ecosystem, whether it is the brand designers, the component designers, the design of the full phone, the design of the entire PVC, the PCB assembly. All those things are right now, that is work in progress. And as soon as something comes up, we'll definitely inform you.
1: आपसे मैं एक चीज और यहाँ बात करना चाहूंगी। भारत में होसूर और श्री पेरम्बदूर जो तमिलनाडु में है, और बैंगलोर या बेंगलुरु जो कर्नाटका में है, वहाँ मौजूद मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अकेले ही 1,00,000 से ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाले नौकरियां दे रहे हैं।
0: मोबाइल हैंडसेट में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो टेक्निकली आप कहिएगा कि वो रोबोटिक हो जाते हैं, वो उस तरीके से जोड़ते हैं, लेकिन एक हिस्सा ऐसा भी है जहाँ पर आपको मानव श्रम की जरूरत होती है। جہاں پر پیکجنگ کرنی ہے, کچھ خاص طرح کے اکوپمنٹ لگانے ہیں, برانڈنگ کرنی ہے, ان سب چیزوں میں بڑے پیمانے پہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے. تو جب ان تین جگہوں کا جو آپ نے ذکر کیا دکشن بھارت کے جہاں پر کافی وستار ہوا, اور ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں کہ جن راجیوں کا آپ نے ذکر کیا, خاص طور پہ میں تمل ناڈو کا ادھارن دینا چاہوں گا جہاں پر کافی بڑے پیمانے پر آٹو موبائل انڈسٹری بھی ہے, جہاں پر تکنیک کا بڑے پیمانے پر استعمال بھی ہوتا ہے. تو اسکلڈ مین پاور آپ کے پاس ایک انڈسٹری کے لیے اپلبدھ ہو رہا ہے, وہیں پہ ایک اور انڈسٹری ہے جہاں پر آپ کو اسی طریقے سے نہیں لیکن ہاں قریب قریب ملتے جلتے آپ کو لوگوں کی ضرورت ہوئی تو وہاں پر آپ کا وستار ہوا. ایک مہتوپورن بات یہاں پر یہ بھی آپ دھیان رکھیں کہ آپ نے ان تین جگہوں کا ذکر کیا جہاں پہ ایک لاکھ سے زیادہ کی نوکریوں کی, موبائل اسمبلنگ میں یا موبائل ہینڈ سیٹ مینوفیکچرنگ میں 12 لاکھ نوکریاں جو ہے اب تک سرجت ہوئی ہیں, اور اس میں سب سے مہتوپورن بات ہے کہ 70% مہیلائیں ہیں. جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم جو آدھی آبادی کو بہتری دینے کی بات کرتے ہیں وہ یہ ادیوگ کافی اس میں مدد کر رہا ہے.
1: ششر جی آپ آکاشوانی کے اسٹوڈیو میں آئے اور آج جو اسکیم کے بارے میں کیندریہ منتری اشونی ویشنو نے بریفنگ کری, موبائل فون مینوفیکچرنگ اسکیم, اس کے بارے میں آپ نے ہمیں اتنی وسترت جانکاری دی, اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیہ واد.
3: جی دھنیہ واد. ابھی آپ سن رہے تھے بھارت سے ویشوک بازار تک بڑھتے موبائل ونرمان کھیتر پر چرچا, اس میں بھاگ لے رہے تھے آرتھک وشلیشک ششر سنہا. کارکرم کا سنچالن کر رہی تھیں آکاشوانی سمواددتا دیکشا سکسینا. یہ کارکرم آکاشوانی کے سماچار سیوا پربھاگ دوارا پرستت کیا گیا. اسے آپ ہمارے موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور یوٹیوب چینل نیوز آن اے آئی آر آفیشیل پر بھی سن سکتے ہیں.
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है. लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत. कार्यक्रम का पहला नगमा किशोर कुमार की आवाज में है जिसे लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन आर डी बर्मन की फिल्म मेरे जीवन साथी.

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ है। गुलजार की शब्द रचना को धुनों में पिरोया आर डी बर्मन ने। फिल्म आंधी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

आइए अब आपको सुनवाते हैं शहरयार का लिखा खय्याम का संगीत बद्ध किया उमराव जान फिल्म का ये गीत जिसे गाया आशा भोसले ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में गाए मौसम फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, वक्त है छोटे से अंतराल का। श्रोताओं की जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहा, आकाशवाणी चौराहा एवं किलोल पार्क चौराहा तथा इन चौराहों के मध्य आने वाले समस्त स्थानों पर किसी भी प्रकार के हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन एवं पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किए जाने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। यह प्रतिबंधात्मक आदेश आगामी 2 माह यानी 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। आम नागरिकों से अपील है कि ये प्रतिबंधात्मक आदेश का पालन करें तथा कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने में पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करें। सूचना समाप्त हुई।

0: एक सूचना और आपको दे दें, आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 23 अगस्त 2026 को शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलो ग्राम सभा के लिए विषय रहेगा खरीफ फसलों में समसामयिक कार्य। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं वे दिनांक 23 अगस्त 2026 शाम 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी भोपाल के फ़ोन नंबर 2660902 या 2660903 पर फ़ोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 8:45 होने को है। कुछ ही देर में समाचार संध्या आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय फोरम को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है, 10,000 से ज्यादा लेवल क्रॉसिंग गेट्स को भी इंटरलॉकिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे ह्यूमन एरर से होने वाले हादसों की आशंका बहुत कम हुई है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार आई तो करीब 9,000 फाटक ऐसे थे जो अनमैन्ड थे। इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अनमैन क्रॉसिंग की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। हमने मिशन मोड में गत 10 वर्ष में इन अनमैन क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया।
1: प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधान नगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
3: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है, जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
1: श्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है।
4: मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू सिख जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूँ कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूँ।
1: गृह मंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासन कतई बर्दाश्त न करने की नीति जारी रहेगी और अवैध प्रवासियों को पहचानने, नाम हटाने और निर्वासित करने की प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि हर अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी बदलाव को भी सख्ती से रोका जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी संख्या में उपस्थित कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा कानून के विद्यार्थियों तथा अन्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि 3 नए कानूनों से देश व राज्य की जनता और अधिक सुरक्षित होगी। उन्होंने आगे कहा कि जुलाई 2024 से ही देश में यह कानून लागू हो गया था, परंतु विगत की TMC की ममता सरकार ने इसे पूर्ण रूप से लागू होने नहीं दिया, परंतु भाजपा की सरकार आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस कानून पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिलीगुड़ी से अशोक चौरसिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिपोर्ट।
6: सरकार चीनी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंत्रालय ने पाया कि कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों द्वारा जमाखोरी की वजह से भी चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक पूरे देश में चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 400 टन का स्टॉक रखने की सीमा तय की है। इसके अलावा थोक उपभोक्ताओं को 1 सितंबर से 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। सरकार द्वारा राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में चीनी की उपलब्धता और बेहतर होगी। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। योजना का उद्देश्य उत्पादन का स्तर बढ़ाकर मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और व्यापक बनाते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सशक्त बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करना है। इस योजना से भारतीय मोबाइल ब्रांड को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने में भी मदद मिलेगी। नई दिल्ली में मीडिया

0: को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना भारतीय स्वामित्व वाले मोबाइल ब्रांड, बौद्धिक संपदा और डिजाइन के विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी।
1: भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट का इकोसिस्टम बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है। एमएसएमई और फाइनल प्रोडक्ट्स के बीच में पूरा एक वैल्यू चेन का रिलेशन है। उस तरीके से ये चीज डेवलप हो रही है। पीएलआई केवल एक प्योरली प्रोडक्शन बेस्ड था, इसमें डोमेस्टिक वैल्यू के लिए अलग से, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के लिए अलग से रखा गया है, और साथ ही साथ इंडियन ब्रांड को डेवलप करने के लिए, इंडियन आईपी को डेवलप करने के लिए, इंडियन डिजाइन को डेवलप करने के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि योजना की अवधि के दौरान देश में मोबाइल फोन का संचयी उत्पादन करीब 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है।
2: दो जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं, उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
0: विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फिलिस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने बताया कि सुश्री रंगनाथन ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फिलिस्तीन सरकार को सौंपी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब डॉलर का है। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों में सूचना प्रौद्योगिकी, AI, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब कुछ खेल खबरें। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने पूल डी के अपने अंतिम मैच में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में प्रवेश किया था। भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सून को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 72 किलोग्राम वर्ग में भारत की तनु शर्मा और 62 किलोग्राम वर्ग में सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। 68 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए फाइनल में भारत की मानसी लाथेर का मुकाबला चीन की चेंग लिंग से होगा और 59 किलोग्राम वर्ग के रैपिचेस राउंड में कोमल स्पेन की रोजा मोलिना के साथ खेलेंगी। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का

0: मान व्यक्त किया है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित भारत के उत्तर पूर्वी भागों में भी इस महीने की 24 तारीख तक तेज बारिश की आशंका है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थाओं से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a global bright spot for growth amid concerns over global growth and weaponization of resources. Home Minister Amit Shah reiterates government's commitment to deport every illegal immigrant from the country. Government assures availability of adequate sugar stocks to meet domestic demand. Union Minister Ashwani Vaishnav launches mobile phone manufacturing scheme with outlay of over 62,000 crore rupees to enhance domestic supply chain and global competitiveness. Health and Family Welfare Minister JP Nadda reviews situation and preparedness for H1N1 influenza in the country. And in Hockey World Cup, Indian women's team to take on the Netherlands in the second pool phase match. Prime Minister Narendra Modi has said India has been seen as a bright spot of growth throughout the globe, even as the world has many concerns regarding growth and resources are getting weaponized. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi this evening, the Prime Minister said India continues to take several steps to ensure continued growth momentum and reforms are commitment of his government.
3: Duniya ne bada bhayankar ek roop dekha hai in dino. Resources ka weaponization ho raha, avishwas ka vatavaran vishwa ke liye anek nayi chunautiyan lekar ke aa raha. Lekin aise samay mein bhi duniya भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
2: The Prime Minister said India has moved away from production-linked punishment model during earlier governments to production-linked incentives now. He alleged it was a policy of earlier regimes to keep people in scarcity so that they beg before the government even basic needs. Mr. Modi said license Raj of earlier governments was used to increase unemployment while his government's production linked incentive model creating opportunities. We now go over live to the Prime Minister's address.
3: साथियों, politics में अक्सर वही फैसले headlines बनते हैं जिनका असर आज दिखाई दे, यानी उसकी उम्र 24 घंटे हो। पहले की सरकारों ने इलेक्शन सामने देखकर भी घोषणा करने का फॉर्मूला अपनाया, लेकिन ऐसी घोषणाओं से देश नहीं बदला। देश बदलने वाले फैसले वो होते हैं जिनका प्रभाव जमीन पर दिखे, जो वर्तमान और भविष्य

0: Rajaram Kireddy and Chirag Shetty crashed out of the tournament after losing to China's Liang Weikang and Wang Chang in the quarterfinals today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a global bright spot for growth amid concerns over global growth and weaponization of resources. Home Minister Amit Shah reiterates government's commitment to deport every illegal immigrant from the country. Government assures availability of adequate sugar stocks to meet domestic demand. Union Minister Ashwani Vaishnav launches mobile phone manufacturing scheme with outlay of over 62,000 crore rupees to enhance domestic supply chain and global competitiveness. Health and Family Welfare Minister J.P. Nadda reviews situation and preparedness for H1N1 influenza in the country. And in Hockey World Cup, Indian women's team to take on the Netherlands in the second pool phase match. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आलमी तरक्की और वसाइल की हथियारकारी के मुतालिक तश्वीश के दौरान तरक्की के लिए एक दरख्शां आलमी मकाम के तौर पर उभर रहा है। वज़ीर दाखला अमित शाह ने एक बार फिर हर एक गैर कानूनी इमिग्रेंट को मुल्क से बाहर निकालने के हुकूमत के अज़्म का इआदा किया है। हुकूमत का कहना है कि घरेलू मांग को पूरा करने के लिए मुल्क में शकर का खातिरख्वाह ज़खीरा मौजूद है। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णो ने 62,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाने के साथ मोबाइल फोन मैनुफैक्चरिंग की स्कीम का इफ्तिताह किया ताकि मुल्क में सप्लाई की चेन और आलमी मुकाबला जाती सलाहियत को फरोग दिया जा सके। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा के फैलने के सबब रूनुमा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया और हॉकी में FIH आर्मी कप के सेकंड पूल के मरहले के पहले मैच में भारत की ख्वातीन की टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को पूरी दुनिया में तरक्की के एक दरख्शां मकाम के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि पूरी दुनिया में तरक्की के मुतालिक और वसाइल का बतौर हथियार इस्तेमाल किए जाने के बारे में तशवीश पाई जाती है। नई दिल्ली में आज शाम इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत तरक्की की रफ्तार को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ इकदामात किए जाने का सिलसिला जारी रखेगा और इस्लाहात उनकी हुकूमत का अज़्म है। उन्होंने कहा कि भारत पिछली हुकूमतों के दौरान पैदावार से वाबस्ता सजा के मॉडल से हटकर अब पैदावार से वाबस्ता तरगीबात में बदल चुका है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पिछली हुकूमतों की ये पॉलिसी थी कि लोगों को महरूम रखा जाए ताकि वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए भी हुकूमत के आगे हाथ फैलाएं। जनाब मोदी ने कहा कि पिछली हुकूमतों को लाइसेंस राज बेरोज़गारी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता था जबकि उनकी हुकूमत का पैदावार से वाबस्ता तरगीबाती मॉडल मौके तख्लीक करता है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत सिर्फ जाब्ते ही तब्दील नहीं कर रही है बल्कि वो जाब्तों की पूरी पॉलिसी ही तब्दील कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत हमेशा एक मुश्तरका मुस्तकबिल के जज्बे में यकीन रखता है। उन्होंने कहा कि यही सबब है कि भारत की G20 की सदारत के दौरान उसका रहनुमा उसूल एक कुर्राए अर्ज एक ख़ानदान एक मुस्तकबिल था। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ बरसों में दुनिया ने कई नशेबो फराज देखे हैं और इन तजर्बात ने एक बात को बहुत वाज़ेह कर दिया है कि हर मुल्क का मुस्तकबिल दूसरे मुल्कों के मुस्तकबिल से वाबस्ता है।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे हर देश का भविष्य उसका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है, इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 20 खलाई स्टार्टअप्स के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान CEO और बानियों के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान वजीर आजम ने जोर दिया कि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए खलाई टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करें। जनाब मोदी ने वाजह किया कि मुल्क का खलाई शोबा आलमी सतह के बासलाहियत अफराद, कंपनियों और सरमायाकारी को रागिब कर सकता है। उन्होंने तजवीज़ किया कि एक ऐसा इको निज़ाम और माहौल वजह करना चाहिए जहां जब भी दुनिया खला के बारे में सोचे तो वो भारत की तरफ देखे। खलाई सनत और दीगर समाजी तरक्याती शोबों के दरमियान वसी तर तआवुन पर जोर देते हुए वजीर आजम ने खला के लिए नौजवान जहनों में जस्तजू और दिलचस्पी पैदा करने की गरज से अटल टिंकरिंग लैब के साथ ज्यादा से ज्यादा शराकत दारी की तरगीब दिलाई। जनाब मोदी ने नए दौर में खलाई शोबे के कायदीन को हौसला दिखाने और क्यादत करने के लिए मुबारकबाद भी दी। उन्होंने कहा कि इस शोबे ने जो एतमाद जाहिर किया है उसने इस विजन को मुस्तहकम किया है जिसके साथ खलाई शोबे को निजी शराकत के लिए खोला गया था। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज मगरबी बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल SSB के हेडक्वार्टर में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। तकरीब के बाद जवानों से खिताब करते हुए जनाब शाह ने वादे किया कि साबिक वज़राए आला को SSB की साबिका तकारीब में मदु किया गया था लेकिन उन्होंने शिरकत न करने का इंतखाब किया। उन्होंने कहा कि जब से शुभिंदु अधिकारी वजीर आला बने हैं सरहदी तहफ्फुज के लिए मुकम्मल तआवुन फराहम किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम बाकायदा कागजात पहुंचने से कबल ही कामों को फोन कॉल के जरिए हल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाकी मानदा 19 एकड़ मतलूबा आराजी भी सुपुर्द की जा रही है। शाह ने बताया कि मगरबी बंगाल में मामलात से मुतालिक वसी पैमाने पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि दरअंदाजी को ख़त्म करने के लिए ममता बनर्जी से की गई बार बार की दरख्वास्तों के बावजूद वादों के मुताबिक ज़मीन फराहम नहीं की गई।
3: मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू सिख जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूँ कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूँ।
1: इस मौके पर SSB के बहुत से कैंपों के लिए संगी बुनियाद भी रखा गया जिनके लिए तकरीबन 179 करोड़ रुपए मालियत के कामों का अहाता किया गया है। वजीर दाखिला ने बताया कि जब से मरकज में BJP हुकूमत इख्तदार में आई है सरहदी तहफ्फुज के लिए जिम्मेदारी अमले की बहबूद को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। उन्होंने वादे किया कि SSB नेपाल और भूटान जैसे मुल्कों के साथ खुली हुई सरहदों की हिफाजत करने का चैलेंज से पुर काम अंजाम दे रही है। उन्होंने इसे दुश्वार तरीन फराइज में से एक करार दिया। मजीद बरआं उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए मरकजी हुकूमत ने खित्ते में निगरानी में इजाफा किया है। जनाब शाह ने यादा किया कि ममता बनर्जी ने वहां सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए मतलूबा आराजी फराहम नहीं की थी, शुभिंदु अधिकारी ने इसे फराहम किया है। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि अंदाजे से कम पैदावार के बावजूद घरेलू मांग से निमटने के लिए मुल्क में शकर का खातिरखा जखीरा मौजूद है। शकर की कीमत में हालिया इजाफे के तनाजुर में हुकूमत ने कई इकदामात किए हैं ताकि शकर की खातिरखा दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सके और सारिफीन के लिए मुस्तहकम कीमतों को बरकरार रखा जा सके। सारिफीन के उमूर खुराक और अवामी तकसीम की वजारत का कहना है कि वो सूरत हाल पर कड़ी नजर रख रही है। शकर की कीमत में हालिया कुछ हफ्तों में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता माह की 20 तारीख को शकर की कीमत 48 रुपये फी किलोग्राम थी जो कल बढ़कर तकरीबन 55 रुपये फी किलोग्राम हो गई। वजारत ने कहा कि शकर की कीमत में हालिया इजाफे की वजह इथेनॉल की पैदावार के लिए शकर की मुंतकली को करार देना मुनासिब नहीं है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
0: हुकूमत शकर की फराहमी बढ़ाने के लिए जखीरा अंदोजी के अमल के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वजारत ने मुशाहदा किया है कि कुछ शुगर मिलों और ताजरों की सट्टेबाजी और जखीरा अंदोजी के अमल ने हालिया दिनों कीमतों के इजाफे में अहम रोल अदा किया है। हुकूमत ने इस साल 1 अगस्त से 30 नवंबर तक मुल्क भर के शुगर डीलों के लिए 400 टन शकर की जखीरा अंदोजी की हद मुकर्रर कर दी है। इसके अलावा थोक सारिफीन को 1 सितंबर से 15 दिन की खपत से ज्यादा शकर स्टॉक करने की इजाजत नहीं होगी। रियासतों और शुगर मिलों को 15 अक्टूबर से करशिंग का अमल शुरू करने का मशवरा दिया गया है। इस कदम से अक्टूबर में शकर की पैदावार
4: मामूल के 3 से 4 लाख मैट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में शकर की दस्तियाबी में मजीद बेहतरी आएगी। दिल्ली से आकाशवाणी न्यूज के लिए आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल हफीज।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और मालूमाती टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णो ने आज मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम MPMS का आगाज किया। मरकजी काबीना ने इस स्कीम को पिछले महीने मंजूरी दी थी, जिसके लिए 62,500 करोड़ रुपए की बजट जाती रकम मुख्तस की गई है। नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब वैष्णो ने कहा कि ये स्कीम 1 अप्रैल 2026 से नाफिज हो गई है। इस स्कीम की मुद्दत 2026-27 से 2030-31 तक 5 साल के लिए होगी। इस स्कीम का मकसद दायरा कार में मजीद इजाफा करके मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन को और बेहतर करके नीज अंदरूने मुल्क मैन्युफैक्चरिंग की सलाहियतों को मजबूत बनाकर आलमी मुकाबला आराई में इजाफा करना है। यह स्कीम भारतीय मोबाइल ब्रांड्स तैयार करेगी और रोजगार भी वजह करेगी। MPMS के 2 हदफी जुमरे हैं, जिनमें मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सहूलतें फराहम करना और भारतीय मोबाइल फोन ब्रांड्स की मदद करना शामिल है। ये आकाशवाणी है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के वजीर JP नड्डा ने आज मुल्क में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा सूरत हाल और तैयारियों का जायज़ा लिया। बिलखसूस कौमी राजधानी पर तवज्जो मरकूज़ की गई। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने मुत्तला किया कि जनाब नड्डा ने कौमी सतह पर निगरानी और वबा की तहकीक से मुतालिक सूरत हाल, IL और SARI रुझानात, जाँच लेबोरेटरी की निगरानी और हिफ़्ज़ान सेहत की सहूलियात की तैयारियों का जायज़ा लिया, ताकि मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलात का बंदोबस्त किया जा सके। मीटिंग के दौरान जनाब नड्डा ने लगातार निगरानी, वसी तौर पर नज़र रखने और सरगर्म तौर पर तैयार रहने की ज़रूरत पर जोर दिया, जिसमें इन्फ्लुएंजा के रुझानात पर करीबी नज़र रखना शामिल है। उन्होंने अवामी बेदारी और रोकथाम से मुतालिक तरीक़ाकार, जिसमें साफ निज़ाम तनफ्फुस शामिल है, पर भी जोर दिया। मरकजी वजीर और सीनियर BJP लीडर जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस लीडर और लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी के नई दिल्ली में संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर बैठकर एहतजाज करने पर तनकीद की है। मीडिया से बात करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि यह एहतजाज न तलबा के मफाद के लिए है, ना ही इंसाफ के लिए है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी की सियासी मायूसी की और जनाब गांधी के मीडिया की तवज्जो हासिल करने की शदीद ख्वाहिश की एक अलामत है। जनाब नड्डा ने कहा कि अदालत आलिया ने पहले ही 20 जुलाई के वाक़े का नोटिस लिया है और साबिक जज की सरपरस्ती में 5 मेंबरान पर मुश्तमिल एक आला सतह की कमेटी कायम की है।
5: जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है, तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं।
1: मरकजी वजीर मवासलात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत एक मुज़ाहिम, भरोसेमंद इख्तिराआत पर मबनी, बाइख्तियार और सबकी शमूलियत वाले डिजिटल मुस्तकबिल की तामीर का मकसद रखता है, जिसे वजीर आजम नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के तसव्वुर से रहनुमाई मिलती है। वो पुणे में आज ब्रिक्स ममालिक के वज़राए मवासलात की 12वीं मीटिंग के इख्तितामी इजलास से खिताब कर रहे थे। ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के वज़राए मवासलात और सीनियर नुमाइंदों ने इत्तिलाआत और मवासलाती टेक्नोलॉजीज, डिजिटल तब्दीलियों, इख्तिराआत और मज़ाहिम डिजिटल बुनियादी ढांचे में तआवुन को मजबूत करने के सिलसिले में भी तबादले ख्याल किया। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत और मॉरिशस अपनी तवानाई की शराकत दारी को रिवायती पेट्रोलियम मसनूआत से आगे बढ़ाकर साफ और पायदार ईंधन तक वसत देने के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब पुरी ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई का तआवुन मुस्तकबिल में तवानाई की यकीनी फराहमी और साफ तरीन ईंधन पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज करेगा और ये पेट्रोलियम मसनूआत में उनकी मौजूदा शराकत दारी पर तामीर किया जाएगा। हुकूमत ने आज एक बार फिर कहा है कि भारतीय मल्लाह बिरादरी की बहबूद और सलामती भारत की आला तरीन तरजीह है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा में तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत मगरबी एशिया में रूनुमा होने वाली ताज़ा तरीन सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखने का سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ دو غیر ملکی جھنڈے والے جہازوں کے تعلق سے ہوئے ایک واقعے کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے جناب جیسوال نے بتایا کہ تمام 22 ملاح محفوظ ہیں اور حکومت اس سلسلے میں متعلقہ اہلکاروں کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ ان کی حفاظت اور صحت کو یقینی بنایا جا سکے۔ ہاکی میں ایف آئی ایچ عالمی کپ کے سیکنڈ پول کے مرحلے کے پہلے میچ میں بھارت کی خواتین کی ٹیم کا مقابلہ نیدرلینڈ سے ہوگا۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت عالمی ترقی اور وسائل کی ہتھیار کاری کے متعلق تشویش کے دوران ترقی کے لیے ایک درخشاں عالمی مقام کے طور پر ابھر رہا ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے ایک بار پھر ہر ایک غیر قانونی امیگرینٹ کو ملک سے باہر نکالنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ گھریلو مانگ کو پورا کرنے کے لیے ملک میں شکر کا خاطر خواہ ذخیرہ موجود ہے۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے 62,000 کروڑ روپے مختص کیے جانے کے ساتھ موبائل فون مینوفیکچرنگ کی اسکیم کا افتتاح کیا تاکہ ملک میں سپلائی کی چین اور عالمی مقابلہ جاتی صلاحیت کو فروغ دیا جا سکے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر جے پی نڈا نے H1N1 انفلوئنزا کے پھیلنے کے سبب رونما ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
6: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल जगत।

खेल जगत कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष गजपी। श्रोता, बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा खेल है जो काफी लोकप्रिय है, खासकर युवाओं के बीच। मध्य प्रदेश इस खेल में नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।

बॉडी बिल्डिंग से जुड़ी हुई तमाम जानकारी और उसकी संभावनाओं को लेकर बातचीत के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है मलिक इसरार जी को। आप बॉडी बिल्डिंग में नेशनल चैंपियन रह चुके हैं तथा आपको बॉडी बिल्डिंग का एक लंबा अनुभव है और वर्तमान में आप युवाओं को इसकी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं।

0: मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: थैंक यू।
2: मलिक जी, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, या यूं बात कहें कि सरल भाषा में अगर समझना चाहे तो बॉडी बिल्डिंग किसे कहते हैं और क्या इसे स्पोर्ट्स में शामिल किया गया है?
1: देखिए, जहाँ तक बॉडी बिल्डिंग का सवाल है कि बॉडी बिल्डिंग किसे कहते हैं
2: जी,
1: तो जिम में जाके या जिम के बाहर
2: जी
1: अपनी बॉडी को मजबूत बनाना
2: जी,
1: बड़ा करना, वो बॉडी बिल्डिंग है
2: जी,
1: जिसको हम दूसरी भाषा में टिश्यू बिल्डिंग या सेल बिल्डिंग भी कह सकते हैं।
2: बिल्कुल।
1: अब जो सवाल है कि क्या इसको स्पोर्ट्स में शामिल किया गया है, तो हाँ, इसको स्पोर्ट्स में शामिल किया गया है
2: जी।
1: इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए जॉब देती है, रेलवेज में कई हमारे साथ के खिलाड़ी हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हैं
2: जी,
1: और BSNL में भी हैं, तो गवर्नमेंट भी इसके लिए जॉब देती है और ये स्पोर्ट्स में शामिल है
2: जी। क्या ओलंपिक में भी इसको शामिल किया गया?
1: इसको ओलंपिक में शामिल तो नहीं किया गया, लेकिन इसका मिस्टर ओलंपिया अलग से होता है
2: जी,
1: मिस्टर ओलंपिया नाम से, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन और बहुत ही प्रेस्टीजियस टाइटल होता है मिस्टर ओलंपिया, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स, लेकिन इसको ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया, जैसे क्रिकेट को नहीं किया गया।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और भविष्य में इसको अवश्य शामिल किया जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: अब जैसे हम बात कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग की, तो बॉडी बिल्डिंग शुरू करने की सही उम्र क्या है?
1: देखिए, इस बारे में बहुत सारे मिथ हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत सारे लोगों के मिथ इससे दूर हो जाएंगे
2: जी।
1: बॉडी बिल्डिंग करने की जो सही उम्र है ना, वो है 5 साल। लोगों को लगेगा कि मैंने बहुत कम बता दी कि यार 5 साल में कैसे आदमी जिम जाकर बॉडी बनाए, बहुत सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं। असल में क्या है कि किसी भी स्पोर्ट्स को 3 से 5 साल की एज में शुरू कर देना चाहिए, अगर वो गोल पहले से पता है।
2: बिल्कुल सही।
1: 5 साल के बच्चे को इतनी समझदारी नहीं होती कि मुझे क्या करना है, लेकिन अगर उसके माता पिता ये चाहते हैं कि मेरा बेटा बॉडी बिल्डर बने
2: जी,
1: जैसे कि मैं चाहता हूँ मेरा बेटा बॉडी बिल्डर बने, तो 5 साल की उम्र में मैं उसे अखाड़े में छोड़ के आ जाऊंगा, यहाँ पे आप दंड बैठक लगाओ लगाओ। इससे होगा क्या कि उसका जो जेनेटिकल पोटेंशियल है वो बहुत बढ़ जाएगा, उसका जो बोन स्ट्रक्चर है वो डेवलप हो जाएगा
2: जी।
1: उस एज में हमारी बॉडी के सारे वाइटल ऑर्गन्स भी डेवलप होते हैं, हमारे लंग्स डेवलप होते हैं, हमारा हार्ट डेवलप होता है, हमारी बोन्स भी इवन डेवलप होती हैं
2: जी।
1: तो एक बहुत ही बड़ा फ्रेम तैयार हो जाएगा 15-16-17 साल की एज तक आते आते
2: जी।
1: वो बच्चा बहुत मजबूत बन जाएगा, तो जब ही वो 17-16 साल की उम्र में जिम जाके वर्कआउट करेगा, बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट करेगा ना, तो ये सारी चीजें उसके बहुत काम आएंगी और उसको एक एज देंगी उन लोगों से
2: जी
1: जो उसके साथ 18 साल के हुए लेकिन उन्होंने 17 की उम्र में तैयारी शुरू करी थी
2: जी, जी।
1: और एक ऐसा बच्चा जिसने 5 साल की एज में करी, तो उसका जो स्टैमिना है, उसके जो ज्वाइंट की मजबूती है, उसका जो बोन स्ट्रक्चर है, वो बहुत ज्यादा मजबूत होगा
2: जी। मलिक जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने, और हम अपने पेरेंट्स जो भी अपने बच्चों को बॉडी बिल्डिंग में डालना चाहते हैं उनसे जरूर ये जो बात आपने कही है वो कहेंगे कि वो भी इस पे जरूर सोचे और विचार करें। अगर हम अपने बच्चों को सही दिशा सही उम्र में प्रदान करेंगे तो निश्चित ही जो हमने उनके लिए गोल सेट किए हैं वह उस गोल को जरूर अचीव करेंगे।
1: बिल्कुल।
2: अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी प्रतियोगिताएं आयोजित होती है बॉडी बिल्डिंग के लिए
1: जी। देखिए, बॉडी बिल्डिंग की जो सबसे छोटी प्रतियोगिता होती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है
2: जी।
1: वो डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन कराती है, और उसके ऊपर उससे बड़ी जो प्रतियोगिता होती है वो होती है संभाग स्तर डिविजनल
2: जी।
1: उसके बाद स्टेट लेवल पे, उसके बाद वेस्टर्न इंडिया या नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया, एक पर्टिकुलर रीजन, और उसके बाद नेशनल्स, नेशनल के बाद साउथ एशिया, साउथ एशिया के बाद एशिया, एशिया के बाद वर्ल्ड, और वर्ल्ड के बाद ओलंपिया।
2: ओके, तो हम अपने तमाम श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि जो हमारे मलिक इजरार जी हैं वो ओलंपिया तक पहुंचे थे, तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज वो हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्रतियोगिता होती है क्या उसको किन्हीं वर्गों के बीच में विभाजित किया गया है?
1: हाँ, बॉडी बिल्डिंग में 3 तरह की प्रतियोगिता होती है
2: जी।
1: एक तो बॉडी बिल्डिंग ही होती है जिसको 55 किलो से शुरू होकर और 100+ तक कैटेगरी होती है, 5 kg की एक कैटेगरी होती है, 55 kg, 60 kg, 65, ऐसे 100+ तक कैटेगरीज होती हैं, लगभग 10 कैटेगरी होती हैं
2: जी।
1: दूसरा जो इसकी कैटेगरी अभी शुरू हुई है कुछ दिनों पहले, फिटनेस को और बॉडी बिल्डिंग का रुझान युवाओं में बढ़ाने के लिए, वो क्लासिक फिजिक, बॉडी बिल्डिंग से थोड़ा सा वो आसान गेम है लेकिन उसमें भी बॉडी बिल्डिंग करना पड़ती है।
2: बिल्कुल।
1: और उसके अलावा एक और प्रतियोगिता अभी शुरू हुई है पिछले कुछ सालों से, बड़े ट्रेंड में है और जो यंगस्टर्स हैं उनको बड़ा क्रेज है उस चीज का, जिसको हम फिटनेस मॉडल बोलते हैं, है ना, और उसका गेम का नाम है मैंस फिजिक
2: जी।
1: फिटनेस मॉडल वाली बॉडी होती है वो, तो उसके लिए बहुत ह्यूज बॉडी की जरूरत नहीं होती, बॉडी शेप में हो, नैरो वेस्ट हो, शोल्डर चौड़े हों, वी शेप बॉडी हो
2: जी,
1: बॉडी फैट परसेंटेज कम हो, तो ये सारी कैटेगरीज भी जो हैं ये अब उसके साथ शुरू कर दी गई हैं, सिर्फ इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा बॉडी बिल्डिंग के स्पोर्ट्स से जुड़ सकें और खुद को मजबूत बना सकें और स्ट्रांग रह सकें।
2: जी मलिक जी, युवाओं को अक्सर इस बात का भ्रम है कि बॉडी बिल्डिंग में ज्यादा पैसा नहीं है, इस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप से जो राशि प्राप्त होती है उससे कहीं ज्यादा राशि उन्हें अपने ऊपर स्वयं पर खर्च करनी होती है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे?
1: ये बात बिल्कुल सही है कि बॉडी बिल्डिंग जो है वो दुनिया का सबसे महंगा गेम है
2: जी।
1: रोज एक प्लेयर को अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करना पड़ता है एवरी डे, डाइट के रूप में, नेचुरल जो डाइट है वो और सप्लीमेंट्स के रूप में एवरी डे
2: बिल्कुल
1: रोज उस पर इन्वेस्ट करना है। क्रिकेट में क्या है कि एक बार अच्छी कंपनी की हमने किट खरीद ली तो 2-4-6 महीने चलती है
2: बिल्कुल,
1: अच्छी कंपनी की फुटबॉल ले ली तो चलती है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में रोज उनको अपनी डाइट लेनी है जो कि काफी महंगी आती है, सप्लीमेंट्स वगैरह लेने रहते हैं वो भी काफी महंगे आते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जितना एक बॉडी बिल्डर अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करता है को जब जीतता है तो उसकी इनामी राशि उसके मुकाबले बहुत कम होती है। लेकिन अभी पिछले 4-5 सालों से इतनी सारी प्रतियोगिता होने लगी है और बहुत सारी बड़ी कंपनी ऐसे जुड़ गई हैं
2: जी,
1: सप्लीमेंट्स की, जिम इक्विपमेंट्स की, तो वो लोग काफी अच्छी स्पॉन्सरशिप दे रही हैं प्लेयर्स को और उनको जो है अच्छी खासी प्राइज मनी मिल रही है
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: इसी के साथ इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन जो है वो केवल एकमात्र ऐसी फेडरेशन है जिसको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है और उसके प्लेयर्स को जॉब देती है
2: जी।
1: तो अगर कोई नेशनल में मेडल मारता है या इंटरनेशनल में जिस दिन मेडल मारता है ना, ऑलमोस्ट उसकी जॉब पक्की हो जाती है बशर्ते उसकी एज जो है 32 साल से कम हो
2: जी, जी, जी।
1: तो गवर्नमेंट जॉब भी लगती है, पैसा भी अच्छा खासा मिलता है, जरूरत है उस लेवल पे परफॉर्म करने की
2: जी।
1: तो मेरा कहना यह है कि बॉडी बिल्डिंग में भी बहुत पैसा है, गवर्नमेंट जॉब भी है, आप उस लेवल पे परफॉर्म तो करिए
2: बिल्कुल, बहुत
1: डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पे अगर कोई एक्सपेक्ट करे कि मुझको बहुत सारा पैसा मिल जाए, स्पॉन्सरशिप मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है
2: जी। अब बात करते हैं डाइट की, जो अभी हमने बात करी, किस तरह का आहार लेना जरूरी है, और अभी अक्सर देखा गया कि जो सप्लीमेंट्स आते हैं लोग जो बॉडी बिल्डर से वो सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, तो क्या सप्लीमेंट्स लेना ज्यादा बेहतर है नेचुरल डाइट के मुकाबले?
1: नहीं, देखिए ये कहना ठीक नहीं है कि सप्लीमेंट लेना ज्यादा बेहतर है नेचुरल डाइट के मुकाबले
2: जी।
1: लेकिन जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं बेसिकली उनके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, जो नेचुरल डाइट से पूरी कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है
2: जी।
1: कई बॉडी बिल्डर्स ऐसे हैं जो दिन भर में 20 से 25 एग वाइट्स खाते हैं, लगभग 1 किलो उबला हुआ चिकन खाते हैं और बहुत सारी चीजें खाते हैं, स्प्राउट्स खाते हैं, पनीर खाते हैं, मिल्क, ये सारी चीजें वो लेते हैं अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स पूरा करने के लिए, क्योंकि जब तक प्रोटीन भरपूर मात्रा में नहीं होगा मसल साइज उतना नहीं बढ़ पाएगा, उतना एनर्जी नहीं आएगी, बॉडी वैसी नहीं दिखेगी। तो वो क्या करते हैं कि वो अपना 60-70% जो है वो नेचुरल डाइट से ले लेते हैं और बचा हुआ 20-30% जो है वो सप्लीमेंट से ले लेते हैं, और सप्लीमेंट्स लेने में कोई बुराई नहीं, कभी भी सप्लीमेंट्स जो है बिगनर्स को जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस या नॉलेज नहीं है सप्लीमेंट की, उनको हमेशा डाइटिशियन या स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट या फिर अपने ट्रेनर और कोच के गाइडेंस के हिसाब से ही सप्लीमेंट चूज करना चाहिए।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। अब जैसे आपने बात कही कोच की, तो हम बात करना चाहेंगे कि इसमें ट्रेनर की और कोच की भूमिका कितनी ज्यादा अहम है?
1: इसमें भी ट्रेनर और कोच की भूमिका उतनी अहम है जितनी की पढ़ाई लिखाई में
2: जी।
1: अगर हम स्कूल जाते हैं और हमारे गुरु ने जो हमको बताया है हम होमवर्क नहीं करते, हम उसकी बात नहीं मानते, तो हम कभी भी अच्छे नंबर से पास नहीं हो सकते और जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: एक कोच का, एक ट्रेनर का, एक गुरु का गाइडेंस और उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है अगर कोई प्लेयर लाइफ में आगे जाना चाहता है तो।
2: मलिक जी, मध्य प्रदेश में आपको बॉडी बिल्डिंग की क्या संभावनाएं नजर आती है?
1: संभावनाएं मध्य प्रदेश में अनंत है, प्रतिभाएं भी बहुत हैं। जो लोग आज नेशनल लेवल प्लेयर जो मेडल जीत रहे हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मेरे जैसा आशा ही नहीं, विश्वास है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे भी मेडल जीतेंगे हमारे देश के लिए।
2: मलिक जी, कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन युवाओं को जो बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं?
1: देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि हर एक युवा वो जिम में जाए, जाके वर्कआउट करे, अपनी सेहत का ख्याल रखे और वो खुद को स्ट्रांग बनाए। जब वो जिम में जाएगा शाम के टाइम कि मुझे खुद को स्ट्रांग बनाना है, तो वो उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेगा जिससे उसकी बॉडी को या उसके भविष्य को हार्म हो, नुकसान हो।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो मैं हर एक युवा को और हर उस पेरेंट्स को, माता पिता को, इस कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने बच्चे को जिम की आदत लगा दो।
2: बिल्कुल,
1: मैं बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा यहाँ, मैं फिटनेस की बात।
2: बिल्कुल,
1: जब उसको जिम की आदत लग जाएगी ना, तो उसको मजा आने लगेगा, तो वो दूसरी बहुत सारी नुकसानदेह चीजों से दूर हो जाएगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और उसके बाद क्या होगा कि हमारा देश सबसे युवा देश है, सबसे ज्यादा युवा भारत देश में है, तो जब हमारा युवा स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, तो जैसे आपने सुना ही है कि आज का युवा जो है वो भविष्य देश का, तो जब युवा मजबूत होगा तो ऑब्वियसली हमारा देश भी मजबूत होगा
2: जी।
1: तो जरूरत इस बात की है, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति को, चाहे कुछ भी उसकी एज हो, उसको जिम जाना चाहिए और अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए, फिट रखना चाहिए। अगर वो फिट रहेगा तो अपनी लाइफ के हर एक टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर सकता है
2: जी। बहुत ही अच्छी बात की आपने। और श्रोता, हम यही बोलना चाहेंगे कि जैसे कि अभी हमें मलिक जी ने भी कहा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप को व्यस्त रखना, और कहते भी है ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो मलिक जी, आप हमारे स्टूडियोज में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: अभी आपने मध्य प्रदेश में बॉडी बिल्डिंग की संभावनाएं विषय पर मलिक इसरार से यह बातचीत सुनी। खेलों से जुड़ी हुई गतिविधियों की जानकारी के लिए सुनना ना भूले कार्यक्रम खेल जगत, होगी मुलाकात खेल जगत से जुड़ी हुई हस्तियों से।
1: 19 मई 2016 को मैंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे अपने देश का झंडा फहराया था।
2: जब मेरा गोल्ड मेडल आया तो मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे।
3: फ्लैग अपने शोल्डर्स पे लेना भी वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेरे लिए तो एक ड्रीम जैसे ही था।
4: मैंने बहुत छोटी एज से सेल करना स्टार्ट कर दिया था,
1: तो मुश्किल था वो सफ़र, पर उसके बाद से मैंने जो सही हुआ, फिर उसके बाद से जो मैंने पिकअप पकड़ा था, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा।
0: होगी खेलों से जुड़े हर पहलू पर बारीक नजर, तो जरूर सुने कार्यक्रम खेल जगत प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:30 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इसी के साथ खेल जगत के आज के अंक से हमें इजाजत दीजिए, अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल जगत, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मीडियम वेव 188.3 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत महबूबा फिल्म से लिया है, जिसे गाया किशोर कुमार ने। संगीत आर डी बर्मन का है और इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत गाया है आशा भोसले ने फिल्म सुजाता में मजरू सुल्तानपुरी की शब्द रचना संगीत एस डी बर्मन का

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ों में गाए धूल का फूल फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं मैं छाया पाठक। श्रोताओं, आपकी पसंद का फिल्मी नगमा हम लेकर हाजिर हैं। आप ही पसंद पर सबसे पहले सुनवाते हैं संगम फिल्म का ये गीत, जिसे आवाजें दी मुकेश और लता मंगेशकर ने। सुना चाहा है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, साइमा खान, पोत्रा मुश्ताबा खान, अफिया खान, राव भाई और शहीद भाई। इसी गीत की फरमाइश भेजी गांधीबाद अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने।

कार्यक्रम का अगला गीत लिखा इरशाद कामिल ने, प्रीतम का संगीत है, जब वी मेट फिल्म से इस गीत को लिया, जिसे गाया उस्ताद राशिद खान ने। सुना चाहा है छत्तीसगढ़ के ही दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू ने।

छत्रपति संभाजी नगर से इस गीत की फरमाइश भेजी है राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कालोनी सनावद मध्य प्रदेश से ये पत्र आया है। मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री का। इन सभी श्रोताओं की पसंद है जवानी दीवानी फिल्म का गीत, जिसे गाया किशोर कुमार और आशा भोसले ने। आनंद बख्शी के बोलों को धुनों में पिरोया आर डी बर्मन ने।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश कार्यक्रम का अगला गीत राजनीति फिल्म से हमारे श्रोताओं ने सुना चाहा है, जिसे आवाज दी आदित्य श्रीवास्तव और रॉसली निकोलसन ने। समीर के बोल हैं संगीत आदित्य श्रीवास्तव का। सुनना चाहा है बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने।

कार्यक्रम के अंत में इन सभी श्रोताओं की पसंद का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी डुमराव बिहार से, डब्लू अंसारी सोना मदीबा, दानिश अंसारी सारिमपुर बक्सर से ये पत्र आया, राजा एस टी अंसारी और आसमा खातून अंसारी का। इसी गीत की फरमाइश भेजी जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती ने। आइए सुनते हैं इन सभी श्रोताओं की पसंद पर बरसात फिल्म का ये गीत, जिसे आवाजें दी कुमार सानू और अलका याग्निक के, समीर के बोल, संगीत नदीम श्रवण का।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में गाए बरसात फिल्म के इस गाने के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त करने की छाया पाठक को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10:30 हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में लीजिए अब सुनिए धानी गुंदेजा का राग केदार में ध्रुपद गायन। तबले पर इनके साथ संगत की है अखिलेश गुंदेजा ने।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे धानी गुंदेचा का राग केदार में ध्रुपद गायन। तबले पर संगत की थी अखिलेश गुंदेचा ने। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 11 बजने को है। अब कुछ ही देर में हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में विकास और संसाधनों को लेकर कई चिंताओं के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विकास के उज्ज्वल उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। नई दिल्ली में आज शाम इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कई कदम उठा रहा है और सुधारों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों की नीति लोगों को अभाव में रखने की थी, ताकि वे बुनियादी जरूरतों के लिए भी सरकार के सामने हाथ फैलाने को मजबूर रहें। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही, बल्कि नियमों से जुड़ी पूरी नीति में बदलाव ला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाला नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता।
1: श्री शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है, जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वह स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार के लिए चुने गए 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की तेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।